बात आई गई हो गई। सभी व्यक्ति अपने अपने कामों में लग गए। समय बीतता चला गया। एक दिन उनकी मित्र मंडली को पता चला कि बाल गंगाधर जी ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है और तनख्वाह थी मात्र 30 रुपए महीना। यह सुनकर उस मित्र को सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ जिसने कुछ समय पहले उनका मन जानना चाहता कि वे वकालत पास करने के बाद क्या करेंगे। मित्र से ना रहा गया, वह अपना काम धाम छोड़कर तिलक के पास जा पहुंचा और उनसे बोला, अरे तिलक, यह क्या किया तुमने? तिलक बोले, क्यों क्या किया मैंने? मित्र बोले, भला वकालत की डिग्री लेकर भी कोई अध्यापक बनता है? अरे क्या आपको शिक्षकों की आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं मालूम? आज अध्यापक वर्ग समाज का सबसे गरीब व्यक्ति है। दोस्त, जब तुम अंतिम सांस लोगे तब तुम्हारे दाह संस्कार के लिए घर में कुछ भी नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ भाई, अब भी वक्त है, संभल जाओ। तुम में बहुत योग्यता है, सरकारी अधिकारी बनो, नामी वकील बनो। अरे

अगर इन सब में भी मन नहीं है तो व्यापार ही कर लो। मित्र की बात सुनकर तिलक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मित्र मैंने जो पेशा चुना है ना, यह बहुत पवित्र है, ईमानदारी वाला है। रही अंतिम समय की बात, मेरे दाह संस्कार का प्रबंध नगरपालिका कर देगी और फिर तुम जैसे मित्र कर देंगे, भला मैं इसकी चिंता क्यों करूं? तिलक की बात सुनकर मित्र हैरान रह गया। उसने आज तक संतुष्टि के ऐसे भाव किसी व्यक्ति पर नहीं देखे थे। वह मन ही मन तिलक के प्रति श्रद्धा से अभिभूत हो गया।

बाल लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस से बालकांड का भाग 106।

अयोध्या की राजसभा में श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम की कथा सुनाते हुए राजा जनक के दूत कहते हैं, श्री राम ने बिना प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडियां तोड़ देता है। परशुराम ने जो क्रोध के साक्षात अवतार हैं बहुत आंखें दिखाई, किंतु श्री राम का प्रताप देख अंत में वे भी नतमस्तक हो गए और जाते हुए अपना धनुष भी दे गए। दोनों भाइयों के तेज तथा प्रताप की गाथा सुन अयोध्या की राजसभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। सभासदों ने राजा जनक के दूतों को भांति भांति के पुरस्कार दिए। राजा दशरथ ने कुल गुरु वशिष्ठ के यहां जाकर पत्रिका उन्हें दी और दूतों को वहां बुलाकर सारी कथा कह सुनवाई। हर्ष प्रकट करते हुए वशिष्ठ जी ने आशीर्वचन कहे और महाराज को बारात सजाने को कहा। यह शुभ समाचार जब रनिवास में पहुंचा तो वहां भी

0: बालकांड का भाग 106 अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:55 होने को है। थोड़ी देर में सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थान गुजरात राज्ययोः एकदिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति। प्रधानमन्त्री सर्वप्रथमं राजस्थानस्य यात्रां करिष्यति, यत्र असौ अद्य प्रातःकाले जोधपुर विमानपत्तनस्य नूतन टर्मिनल इति भवनस्य उद्घाटनं करिष्यति। 80+400 कोटि रूप्यकाणां इयं परियोजना वार्षिकं 20 लक्ष यात्रिणः संचालयितुं परिकल्पितमस्ति। असौ जोधपुरे संशोधित उड्डयन योजनायाः शुभारम्भोऽपि विधास्यति। अस्याः योजनायाः उद्देश्यं विमानन आधारित विकासस्य अग्रिमचरणस्य गतिं वर्धयितुमस्ति। एतदनन्तरं श्रीमोदी बालोतरा नगरस्य यात्रायां भविष्यति, यत्र असौ अद्य मध्याह्ने प्रायः 6,000+ कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां लोकार्पणम् उद्घाटयति।

मारितीम मलालुई पन इंकातान लातिहान कसादारान दोमाइन मारितीम डंगान मंगुनाकान क मामपुआन सातेलित कर्जा सामा पमिलहारान परबाइकान दान पमबोंकारान कपाल लाउत सरता कर्जा सामा परलातान दान टेक्नोलॉजी प्रताहनान दिबावा कर करांगा मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी मनियाम्बुत बाइक पनिंजावान जेपांग तरहडा तीगा प्रिंसिप तेंतांग पंगा लिहान पर लातान दान टेक्नोलॉजी पर ताहनान दान बरहरा फाल इतु अकान समाकिन मम पर दलम कमत्रा आन पर ताहनान अंतारा कदुआ नेगारा कदुआ प्रधानमंत्री मंगा कुई भावा सितुसी इंटरनेशनल साध इनी मन तुतुत कदुआ नेगारा उन्तुक समाकिन मंदोरों कर्जा सामा नियाता दी बिंडा क अमानान इकोनॉमी मरिका बर कमिटमेंट उन्तुक मंपर दलाम कर्जा सामा का अमानन इकोनॉमी दन मंगेबांकान इनिशिएटिव इनिशिएटिव उतामा उन्तुक मंडुकुंग कवासान यंग तांगुह दन सजातेरा कदुआ बेला पिहाक मनिये तुजुई उन्तुक लेबी मलिंडुंगी परदागागान टेक्नोलॉजी तिंगी सकाली गुस्सालिंग मंपर मुडा तातांगान पर पंगेडालियन एक्सपोर्ट मनिंका स्तुति स्मरेका बरसामा सबगाई नगेरा देंगान कंजूमी एनर्जी यंग बसार यंग तर दंपाक ओले वोलाटिलिटास पासार एनर्जी ग्लोबल कदुआ प्रधानमंत्री मने मानकान उर्गेंसी मम पर दलाम के जा सामा इंडिया जापान दिबिडंग क अमनान एनर्जी कदुआ प्रधानमंत्री सपाकात उन्तुक मंगे एक्सप्लोरासित पलुवांग कोलोब्रासी तरमासुक इन्वेस्टासी बरसामा दिसलोरु रांताई निलाय तर ट्रांसपोर्टासी एनर्जी मारितिम मरेका मनियम्बुत बाइक पंगेसाहन पर नियाता आन बरसामा तंतांग कताहनान एनर्जी प्रधानमंत्री तकाईची मनेगास्कान दुकुंगान निया उन्तुक अंगोता आन इंडिया दिबादान एनर्जी इंटरनेशनल कदुआ प्रधानमंत्री ममिलिकी पर पंदागागान इंडिया सामा बाबा पन इंकातान इनोवासी दलम टेक्नोलॉजी बारू तरमासुक एआई संकात पंतिंग उन्तुक समाकिन मम पर लुआस बासिस कर्जा सामा कदुआ प्रधानमंत्री मनियाम्बुत बाइक मन इंकातन्या इन्वेस्टासी स्वास्था दारी जापान का इंडिया दन मंगा कुई कंट्रीब्यूशन या तरहडा तुजुआ नेशनल इंडिया या तु विकसित भारत मरेका मंगा प्रे सियासी क मजवान यंग दी चपय मनुंजु रियालिता स्तर का टारगेट सपलु ट्रिलियन येन यंग दी तपातकान पाडा काते ताहुनान तराखिर कदुआ प्रधानमंत्री मनियाम्बुत बाइक पर प्रेसिमियन फोरम उके में इंडिया जापान दन कुंजुंगान मिसी उके एम जापान का इंडिया दी सेक्टर क दीरंग कातारा आन कदुआ प्रधानमंत्री मंचतात क माजुआन तरबारू पाडा एम पात प्रयोग मेट्रो मुंबई जालूर सबलास मेट्रो बंगलुरु फास्तिगा सिस्टम पलियाना पलायनान क सहतान दन पंडितिकान दी महाराष्ट्र सरता हॉर्टिकल्चरा बरकलंजुतान दी पंजाब का दुआ प्रधानमंत्री जुगा मनेगास्कान कंबाली पेंटिंग निया करेता चपात मुंबई अहमदाबाद से बगै प्रोजेक्ट उंगुलान अंतारा इंडिया दन जापान मनिंकात फे ओ आई पे यांग दी पर बारुई दन कबीजा कान एक्ट ईस्ट चरता उन्तुक मवजूद कान इंडो पैसिफिक यंग तांगुह दन सज्जा तेरा का दुआ प्रधानमंत्री मन्योरोटी पेंटिंग निया स्टागिस विलाया तिमूर लाउथ इंडिया मरेका मनियाम्बुत बाइक कमाजुआन यंग स्टाबिल दी बाहवा करांगान कुआर दन कग्यातान इकोनॉमी यंग दिया अनामिस दारी पर उसाहन जापान दन इंडिया दी सेक्टर्स सेमीकंडक्टर दान बियोफ्यूल सरता पंगेम्बांगान करतरम पिलान पलाहितिहान पहासा जेपांग दान पर तुकारान सुंबरदाया मनुष्या कदुआ प्रधानमंत्री मनियाता कान कप्रिंताहान सीरियस अथा सितुआसी दिलाओत तिंगोंकोक तुमुर दान लाओत तिंगोंकोक सलातान मरेका मनिगास्कान कंबाली बहवा संकेता मारितिम हारुस दी सेलेसाइकान सचारा दलाम दमाई दान ससवाई दंगान हुकुम इंटरनेशनल सब गैमाना तरचरमिन दलाम UNCLOS कदुआ प्रधानमंत्री ममेली की
कपर हाथियान सीरी

0: Hara panda telah nikmati lagu-lagu tadi dengan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut: setelah warta berita, lagu instrumental ya komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar semeru, kami mengundurkan diri dari udara kami.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के

0: ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे साणंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: साणंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 863 अरब

0: का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्ट्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के 2रे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को 2रे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने

0: पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Center reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across the country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project worth 480 crore rupees is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors, including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Prime Minister Modi will also lay the foundation stone for Phase 2 of the Jaipur Metro Rail project, which has a total cost of over 13,000 crore rupees. More from our correspondent.
4: The refinery and petrochemical complex is expected to open new avenues for investment, employment and industrial growth in the state's western districts. The Rajasthan refinery project will also boost sectors such as MSMEs, packaging, textiles, auto components and agri-films, providing a fresh boost to the state's economy. Built on Rajasthan's challenging desert terrain, the project is a remarkable feat of engineering. The second phase of Jaipur Metro Rail project will develop the north south corridor, significantly enhancing the city's multimodal connectivity. The corridor will integrate metro services with the airport, railway station and bus terminal, providing seamless and more convenient public transport for citizens. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jodhpur.
3: Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand in Ahmedabad. The project is one of the first four approved under the India Semiconductor Mission and has been developed with a total investment of over 7,500 crore rupees. Our correspondent has the details.
5: The newly operational CG Semi Outsourced Semiconductor Assembly and Test Facility represents a major milestone in India's journey towards building a self-reliant technology ecosystem. Once fully ramped up, the plant will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. It will offer comprehensive end-to-end packaging and testing services, including wafer sorting, package design, and failure analysis. Driven by rapid advancements in artificial intelligence and high-performance computing, the facility in Sanand is designed to meet the global demand for advanced memory and storage solutions. The facility will directly cater to global and domestic customers across critical industries, including automotive, industrial automation, 5G communication, and Internet of Things. Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
3: Gujarat Anti-Terrorist Squad, ATS, has arrested 8 people associated with the Pakistan-based banned terror outfit Jaish-e-Mohammed. They were arrested from various districts of Gujarat and Madhya Pradesh in simultaneous operations yesterday. According to the Gujarat ATS, the accused were in touch with Pakistani handlers and actively working on behalf of Jaish-e-Mohammed to set up an active network in the state of Gujarat to further its terror activities. They were also working to translate the literature of Jaish-e-Mohammed into Gujarati and spread its ideology. A total of 254 pieces of literature, including the flag of Jaish-e-Mohammed, were recovered from the accused. The investigation also revealed financial links to the Pakistan-based terror group. The arrested individuals have been sent to a 14-day police remand. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India is on track to achieve its $1 trillion US dollar export target, with nearly 15% of the annual exports already recorded in the first quarter of the current financial year. Addressing the Board of Trade meeting in New Delhi yesterday, Mr. Goyal said, to achieve the target, goods exports will need to increase from about $440 billion US dollars to around $530 billion US dollars, while services exports will have to rise from roughly $421 billion US dollars to about $470 billion US dollars.
6: Our aim is to grow in the current year. We were 863 billion last year. We want to grow to $1 trillion export this year. And to reach 1 trillion, our goods export will have to increase from 440 to about 530, $90 billion increase. That is 17% growth in goods. Services will have to grow from 421 to about 470.
3: Over 1,02,000 enumeration forms across the national capital have been digitized so far. According to Office of the Chief Electoral Officer of Delhi, about 33,14,000 forms have been distributed as part of the special intensive revision of electoral rolls in Delhi. The house-to-house distribution of electoral enumeration forms is currently underway in Delhi. Claims and objections can be filed from the 5th of August to the 4th of September. The final electoral roll will be published on the 7th of October. This is Akashvani giving you the news for Quick News.

0: The opening game of the five-match series was abandoned due to rain at Chesterley Street. The IMD has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, West Madhya Pradesh and Odisha for today. Heavy to very heavy rainfall conditions are expected over East Rajasthan, East Madhya Pradesh, coastal Karnataka, Telangana and Vidarbha for next 2 days. Meanwhile, in Delhi, the sky is likely to remain cloudy with the possibility of light rain today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Anuja. All the dailies have covered the news on the rapidly warming oceans, raising the likelihood of heat waves, droughts and heavy rainfall across large parts of the world. Hindustan Times writes, El Nino to intensify rapidly by September, set off weather chaos. A headline in the Statesman says, India emerges as one of the lowest cost major solar power markets globally. Center to summon Meta officials over alleged child sexual abuse ads on Instagram, cites the Times of India. An editorial in the Pioneer states a recent judgment in the Apex Court, the landmark judgment, recognizes homemakers as nation builders. The article adds that 15 to 17% of the GDP is contributed by unpaid caregiving work, household or unrecognized work. The Asian Age and all other dailies have noticed the Defence Acquisition Council clearing over 50,000 crore rupees of military purchases for all three services to boost combat readiness. All the dailies have noticed the government's order on removal of the three Chinese apps after these were allegedly found being misused for stalling e-rickshaws. The Hindu writes, SIT likely to re-audit Ram Temple Trust accounts for 5 years. And finally, a report in Times of India states, Bangalore, Chandigarh and Delhi having the highest average income in the country. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Centre reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues a red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals and men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो बालोतरा में मुल्क के पहले ग्रीनफील्ड मरबूत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। मरकज ने एल नीनो के सबब मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और खुश्कसाली की इम्कानी सूरत हाल का जायजा लिया। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में अर्जेंटीना मियामी में कैबो वर्डे को एक सनसनीखेज मैच में 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में दाखिल हो गया है। मिस्र भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में दाखिल हो गया है। और आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे टी20 में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक रोजा दौरे पर जाएंगे। पहले वो राजस्थान जाएंगे, जहां वो आज सुबह जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वो आज दोपहर तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के लिए वक्फ करेंगे, इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों पर तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपये की लागत आई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: उम्मीद है कि रियासत के मगरबी जिलों में रिफाइन

के किनारे कश्ती की सहूलत शुरू की है। इसके अलावा पैडल वाली कश्तियां, राफ्ट्स, मोटर बोट्स और शिकारा की सहूलियत से भी यात्री लुत्फानंदोज हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कल सालाना अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 12,168 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। डिप्टी कमिश्नर और सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट्स ने बालतल के दो बेस कैंपों से यात्रियों को 3,880 मीटर बुलंदी पर वाकई पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रियों से अपील की गई है कि वो पेशगी इंदराज के बाद उनके लिए मखसूस की गई तारीखों पर ही पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जाएं। ईरान में साबिक रूहानी पेशवाए आजम आयतुल्ला सैयद अली खामनई की सरकारी तौर पर 6 रोजा आखिरी रसूम की तैयारियां जारी हैं। ईरान के सीनियर रहनुमा, फौजी कमांडर्स और गैर मुल्की शख्सियतों ने आयतुल्ला अली खामनई को ईरान के मुसल्ला अजीम में खराज अकीदत पेश किया। बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और खारिजी उमूर के वजीर ममलिकत पवित्रा मार्गरीता ने आखिरी रसूम में शिरकत की। उनके जसद खाकी का जुलूस अगले कुछ दिन तक जारी रहेगा। इसके बाद मुकद्दस शहर मशहद में इस महीने की 9 तारीख को उनकी तदफीन कर दी जाएगी। सरकारी तौर पर यह सोग 40 दिन तक जारी रहेगा। भारतीय आला इंतखाबी कमिश्नर जनाब ज्ञानेश कुमार आज 2 रोजा दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। ओहदा संभालने के बाद उनका यह रियासत का पहला दौरा होगा। पहले दिन वो इंदौर पहुंचेंगे, जहां वो बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दौरे के दूसरे दिन जनाब कुमार ओमकारेश्वर और महेश्वर के मजहबी और तारीखी मकामात जाएंगे। आयुर्वेदिक उलूम में तहकीक की मरकजी कौंसिल CCRAS ने कल नई दिल्ली में अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की 5वीं मीटिंग मुनाकिद की। मीटिंग आयुष वजारत के सेक्रेटरी वैद्य राजेश कोटेचा की सदारत में मुनाकिद की गई। वजारत ने बताया कि यह मीटिंग शवाहिद पर मबनी आयुर्वेद तहकीक के इको निजाम को मुस्तहकम बनाने की जानिब एक अहम कदम है। इस इको निजाम में आयुर्वेद की तालीम, तहकीक, साइंसी मवासलात और डिजिटल हुकुमरानी को फरोग देने के मकसद से 3 बड़े इकदाम किए गए हैं। CCRAS के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य ने कहा कि कौंसिल शवाहिद पर मबनी आयुर्वेद तहकीक के इको निजाम की तामीर का पाबंद है, जिससे आयुर्वेद को आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल होगी। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मगरबी मध्य प्रदेश और ओडिशा में शदीद से शदीद तर और कहीं कहीं पर इंतहाई शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी तरह मशरकी राजस्थान, मशरकी मध्य प्रदेश, साहिली कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी अगले 2 दिन के लिए शदीद से शदीद तर बारिश की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस दौरान आज दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का इम्कान है। IMD ने कल दर्ज हरारत ज्यादा तकरीबन 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक और कम से कम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने की पेशगोई की है। महकमे ने जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में अगले चंद दिनों में गरज चमक के साथ औसत दर्जे की बारिश की पेशगोई के साथ इक्का दुक्का मकामात पर अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने का अंदेशा जाहिर किया है। महकमे ने लोगों को नालों, झरनों और चट्टाने खिसकने के खतरे वाले इलाकों से दूर रहने का मशवरा दिया है। उधर केरलम में आज इक्का दुक्का मकामात पर शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत के 14 जिलों में से 11 में शदीद बारिश के इम्कान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। फीफा आलमी कप में अमरीका के मियामी गार्डन्स में खेले गए नॉकआउट के एक सनसनीखेज मैच में इजाफी वक्त दिए जाने के बाद अर्जेंटीना ने कैबो वर्डे को 3-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ अर्जेंटीना की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है, जबकि अमरीका के शहर एलिंगटन में खेले गए एक दूसरे नॉकआउट मैच में मिस्र ने पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरी T20 बैन अलाक्वामी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच, जो चेस्टर स्ट्रीट में खेला जाना था, बारिश के सबब रोक देना पड़ा था। तीसरा मैच 7 जुलाई नॉटिंघम में खेला जाएगा। ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन आखिरी 2 मैचों की मेजबानी करेंगे। ये सीरीज 11 जुलाई को खत्म होगी। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा बैन अलाक्वामी मैच की सीरीज खेली जाएगी।

0: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
1: स्वास्थ्य पत्रिका के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग, यानी योग फॉर हेल्दी एजिंग। योग एक समग्र दृष्टिकोण है जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। स्वस्थ आयु के लिए योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम है। श्रोताओं को विभिन्न योग आसनों की जानकारी के साथ सही प्रकार से योग आसन की मुद्रा के प्रदर्शन के लिए आकाशवाणी दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग द्वारा भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में एक सजीव लेक्चर और योग डेमोन्स्ट्रेशन सेशन का आयोजन हुआ। आमंत्रित विशेषज्ञ थी योग थेरेपिस्ट, प्रकृति योग और अल्टरनेट थेरेपी की डायरेक्टर डॉ नीलम जोशी कांठपाल। कार्यक्रम में विशेषज्ञ ने आमंत्रित अतिथियों की योग संबंधी समस्याओं का समाधान भी किया। इसके बाद कक्षा सातवीं की छात्रा काशवी सिंह द्वारा योग नृत्य का प्रदर्शन किया गया। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट योग चैंपियनशिप सहित कई योग चैंपियनशिप्स प्राप्त की हैं। प्रस्तुत है इसी कार्यक्रम के संपादित अंश।
2: आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलम जोशी कांठपाल आज आपके सामने बहुत ही अच्छे एक टॉपिक के साथ आई हूँ, जिसका है कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो ये जो दिवस है ये बहुत ही ज्यादा एक ऊर्जा से भरपूर हमें कर देता है पूरे साल के लिए। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया था आपके यहाँ पे और उससे पहले भी। तो हम लोग हर साल एक संकल्प लेते हैं कि अब योगा डे आ गया है और अब पूरे साल के लिए हम फिर से ऊर्जावान हो गए हैं। तो ये इस ऊर्जा को भरने के लिए हम एक सेलिब्रेशन करते हैं योगा डे के रूप में। तो इस बार का जो थीम रखा गया है वो रखा गया है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग। उसमें योग की क्या भूमिका है, तो देखा जाए तो ये जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और गंभीर है, क्योंकि इस बारे में हम नहीं सोचते कभी भी। जब एज आ जाती है या जब बुढ़ापा आ जाता है तब हमको कुछ सोचते हैं कि पहले से कर लिया होता काश, या एक रूटीन फॉलो किया होता तो आज ये नौमत नहीं आती। क्यों? क्योंकि जो एजिंग है या जो एज का बढ़ना है वो प्राकृतिक है, प्रकृति उसको होना ही होना है हमारे साथ। मतलब हर एक इंसान पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, तो एक वो नियति चलती रहती है। तो वो तो एक शाश्वत सत्य है कि वो होगा, लेकिन हम कितना अवेयर हैं उस चीज के लिए, हम कितना कॉन्शियस हैं कि ये स्थिति जब आएगी। क्योंकि आपने देखा होगा एक जो बच्चा होता है जब वो जैसे एग्जाम होते हैं, एक साल के बाद एग्जाम होते हैं, तो दो बच्चे हैं मान लीजिए, एक बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहा है, मतलब डे वन से उसने पढ़ाई करी, नोट्स बनाए, कॉन्सेप्ट क्लियर करे अपने, और फिर उसने एग्जाम दिया। और एक बच्चा ऐसा है जो कि क्या कर रहा है, कल एग्जाम है और आज पढ़ रहा है और कल उसको एग्जाम देना, तो किसके मार्क्स ज्यादा आएंगे? या कौन एक सिक्योर है जो पहले से पढ़ रहा है, जो डे वन से पढ़ रहा है, उसको कोई डर नहीं है, ना ही उसको कोई प्रेशर है, ना ही उसको कोई डर है कि मैं एग्जाम में फेल होऊंगा। और जो एक दिन पहले पढ़ रहा है उसको पूरा डर है, 99% उसको डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, उसको पता है। और उसको ये भी पता है कि मैंने लापरवाही की है और मैंने पढ़ाई नहीं की। तो हमको वो नहीं बनना, हमें ये भी पता है, सबको मालूम है एजिंग है, एज आनी है, बुढ़ापा आना है, एज चलनी ही है। तो उसके हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी करें, रोज रूटीन में उसको फॉलो करें। तो योगा हमको यही करता है, उससे जोड़ता है, हमें अपने आप से जोड़ता है, हमारी चेतना से जोड़ता है। मतलब हम जो कर रहे हैं उसके लिए अवेयर हैं, क्योंकि रूटीन हमारा सबका बिजी होता है, रोज जो हम काम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक वो बिजी शेड्यूल है। पर अगर हम माइंड में योग को रखते हैं, योग के लिए अवेयर हैं, तो हम अपनी हेल्थ के साथ चलते हैं। मतलब जैसे कहा भी गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हम कुछ भी कार्य करेंगे तो शरीर के माध्यम से ही करेंगे, उसके बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। तो योग के साथ अगर हम जुड़ते हैं, योग के साथ अगर हम चलते हैं, तो हम समस्याओं से दूर रहेंगे। तो ये जो विचार था ना, ये योग दिवस का जो विचार था या योग का जो विचार है, ये कोई दिवस नहीं है बल्कि विचार है। कैसे? क्योंकि जो ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने जब योग को दिया था इसीलिए दिया था, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा गया है जीवे शरदा सतम, मतलब आप 100 साल तक जिए, निरोगी होकर जिए, बीमार होके ना जिए। इसलिए योग को दिया गया था, हम उसको भूल गए और एलोपैथिक दवाइयों में बाकी चीजों में हम लग गए, तो जो एक्चुअल में पद्धति थी उसको हम भूल गए। तो जीवेम शरदा सतम मतलब 100 साल तक जिए, तो निरोगी होकर जिए, सुखी होकर जिए। अब होता क्या है, जब हम कोई चीज फॉलो नहीं कर रहे हैं या हम हेल्थ के लिए अवेयर नहीं है या हम अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो बीमार तो होना ही होना है, एजिंग तो होनी होनी है, उम्र तो बढ़नी ही बढ़नी है। अब बूढ़ा जो होना है वो दुख के साथ होना है या सुख के साथ होना है, ये हमारी चॉइस है। बूढ़ा जो होना है वो दुख के साथ बूढ़ा होना है हमने या सुख के साथ होना है, अपने आप पे कंट्रोल रख के होना है या बिस्तर में पड़ के होना है या दूसरों पे आश्रित होके होना है, ये टोटली हमारी चॉइस है, हमारे ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं। आपने देखा पहले जमाने में जो ऋषि मुनि का टाइम था उस समय जो एज होती थी वो 200 साल की होती थी, 200, 250, 150, 100, 100 तो मिनिमम। धीरे धीरे धीरे वो एज, अब तो 100 मेरे ख्याल से बहुत कम ही लोग होते हैं, 60, 70, 80, बच्चे भी हार्ट अटैक हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो चीजें आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? हमारी लापरवाही की वजह से। प्रकृति ने नहीं कहा कभी भी ऐसा कि आप जल्दी इस संसार से चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो हमारी गलतियां और हमारी त्रुटियां जो हैं वो हमारे लिए भारी पड़ती हैं हमेशा। अब जैसे नदी होती है, एक नदी क्या करती है, जब पहाड़ों से निकलती है तो खूब आवेग के साथ निकलती है, बहुत तेज होती है उसकी रफ्तार। फिर वो धीरे धीरे मैदान में आती है, मैदान में थोड़ी सी उसकी रफ्तार कम हो जाती है, फिर वो जाती है समुद्र की तरफ तो बिल्कुल ढीली पड़ जाती है, मतलब बहुत ही स्लो हो जाती है, धीरे धीरे समुद्र में उसका समागम हो जाता है। तो ऐसी एज भी होती है, जब हम छोटे होते हैं चंचल स्वभाव होता है, फिर हम जवानी आती है, फिर थोड़ा सा काम में बिजी हो जाते हैं, थोड़ा स्लो होते हैं और बुढ़ापे आने तक बिल्कुल स्लो हो जाते हैं। तो ये तो एक प्रक्रिया है। अब इसमें हम योग को कैसे जोड़ सकते हैं, योग के माध्यम से। अब जैसे कि योग में भी कहा गया है कि जीवन जीने की कला है योग, समत्पम योग उच्चते जैसा बोला गया, लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल में अगर योग को जोड़ेंगे तो हम मानसिक रूप से भी वीक नहीं पड़ेंगे, भावनात्मक रूप से भी वीक नहीं पड़ेंगे और शारीरिक रूप से भी वीक नहीं पड़ेंगे अगर हम योग को अपने साथ रखते हैं। अब होता क्या है कि जैसे मांसपेशियां हैं तो एज के साथ साथ वो ढीली

0: लगती हैं, जब हमारे जॉइंट पेन शुरू होने लगता है या घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, शोल्डर पेन शुरू हो जाता है, कमर वीक होने लग जाती है, 90 डिग्री बेंड होनी शुरू हो जाती है एक एज के साथ। तो जब हम योग को शामिल करते हैं तो उसमें हम जैसे कुछ कुछ एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं योगा के द्वारा, हम साथ साथ में करते भी रहते हैं, जिसमें हाथ वाली जैसे स्ट्रेचिंग हम करेंगे, हाथ की एक्सरसाइजेस धीरे धीरे, हाथ खोलिए ऐसे धीरे, सूक्ष्म व्यायाम टाइप का। इसको बच्चे भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं और बूढ़े भी कर सकते हैं, और इसको आप कभी भी बैठ के भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ऐसे 10 टाइम्स स्ट्रेचिंग करेंगे, ये हम शारीरिक रूप से योगा को जोड़ रहे हैं। इसके बाद 10th अप एंड डाउन। अब इसमें अगर ब्रीदिंग को जोड़ देंगे तो आपका मन भी लगना शुरू हो जाएगा, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये डेली की एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज सब करते हैं लेकिन उसको सही तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ताड़ासन की पोजिशन में आ जाइए, ऐसे स्ट्रेच, ठीक है, हाथ बिल्कुल सीधा, एल्बो स्ट्रेट। अब 10 पीछे, 1 स्पाइन के लिए एक्सरसाइज, स्पाइन और सर्वाइकल, 1 2 3 4 5। आपको पता है ओल्ड एज में जितनी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी आप बीमारियों से उतना दूर रहेंगे। अगर आपको अपनी जानना है कि मैं बीमार कब पड़ूंगा, कितना वो करूंगा, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी देख लीजिए अपनी स्पाइन की, जितनी फ्लेक्सिबल स्पाइन है उतनी बीमारियां हमसे दूर है। ये तो हो गई शोल्डर की स्ट्रेचिंग। नेक की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एरिया जो होता है सर्वाइकल का ही नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। आप जब नीचे झुक के काम करते हैं या फोन देखते हैं तो यहाँ स्टिफनेस बढ़ जाती है इस एरिया में, उस वजह से एक एज के बाद वर्टिगो का प्रॉब्लम या चक्कर का आना, ये सब प्रॉब्लम्स, माइग्रेन के अटैक्स, ये सब यहाँ की वजह से ही आते हैं। तो आप रेगुलरली अगर इस एक्सरसाइज को करेंगे ऐसे ऊपर और सीधा 10 टाइम्स, 5 to 10, जैसा भी आपको टाइम हो ऐसे एक्सरसाइज करनी है, अप एंड स्ट्रेट स्लोली। ब्रीदिंग इसमें भी इनहेल एक्सहेल, इसको आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत देर हो गई काम करते हुए तो 2 मिनट आप स्ट्रेच करिए ऐसे लेफ्ट एंड राइट। ये बच्चे, यूथ, कोई किसी भी एज ग्रुप के, और स्टार्टिंग से करोगे तो स्टिफनेस कभी आएगी ही नहीं। ये एंटी एजिंग एक्सरसाइज है। कान जरूर खींचने, कान खींचना नहीं भूलना है आपको। कान खींचने से क्या होता है, कोई बताएंगे कान क्यों खींचे जाते हैं?
1: वेस्टिबुलर फोर्स को बैलेंस भी करता है ये, इस तरीके से अगर हम करते हैं।
0: Yes, इसमें 60,000 पॉइंट्स होते हैं एक्यूप्रेशर के, जिससे कि हमारी जैसे मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है, मेमोरी इंक्रीज होती है और नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है। और इसको खींचते रहेंगे तो आपकी एक तो कफ भी नहीं जमा होगा। कई बार बुढ़ापे में आपने देखा आवाजें आती हैं कान की, कई लोग बुजुर्ग बोलते हैं कान से कुछ ड्रम की आवाज आ रही है या टन टन की आवाज आ रही है या कफ का कंजेशन हो रहा है, वो भी नहीं होता है। बहुत सारे फायदे हैं इसके कान खींचने के। और स्ट्रेस रिलीज करता है, अगर आप थके हैं ना दिन भर और आपको या तो गुस्सा आ रहा है या स्ट्रेस ज्यादा है, आप कानों को खींचना शुरू कर दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखने में ये सब इजी एक्सरसाइजेस होती हैं लेकिन ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए और पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड को बैलेंस करने के लिए, जो कि आपका कंडक्टर है, पूरी बॉडी को चला रहा है, सारे हार्मोन को बैलेंस कर रहा है, ऑर्गन्स को कंडक्ट कर रहा है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं जो माइंड को हमारे कंट्रोल करता है। एक एज के बाद क्या होता है ना, हम इमोशनली बहुत वीक हो जाते हैं, मेंटली बहुत वीक हो जाते हैं, बॉडी तो खैर काम नहीं करती, बॉडी भी वीक हो जाती है, लेकिन ये सब एक्सरसाइजेस अगर आप कर रहे हो तो पेशेंस लेवल बढ़ा रहता है आपका, आपके अंदर कंट्रोल बढ़ा रहता है चीजों को लेके। ऐसे रोटेट करेंगे शोल्डर तो पेशेंस लेवल इंक्रीज करता है, कंट्रोलिंग बढ़ जाती है आपकी, लंग्स भी एक्सटेंड होते हैं, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है। ब्रीदिंग पे भी ध्यान दें, डीप ब्रीदिंग। अब पीछे ऐसे हाथ पीछे रखिए, बटरफ्लाई, नेक अप, ओके, 1 2 3 4 5 6 8 9 10। इसको आप अपने समय के अनुसार कितना भी कर सकते हैं, 10 20 30 40 50, ठीक है, या 2 बार कर लीजिए, मॉर्निंग में इवनिंग में थोड़ा थोड़ा करके ऐसे कर सकते हैं। ट्विस्टिंग कर सकते हैं बैठे बैठे भी, ऐसे एक हाथ ऊपर रखिए, खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, सांस लिया छोड़ दिया, ये ट्विस्टिंग, ये स्पाइन को कभी स्टिफ नहीं होने देगा, ज्यादा टाइम नहीं, अगर आप करते हो तो 10-15 मिनट में ही आपकी एक्सरसाइजेस पूरी हो जाती हैं। इसके बाद हम पैर वाली थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे एक्सरसाइजेस, क्योंकि आपने देखा है कभी आपको पेन हो रहा हो, घुटने में दर्द हो रहा हो या एंकल में कहीं भी पेन हो रहा हो, तो किसी भी चीज में मन लगता है हमारा, किसी चीज में मन लगता है, नहीं लगता है, हमारा मन दुखी हो जाता है क्योंकि हमें पेन हो रहा होता है। तो अगर मन दुखी है तो तो शरीर नहीं चलता, और शरीर दुखी है तो मन नहीं चलता, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो दोनों के ऊपर हमें काम करना बहुत जरूरी है। ऐसे स्ट्रेच, इसमें इनहेल देखिए ऐसे होगा,

ओके, इनहेल एक्सहेल. फील कहाँ करना है? काफ में. काफ मसल्स को स्ट्रेच करना है. इनहेल स्ट्रेच एक्सहेल. ये बहुत इंपॉर्टेंट. एक एज के बाद आपने वेरिकोज वेन्स की शिकायत देखी होगी. वेन्स बाहर आ जाती हैं, ग्रीन ग्रीन कलर की, उलझ जाती है, जैसे वो होता है ना, जाल सा बन जाता है वेरिकोज वेन्स का. तो वो सर्कुलेशन अगर ये खुला रहेगा ना, किसी को डायबिटीज भी नहीं होगी और ना ही बीपी हाई होगा, अगर ये आर्टरीज और वेन्स खुली रहेंगी डाउनवर्ड, क्योंकि प्रेशर डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगा. जो हार्ट का प्रेशर ऊपर की तरफ होता है वो डाउनवर्ड आना शुरू हो जाता है. आपने देखा है? जब बीपी हाई होता है या डायबिटीज होती है तो डॉक्टर्स बोलते हैं वॉक करो, घूमो. क्यों कहते हैं वॉक करो? ताकि पैर की नसें खुल जाएं, आपकी आर्टरीज वेन्स खुल जाएं, ब्लड का फ्लो नीचे आ जाए. डाउनवर्ड जो प्रेशर ऊपर बना हुआ है सर की तरफ, हैवीनेस, वो डाउनवर्ड आ जाए. और जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं ना, अगर 10-15 मिनट भी कर ली तो आपको एक घंटे की वॉक का बेनिफिट इसमें मिल जाएगा. अगर नहीं टाइम है बाहर जाने का, आप घर पे बैठ के ये वाला सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें. आपने देखा टायर्डनेस भी सबसे ज्यादा पैरों में ही फील होती है, जब हम थके होते हैं या शाम होती है, इवनिंग तक पैरों में दर्द शुरू हो जाता है. ये ऐसी एक्सरसाइज है, किसी भी एज ग्रुप पे हम इसको कर सकते हैं. अब इसमें ध्यान क्या देना है, एक पैर ऊपर रहेगा, ये स्ट्रेच रहेगा, ये बिना स्ट्रेच के आप नहीं करोगे. ये वाला स्ट्रेच रहेगा, ये इसको बैंड करिए नीचे और फिर टमी प्रेस करिए. पैर सीधा रखिए 5 to 10 टाइम्स. ये बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस है. चक्की 5 clock 5 anti. पर देखिए एल्बो नहीं बैंड होगी आपकी, चक्की में ऐसे रोटेशन सीधा स्ट्रेट 5 clock 5 anti clock. हमको क्या करना है, टमी को रोटेट करना है. ध्यान दीजिए, देखो ध्यान देके करेंगे तो अब दूसरे पैर से भी ऐसे करेंगे. पहले अप एंड डाउन, बॉडी सीधी नीचे फिर ऊपर, कमर सीधी. इससे क्या होता है, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं. जिनको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है या पेनक्रियाज नहीं काम कर रहा है, डायबिटीज है, फैटी लीवर है, तो उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइजेस हैं. मोशन डेली आएगा. कुछ कुछ खाते हैं ना बुजुर्ग लोग, चूरन चटनी डेली कुछ कुछ चलता रहता है पेट साफ करने के लिए, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप रेगुलरली इस सब एक्सरसाइजेस को करेंगे तो हमारी इंटेस्टाइन एक्टिवेट रहेंगी. अपने टाइम के अनुसार जिसको जितना समय है वो उस हिसाब से करें. इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मंडूक आसन, जो हम डायबिटीज के लिए करते हैं. इंसुलिन का सिक्रेशन जिससे सही होता है, ऐसे वज्रासन में. जो नहीं बैठ पा रहे आराम से सुखासन में बैठो. अब नाभि के दोनों तरफ हाथ ऐसे डालने हैं, अंदर प्रेशर देना है 2 points पे. ब्रीद इन, आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे, जितना भी जा पा रहे अपने आराम से जाइए 4 to 5 times या 10 times. अब ऐसे करके उष्ट्रासन, घुटने पे आए, कमर पे हाथ रखें और बैक बेंडिंग करें ऐसे. इनहेल एक्सहेल. और जिनको घुटने में दर्द है, एक एज के बाद क्या होता है, एजिंग का इफेक्ट क्या आता है हमारे, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बॉडी में भी चेंजेस आने शुरू होते हैं, जिसको कि बायोलॉजिकल एजिंग बोलते हैं, बायोलॉजिकल एजिंग. तो वो आती आती है, उसमें यही सब चेंजेस आते हैं. तो जिनकी ग्रीस कम हो गई है, घुटनों में ग्रीस कम हो गई है, उसके लिए रेगुलरली ये एक्सरसाइजेस करो आप, तो ग्रीस कम नहीं होगी. आजकल देखा आपने नी ट्रांसप्लांट के केसेस कितने ज्यादा, कि जिसको वो देखो नी ट्रांसप्लांट करा लो. क्यों करा लो? जो आपको नेचर ने दिया है वो उस पार्ट को आप वापस ला सकते हैं? कभी नहीं. तो उसको बचा के रखिए. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. जो बोल है ना, नी बोल, इसको आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे. नी की एक्सरसाइज 5 ऐसे 1 2 3 4 5. ये नी ज्वाइंट की एक्सरसाइज है, नी की प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंटी क्लॉक 1 2 3 4 and 5. फिर ऐसे पकड़िए इसको, जैसे बच्चे को पकड़ते हैं ना गोद पे, 1 2 3 4 5. अब इसको टच होता है तो करिए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं. तो ये तो हुई योगा की बात, फिजिकल बॉडी की बात. अब थोड़ी सी मेंटल बॉडी की बात कर लेते हैं. मेंटल बॉडी में हम क्या कर सकते हैं? प्राणायाम इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है. प्राणायाम तो हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्राणायाम के लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा. खुली हवा हो तो आप आराम से कर सकते हैं. इसमें जो एंटी एजिंग प्राणायाम है जिसमें हम यूज करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे बेस्ट होता है. अनुलोम विलोम, जिसको हम लेफ्ट टू राइट एक बार करें इसको, एक हाथ ज्ञान मुद्रा में और ऐसे प्रणव मुद्रा बनाएंगे, रिंग फिंगर और थंब का यूज करते हैं. ऐसे लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल. ये क्या करता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर जो हमारी सर पे ब्रेन में होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम. देखिए जब हम सांस लेते हैं तो टमी बाहर आना चाहिए, जैसे गुब्बारे में समझ लीजिए कि गुब्बारा है, बलून है, हवा भरी तो बाहर आया. अब जब इसको बाहर कर

तो लंग्स ऑटोमेटिकली भर जाते हैं, आपको गुस्सा आ रहा है या आपको चक्कर आ रहे हैं या स्ट्रेस हो रहा है, तो आप डीप ब्रीदिंग शुरू कर दो, हाथ ना भी लगाओ चलेगा। आप देखोगे इतना रिलैक्स फील हो रहा है, आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो गया है। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये तो आपको करना ही करना है। दूसरा एक दांतों के लिए एक्सरसाइज, जैसे पायरिया की शिकायत हो जाती है, गम्स का ब्लड आना, और एक एज के बाद दांत भी जवाब दे जाते हैं, तो हवा भरनी है, शीतली शीतकारी प्राणायाम। अब देखो करना क्या है, इसको पी लो और फिर नोज से एक्सहेल करो। ठंडा ठंडा लग रहा है गर्मी में, अगर एसी ना भी हो तो चलेगा। ध्यान लगाना, अगर यहाँ बैठे हैं तो ध्यान कहीं नहीं जाना चाहिए, ये भी मेडिटेशन है। यहाँ पर हमने जो अभी किया इतनी देर सारा योगा अभ्यास, अगर आपका ध्यान यहाँ पर है तो वो मेडिटेशन है। अलग से बैठ के ऐसे तपस्वी वाली मुद्रा में जरूरत नहीं है आपको, जहाँ जो काम कर रहे हैं उस पे ध्यान लगाना इज मेडिटेशन, ठीक है। हर काम में मन लगाना शुरू कर दो, आपका मेडिटेशन शुरू हो जाएगा। इससे क्या होता है, ग्रे मैटर बढ़ता है हमारे दिमाग में, ग्रे मैटर, उस वो क्या होता है, एक एज के बाद जो डिसीजन मेकिंग होती है या याददाश्त की क्षमता होती है या नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल आना जो होता है वो ग्रे मैटर करता है, वो इंक्रीज होता है, मतलब बॉडी में बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो मेडिटेशन, योगाभ्यास, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी चीजें हमने अपने जीवन में रखनी है। योग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हाथ पैर हिलाए ये योग है, ऐसा नहीं है। जैसे बोला ना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु योग युक्त स्वप्न प्रबोधस्य योगो भवति दुखा, मतलब आपका आहार विहार, आपकी लाइफ स्टाइल, सोने का टाइम, जागने का टाइम, खाने का टाइम, पीने का, पूरी लाइफ स्टाइल आपकी योग के अंदर आती है, योग है। अगर आप नियमित दिनचर्या अपना रहे हैं तो आप योग को फॉलो कर रहे हैं। कई लोगों के माइंड में होता है ये सिर्फ योग है, नहीं। तो आज से हम संकल्प लेते हैं कि क्या करेंगे, पूरे साल तक हम क्या संकल्प लेते हैं, सब कुछ फॉलो करेंगे। क्या क्या फॉलो करेंगे, खाना पीना, आहार विहार, अपना रूटीन, ये सब कुछ हम फॉलो करेंगे। डाइट में हम क्या कर सकते हैं, एंटी एजिंग जो डाइट है हमारी, सुबह आप एक तो सुबह हल्दी का पानी, कच्ची हल्दी, जैसे आजकल कैंसर के इतने इश्यूज आ रहे हैं, कच्ची हल्दी और तुलसी के पत्ते रात को डाल के या सौंफ भिगा के सुबह, अभी गर्मी के दिन है, सर्दी में मेथी दाना डाल सकते हैं, अभी सौंफ हल्दी और तुलसी के पत्ते डाल के सुबह पानी पीजिए। ग्रीन टी आपको तुलसी की बनानी है, सौंफ वो वाली ग्रीन टी मार्केट वाली अवॉइड करिए, थोड़ा सा ग्रीन पत्तों का जूस पीजिए, कड़ी पत्ता है, और आपके पीपल के थोड़ा पत्ते ले लीजिए, नीम के पत्ते ले लीजिए, पुदीने का पत्ता ले लीजिए, धनिया का पत्ता ले लीजिए, सबको पीसिए, एक शॉट टाइप का बना लो इतना सा, उसको डेली कंज्यूम करना शुरू कर दो, तो एंटी ऑक्सीडेंट का काम करता है। मल्टी सीड्स लेने बहुत जरूरी है ग्रीसिंग के लिए, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स हो गए, और आपके मगज के बीज, एक अखरोट, काजू अवॉइड कर सकते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल है, 2-4-5 बादाम, मल्टी सीड्स मिलाइए, 1 टीस्पून आपको डेली अपने मील में इंक्लूड करना ही करना है। खाना टाइम पे खाना है, फ्रूट्स वेजिटेबल का इंटेक ज्यादा करना है, पैक्ड फूड जो होते हैं, रिफाइंड फूड हो गए, प्रिजर्वेटिव जिनमें मिला है उनको अवॉइड करना है, व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट को अवॉइड करना, व्हाइट सारी चीजें बंद कर दो, मैदा, चीनी, नमक, ब्रेड, जो जो व्हाइट होती है, फर्मेंटेड फूड बंद कर दो, रस, सुबह सुबह कई की शुरुआत चाय के साथ रस से होती है, वो बंद कर दो, उसकी जगह रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, रोस्टेड जो भुना चना होता है वो ले लो, ये सब आप अपनी डाइट में, बाकी रोटी सब्जी जो आप खा रहे हैं नियमित, रात को दाल अवॉइड करें, चावल अवॉइड करें, दिन में आप खा सकते हैं, खिचड़ी खा लीजिए, ये सब आप दिन में खा सकते हैं। रात को दाल खाएंगे तो जॉइंट पेन होना बहुत बढ़ जाता है, और सोते समय आप थोड़ा सा जीरा डालिए और एक चुटकी अजवाइन डाल के उसमें काला नमक मिलाइए और सिप सिप करके पी लीजिए। मिल्क प्रोडक्ट बंद करने हैं, अगर आपको जॉइंट पेन से बचना है तो मिल्क प्रोडक्ट प्लीज अवॉइड करिए, उसकी जगह कोकोनट मिल्क आप ले सकते हो, कोकोनट मिल्क का दही भी जमता है, आमंड मिल्क ले सकते हैं, ये सब आप डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। पानी ज्यादा पीजिए, 2-3 लीटर, और नियमित व्यायाम कीजिए, ये फुल एंटी एजिंग आपका दिनचर्या रहेगी। इसके साथ ही हम ओम चैंटिंग करते हैं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, धीरे से आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, मन बिल्कुल शांत, मुख में प्रसन्नता का भाव, डीप इनहेल, ओम चैंट करेंगे। ओ

0: दोनों हाथों को रब करेंगे धीरे से, पूरी हैप्पीनेस को, एनर्जी को अपनी बॉडी में स्प्रेड करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कक्षा सातवीं की छात्रा काशवी सिंह द्वारा योग नृत्य का प्रदर्शन किया गया।

0: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली के भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में आयोजित सजीव योग कार्यक्रम के संपादित अंश सुन रहे थे।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत,
0: और अब प्रस्तुत है योग और संगीत विषय पर एक वार्ता। वार्ताकार हैं संगीत और योग विशेषज्ञ श्री अविनाश कुमार माथुर।
2: दोस्तों, आपने देखा होगा जैसा कि हाल ही में पूरे विश्व ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। यह केवल एक दिवस ही नहीं बल्कि मानवता को भारत की एक अमूल्य देन का उत्सव है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि इस योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और साथ ही हम जानेंगे कि योग और संगीत का आपस में कितना गहरा संबंध है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि योग क्या है। दोस्तों, जब हम योग शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में विभिन्न आसनों की तस्वीर आती है। आप लोगों ने देखा होगा हम विभिन्न तरीके के आसन करते हैं योग के दौरान, लेकिन वास्तव में योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है। योग शब्द जो है वो संस्कृत की धातु युज से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। योग का उद्देश्य है शरीर का मन से जुड़ना, मन का आत्मा से जुड़ना और आत्मा का परम चेतना से जुड़ना। दोस्तों, महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है कि योगश्चित वृत्ति निरोधः, अर्थात मन की चंचल वृत्तियों को शांत करना ही योग है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में मनुष्य बाहरी रूप से तो बहुत विकसित हो गया है, लेकिन आंतरिक शांति खोता जा रहा है। दोस्तों, योग हमें उसी शांति की ओर वापस ले जाता है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि आज की इस जिंदगी में तनाव, चिंता, अनिद्रा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अवसाद जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। योग इन सभी समस्याओं से लड़ने का एक प्राकृतिक और प्रभावी माध्यम है। शरीर को स्वस्थ बनाता है योग, रोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है योग, मानसिक तनाव को कम करता है योग, सकारात्मक सोच विकसित करता है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, जीवन में संतुलन लाता है। दोस्तों, अगर हम सिर्फ 20 से 30 मिनट का नियमित योगाभ्यास हमारे पूरे दिन की ऊर्जा को बढ़ा देता है, बदल सकता है। अगर हम नियमित योगाभ्यास करें तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि योग और संगीत का अद्भुत संबंध कैसे है, ये दोनों मिलकर कैसे हमारे जीवन को सुखद बनाते हैं। दोनों का अंतिम उद्देश्य एक ही है, चाहे वह संगीत हो या योग, मन को शांत करना और चेतना को ऊंचा उठाना। जिस प्रकार योग शरीर और मन में संतुलन स्थापित करता है, उसी प्रकार संगीत भावनाओं और विचारों को संतुलित करता है। भारतीय संगीत में दोस्तों 7 स्वर हैं, सा, रे, ग, म, प, धा और नी, और योग में 7 प्रमुख चक्रों की अवधारणा है। तो देखिए दोनों में कितनी समानता है। कई विद्वानों का मानना है कि विभिन्न स्वरों की तरंगे शरीर के विभिन्न ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करती हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान के समय मधुर संगीत सुनता है तो श्वास की गति संतुलित हो जाती है, मस्तिष्क की तरंगें शांत हो जाती हैं, तनाव कम हो जाता है और ध्यान की गहराइयां बढ़ जाती हैं। इसी कारण आज दुनिया भर में म्यूजिक मेडिटेशन और साउंड हीलिंग जैसी प्रक्रियाएं लोकप्रिय हो रही हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि संगीत, चिकित्सा और योग दोनों कितने समन्वय के साथ चलते हैं। संगीत केवल मनोरंजन नहीं है, यह चिकित्सा का भी एक प्रभावी माध्यम है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि शांत संगीत हृदय की गति को नियंत्रित करता है, रक्तचाप कम करने में सहायता करता है, चिंता और तनाव को कम करता है। दोस्तों, जब योग, प्राणायाम और संगीत का संयोजन किया जाता है तो उसका प्रभाव और अधिक गहरा हो जाता है, विशेषकर बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। दोस्तों, दैनिक जीवन में हम योग को कैसे अपनाएं, मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन योग के लिए घंटों की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, प्रतिदिन 5 मिनट गहरी श्वास लें, 10 मिनट का प्राणायाम करें, 10 मिनट सरल योगासन करें और 5 मिनट का ध्यान करें। इतना अभ्यास भी अगर आप जीवन में सकारात्मक रूप से करें तो बहुत ही परिवर्तन ला सकता है। योग केवल एक क्रिया नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। योग हमें सिखाता है कि शरीर को स्वस्थ रखना और मन को शांत रखना और जीवन को सार्थक बनाना, और जब योग के साथ संगीत जुड़ जाता है तब जीवन एक सुरमयी साधना बन जाता है।
0: योग और संगीत, अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे श्री अविनाश कुमार माथुर, संगीत और योग विशेषज्ञ। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार।
1: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, धरती आकाश के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। वैकल्पिक ईंधन जैसे हाइड्रोजन, जैव ईंधन और बिजली और संबंधित प्रौद्योगिकियां पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों का स्थायी और स्वच्छ विकल्प हैं। ये तकनीकी विकास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक ईंधन और प्रौद्योगिकी विकास में CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP देहरादून के कार्य, इस विषय पर सुनिए ये भेंट वार्ता। डॉक्टर अंजन राय, पूर्व निदेशक CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP और वरिष्ठ परामर्शदाता टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी INSA से भेंट कर रहे हैं दिलीप झा।
1: डॉक्टर अंजन रे जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत साल बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है।
1: सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो CSIR की संस्था है देहरादून में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, वो संस्थान किस तरह का है और वहाँ किए जा रहे कार्यों का अगर वर्तमान में देखें पर्यावरण कंसर्न को भी लेकर के, क्योंकि ये पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ रिसर्च सेंटर है, तो किस तरह से वो समाज के लोगों को और देश को लाभान्वित कर रहा है?
2: CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो देहरादून में स्थित है, जंगल के अंदर स्थित है और उसी पर्यावरण में जहाँ पे 250 एकड़ के पेड़ पौधे जीव जंतु हैं। शाम को निकलेंगे तो कभी कभी आपको तेंदुआ से मुलाकात हो जाएगी, कभी कभी हाथी आते हैं, 200 तरीके के पंछियां हैं उधर, 100 तरीके की तितलियां। वहां आएंगे तो लोग समझते भी नहीं है कि पेट्रोलियम का संस्थान है, लोग कहते हैं स्वर्ग है। परंतु वहां पे जो शोध हो रहा है, ये शोध का लक्ष्य यही है कि पेट्रोलियम को कैसे हम उपयुक्त तरीके से प्रयोग करें और साथ में ही कैसे जो मौसम बदलाव और पर्यावरण पे हानि की बातें आती हैं पेट्रोलियम जैसे ईंधनों का, उनको कैसे संभाला जाए। तो मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। पहला उदाहरण यह है कि 2018 अगस्त में हम लोगों ने पेड़ के बीज और अपने रसोई के अपशिष्ट तेल से हवाई जहाज उड़ाए ईंधन बनवा के।
1: अच्छा,
2: देहरादून से दिल्ली आई फ्लाइट स्पाइस जेट की 27 अगस्त 2018 में, 5 केंद्रीय मंत्री दिल्ली में हमें स्वागत करने के लिए विमानतल पे ही खड़े थे हमारे लिए। और फिर उस सफलता के बाद जो हमारा गणतंत्र दिवस हुआ और उसका जो परेड होता है, उसके फ्लाईपास्ट में भारतीय वायुसेना की AN-32 विमान में भी ईंधन भर के 2019 में फ्लाईपास्ट

0: किया गया। तो ये बड़ा एक मैं कहूंगा चिन्ह था कि देश के शोध में इतनी प्रौद्योगिकी आ चुकी है कि हम ईंधन अपने प्रयोगशाला में बना के हवाई जहाज तक उड़ा सके। अभी एक दो साल में इसका एक बड़ा प्लांट लगने वाला है मैंगलोर में। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा, जो गांव गांव में शहर शहर में आज के दिन गैस चल रहा है, खासकर शहरों में अभी जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइप नेचुरल गैस है, शायद आपके घर में भी होगा।
1: हाँ, आजकल महानगरों में और खास करके जितने भी ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनियां हैं, चाहे अथॉरिटी की या बिल्डर्स हाई राइज हैं, उसमें जो है प्रमुख शहरों में जो पीएनजी गैसें हैं वो सप्लाई की जा रही है।
0: आपको अचरज होगा जान के कि पीएनजी गैस तो सप्लाई हो रही है, परंतु लोग पुराने एलपीजी के स्टोव को ही कुछ जुगाड़ करवा के उसी से रसोई में काम चला रहे हैं। और ये न तो सिर्फ हानिकारक है और खतरेमंद है, क्योंकि पीएनजी और एलपीजी एकदम अलग तरीके के गैस हैं, और जब तक आप बर्नर नहीं चेंज करेंगे, पूरा रेंज नहीं चेंज करेंगे, तब तक ये खतरा रहेगा।
1: ये आपने बहुत काम की जानकारी दी है, क्योंकि अक्सर जब भी कोई नया चूल्हा लिया जाता है तो वो प्रायः एलपीजी के रूप में आता है कि डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए एलपीजी के लिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, और दूसरा जब उसको पीएनजी के लिए यूज करना होता है तो उसके पीछे जो एक बर्नर में एक सप्लाई है वो चेंज करना पड़ता है। तो आपने जैसे कहा कि जुगाड़ सिस्टम से लोग उस खर्चे को बचाने के लिए स्थानीय तकनीक पे ही उसको उपयोग करने लगे हैं, जो कि एक बहुत बड़े खतरे का आमंत्रण है।
0: जी, मैं और भी कहूंगा कि दुख की बात यह है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं वो भी अपने कनेक्शन के साथ ये जुगाड़ ही कर रहे हैं, एलपीजी स्टोव में ही नोजल चेंज कर रहे हैं, वो अनुपयुक्त है। सरकार की अपनी पाबंदी है इस पे, आपको पूरा स्टोव चेंज करना पड़ता है, 25% गैस आपका लीक होता रहेगा, और ये गैस आयात होता है विदेशी मुद्रा देकर। तो इस शोध का काम हमारे संस्थान ने की थी, और इस शोध से कम 14 कंपनियों को इसका लाइसेंस दिया गया कि आप पीएनजी के ही बर्नर बनाओ, पीएनजी के ही स्टोव बनाओ। पर अभी भी क्योंकि जो कंपनी गैस बेच रही है उसको फायदा है कि गैस 25% निकल जाए तो बिलिंग ज्यादा होगी, तो देश के सारे कंपनी अभी भी पीएनजी स्टोव नहीं अपनाए,
1: जबकि ये कंपलसरी है,
0: जबकि ये कंपलसरी है सरकार के अपने नियम के अनुसार।
1: आपने एक रसायन विज्ञान में भी डॉक्टरेट की उपाधि की है, वो भी आपने एक नोबेल पुरस्कार विजेता के अंदर में किया है। जलवायु संबंधी समस्याएं आ रही है, खास करके पर्यावरण से संबंधित जो बातें होती है, जो चिंता का विषय है, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो हमेशा प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण रहा है, और अब कहा जाता है कि इस प्रदूषण के कारण भी गर्मी बढ़ती है। इन संस्थानों में क्या इस तरह के भी अनुसंधान किए जा रहे हैं या किए जाने की आवश्यकता है?
0: जी अवश्य, प्रदूषण को लेकर इसका शोध चल रहा है, सीएसआईआर के कई सारी प्रयोगशाला में इसका काम चलता है। एक जगह पे भोपाल में है एम्प्री बोल के सीएसआईआर का प्रयोगशाला, उन्होंने देखा है कि पराली जो जलती है, पराली से कैसे पार्टिकल बोर्ड बने। फिर दिल्ली में ही है केंद्रीय सड़क अनुसंधान
1: संस्थान, जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है,
0: उन्होंने इसी से बिटुमिन बनाया है पराली से, आईआईपी के साथ योगदान करके, कि पराली से ही जो बिटुमिन, मतलब जो टार रास्ते पे हम लोग बिछाते हैं रास्ता बनाने के लिए, अलकतरा बोलते हैं जिसको, उसको पराली से कैसे बनाया जाए, बायो बिटुमिन। फिर भारत पेट्रोलियम ने अपशिष्ट प्लास्टिक से डीएनडी फ्लाईवे का हिस्सा बनाया है, अपशिष्ट प्लास्टिक डाल के। तो काफी सारा शोध हो रहा है कि अपशिष्टों से कैसे उसका सही उपयोग हो ताकि जलवायु परिवर्तन पे प्रभाव कम पड़े।
1: निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि वेस्ट को वेल्थ में कैसे हम बदल सकते हैं, उस अवसर को नहीं चूकना चाहिए, और इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप इंडियन सोसाइटी ऑफ कॉस्मेटिक केमिस्ट के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। बात आती है एक औषधि उद्योग की भी, तेल एवं गैस की भी, बायोटेक्नोलॉजी का भी क्षेत्र बढ़ रहा है, तो इस तरह की जो चीजें हैं उसमें एज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब उसका रिसर्च उसमें किया जाता है, तो क्या इस तरह के भी कुछ बाय प्रोडक्ट, उपयोगी प्रोडक्ट निकलते हैं, चाहे फार्माकोलॉजी में, कॉस्मेटिक्स में, या लुब्रिकेंट वगैरह के लिए? और इसके अलावा भी हम लोगों ने चर्चा की है कि पीएनजी में और एलपीजी में, तो उसमें मुख्य रूप से क्या अंतर होता है?
0: पीएनजी हवा से हल्का होता है और एलपीजी हवा से भारी होता है, तो कहीं उत्सर्जन जब होए, कोई भी लीकेज आए हमारे स्टोव से, पीएनजी ऊपर जाएगा, एलपीजी नीचे जाएगा। अब गौर से एलपीजी बर्नर देखेंगे तो उसके जो छेद हैं वो अंदर की ओर होते हैं ताकि भारी गैस अंदर जाके ठीक से जले, और जो पीएनजी का बर्नर होगा उसका छेद जो है ऊपर की ओर जो है रहेगा ताकि भारी गैस ऊपर जाने से पहले जल जाए। तो बर्नर का जो छेदों का जो मतलब पैटर्न है वही अलग रहता है, पहली बात तो वो है।
1: जो बर्नर के ऊपर के हिस्से का होता है, जिसमें होल होते हैं,
0: होल होता है, वो भी अलग है। और क्योंकि एलपीजी भारी है तो एलपीजी अलग प्रेशर से चलता है, सिलेंडर का प्रेशर ज्यादा होता है, पीएनजी का प्रेशर कम होता है, तो उसका जो मिक्सिंग ट्यूब है आपको दिखेगा भी नहीं, वो भी अलग रहता है। एलपीजी का मिक्सिंग ट्यूब ज्यादा मोटा होता है, अब उसमें मैं पीएनजी के मिक्सिंग ट्यूब से चला दूं तो वो गैस जो है

0: बहुत जल्दी निकल जाएगा ऊपर, पूरे डिजाइन की बात है ये।
1: और इसके अलावा इसकी रासायनिक रचना में क्या है, जब ये प्रोडक्ट के रूप में निकलता है तो क्या स्टेज होता है इनको अलग अलग करने का?
0: तो जो आपका नेचुरल गैस है वो जब पाइप में डालते हैं उसको हम पीएनजी बोलते हैं, और उसको कंप्रेस करके सिलेंडर में डालेंगे तो उसको सीएनजी बोलते हैं। माल तो वही है नेचुरल गैस। रासायनिक तौर पर देखें तो ये एक कार्बन अणु और चार हाइड्रोजन अणु मिलकर
1: मीथेन गैस, जिसे
0: मीथेन गैस बनता है, और एलपीजी में 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन प्रोपेन गैस लगभग होता है। दोनों जो हैं तेल के फील्ड से आते हैं, पर एलपीजी पेट्रोलियम से आता है और पीएनजी नेचुरल गैस से आता है। आपने पूछा कि इन सब के साथ जैसे कॉस्मेटिक्स या स्वास्थ्य का क्या जुड़ा हुआ है, कोई एक साधारण एग्जांपल देख लेते हैं जिसको हम वैसलीन बोलते हैं या पेट्रोलियम जेली। इसमें पेट्रोलियम वैक्स और मिनरल ऑयल डालते हैं ताकि जब हम चमड़े पे डालें तो चमड़े से जो हमारा वाष्प निकल जाता है, पानी निकल जाता है, चमड़ा ठंड में या सूखे मौसम में न सूखे। ये वैक्स जो है इंडिया में बहुत साल से आयात होता। कुछ ही साल पहले नुमालीगढ़ बोल के रिफाइनरी है असम में, उनके पास जो क्रूड ऑयल आता है, असम के क्रूड बोलते हैं, वो कच्चे तेल का बहुत वैक्स होता है, और ये वैक्स के वास्ते उनके पाइपलाइन चोक हो जाते हैं। तो वो रिफाइनरी में क्या करते थे, हाइड्रोजन दबाव डाल के इस वैक्स को डीजल बना देते थे। अब डीजल का भाव आपको मालूम है 80-100 रुपए के आसपास है, टैक्स वैक्स देके रिफाइनरी निकलता है थोड़ा कम है उससे, और वैक्स का भाव है 120 रुपए। तो ये पैसा देके वैक्स तोड़ के डीजल बनाते थे। तो हमारी संस्था ने उनको दिखाया कि उससे से वैक्स पहले कैसे निकाल लिया जाए, तो जो वैक्स आयात हो रहा था वो तो बंद हो ही गया, वैक्स निर्यात हो रहा है उस रिफाइनरी से।
1: पहले ये क्या बाय प्रोडक्ट में बेकार हो जाता था,
0: बेकार क्या उसको डीजल बना देते थे पैसा खर्च करके।
1: अच्छा, और उतना एनर्जी भी फिर लगाते थे,
0: एनर्जी लगाते थे, और वैक्स ज्यादा महंगा है। हमारी रिफाइनरी का जो प्रॉफिट है वो एक साल में 77 करोड़ बढ़ गया पहले साल में ही।
1: आपको 2021 में इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा आउटस्टैंडिंग ग्रीन एनर्जी एक्टिविस्ट के लिए ज्यूरी च्वाइस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो ग्रीन एनर्जी की ओर सरकार का एक बहुत बड़ा मिशन है, खास करके हाइड्रोजन मिशन पे काम चल रहा है। तो थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को इस ग्रीन एनर्जी के बारे में भी बताइए कि किस तरह से ये भविष्य की ऊर्जा है, हरित ऊर्जा तो कहते हैं, और किस तरह से उसका अधिक से अधिक उपयोग लोगों को करना चाहिए।
0: मैं पहले कहूंगा कि ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा अपनाने का तरीका यह है, अपनी सारी चीजों की खपत कम करें। जब हम एक नया शर्ट खरीदते हैं उस शर्ट के लिए कोई कहीं किसान ट्रैक्टर चला रहा है, उसके बाद कहीं फैक्ट्री में उस ट्रैक्टर के बाद कपास की मशीन से वो कपड़ा जो है बुना जा रहा है, फिर वो कपड़ा किसी मशीन से शर्ट बन रहा है, फिर वो किसी मशीन से किसी ट्रक से किसी शोरूम में आ रहा है। आप उस शोरूम में जा रहे हैं, उसमें शोरूम के 3 फ्लोर होंगे, आप एलिवेटर एस्केलेटर से एनर्जी खर्चा करके वहां चढ़ रहे हैं। शर्ट फेंकने के पहले नया शर्ट मत खरीदें। जैसे मैं जो आज पैंट पहना हुआ हूं 1995 का पैंट है, अभी तक मैंने नया पैंट नहीं खरीदा इसको। ग्रीन एनर्जी का पहली चीज है खपत कम करें। दूसरी चीज है जो सौर्य ऊर्जा सरकार कर रही है, मैं इसका सराहना करना चाहूंगा। तो मैं कहूंगा कि अपने घरों में प्लीज अपना सोलर पैनल लगाइए, और जितने भी आपके मीटर्स हैं, जितने भी अप्लायंसेस हैं, स्मार्ट मीटर लगाइए, ज्यादा स्टार रेटिंग की चीजें लगाइए। कम भाव में कम स्टार रेटिंग के तो मिल जाएंगे, पर एक बारी देश के लिए भी और अपने लिए भी खर्चा करके ज्यादा स्टार रेटिंग की चीजें लगाएंगे तो भविष्य की पीढ़ियों को ये जलवायु परिवर्तन से कम तकलीफ होगा।
1: माननीय प्रधानमंत्री की दूर की एक सोच ने, जब उन्होंने ये कहा था कि वन अर्थ वन ग्रीड की बात की थी कि ऊर्जा की खपत के लिए, और उसके बाद सोलर एनर्जी जनरेशन में एक क्रांति आई है, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है देश में। नेशनल साइंस एकेडमी के सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी में आपका जो अनुभव है एज एन एडवाइजर, किस तरह से स्टार्टअप इकोसिस्टम को और आगे बढ़ाने के लिए, खास करके उसमें जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज अधिक से अधिक लोगों को मिल सके, युवाओं को, उसके लिए कार्य किया जाना चाहिए या किए जाने की जरूरत है?
0: देखिए, जो मैंने कॉलेज के समय देखा था, 1984 में मेरी IIT से पढ़ाई समाप्त हुई, और आज जो IIT में देख रहा हूँ, जमीन आसमान का अंतर है। आजकल IIT में जो लोग ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं उसमें मैं कहूंगा कि 10% लोग कम से कम स्टार्टअप में जा रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि मैं कोई नया कोई आइडिया लेके आऊं, कोई आविष्कार लेके आऊं, कोई तरीका लेके आऊं, उसको अपनाने के लिए देश में सिर्फ खरीदारी नहीं है, सरकार भी है। सरकार कह रही है कि आप आइडिया लेके आओ जो हमारे देश के काम में आए। किस किस इलाके में? डीपटेक जो हम कहते हैं, डीपटेक जो है रक्षा प्रणाली डिफेंस, हमारे जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, परमाणु, कंप्यूटर के अंदर जो रहता है सेमीकंडक्टर चिप, स्वास्थ्य, कृषि, सब में आपको डीपटेक तो चाहिए। और डीपटेक क्या है? डीपटेक यह है कि जो चीजें आज हैं उसके गंभीर तरीके से अनुसंधान करके ऐसे ऐसे समाधान निकालें कि आज के समाधान और कल के समाधान में खर्चा कम हो, पर्यावरण पे प्रभाव कम हो और लोगों को, खासकर अंत्योदय के

0: स्तर पे लोगों को जो है लाभ ज्यादा हो। तो नवम कैपिटल हमारी जो वेंचर कैपिटल फंड है, इसका नाम भी एक थोड़ा अनोखा है संस्कृत में। नवम का मतलब नया भी है और नौ या नौवा भी है, और 10^-9 को कहते हैं हम लोग नैनो, जो विज्ञान का आधार है, और 10^+9 1 बिलियन यानी कि 10 करोड़, ये जो है कोई कंपनी जब इस साइज की हो जाती है उसको हम कहते हैं यूनिकॉर्न। तो हम नई चीजों से नैनो साइंस करके यूनिकॉर्न बनाने का प्रयास करते हैं।
1: बहुत अच्छा, मुझे याद है कि जब पेटेंट को लेकर के हल्दी और नीम की एक लड़ाई लड़ी गई थी, भारतीय वैज्ञानिकों ने CSIR के अंदर के नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ी थी यूरोपियन और अमेरिका में, और उसको जीते थे। तो उस समय CSIR के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर रघुनाथ अनंत माशेलकर जी ने हमें एक इंटरव्यू में हम लोगों को बताया था कि आने वाला समय ऐसा होगा कि भारतीय जो है सरस्वती की आराधना करेंगे, लक्ष्मी का उपार्जन करेंगे, ज्ञान और बुद्धि के और विवेक के उपयोग से भारतीय वैज्ञानिक जो है इस बात को साबित कर रहे हैं कि वो अपने अनुसंधान के द्वारा जो विद्या है उसका लाभ लक्ष्मी उपार्जन, जो आर्थिक रोजगार और आर्थिक स्तर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लोगों को अवसर दिला रहे हैं। डॉक्टर अंजन राय जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, आपने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में अपने निदेशक के जो आपके अनुभव रहे हैं, और साथ ही उस तरह के संस्थानों के जो कार्य हैं उससे बने हुए जो उत्पाद हैं, और वर्तमान में जो एक आवश्यकता है जो भविष्य के विकसित भारत की आधारशिला बन रही है, स्टार्टअप इकोसिस्टम जो कि इनोवेशन बेस्ड होना चाहिए, उन सब बातों पर विस्तृत जानकारियां दी। इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पुनः आप लोगों को भी मुझे आमंत्रण करने के लिए धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्कार।
2: वैकल्पिक ईंधन और प्रौद्योगिकी विकास में CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP देहरादून के कार्य। अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता डॉक्टर अंजन राय, पूर्व निदेशक CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP और वरिष्ठ परामर्शदाता टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी INSA से भेंट कर रहे थे दिलीप झा। और इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: बरनामा सुबह ये माँ दर सात नौ वासी दहे गये हिन बराबर बा सात हफ्तों सी दहे गये तेहरान इला सात या दहे हिन बराबर बा सात नौ तेहरान पक्ष में शवत इनक बख्शे फारसी बरूर मर्जी आकाशवाणी बरनामा सुबह ये खुदरा दर मौजे कूता दर रदीफाइ 5102 किलो हर्स पक्ष में कुनत برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی اخبار هندوجان ترانه فارسی تفسیر روز گفتار امروز برنامه اسپات لایت یک ترانه فیلم هندی ترانه های یک فیلم هندی اخبار هندوجان و در آخر خلاصه اخبار اینجا دهلی است شنوندگان عزیز برنامه صبح گاهی را با یک آهنگ هندی شروع می کنیم

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ

0: 만든
1: घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला
0: और मैं हूं आपकी रेडियो सखी कल्पना। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गूगल चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम में 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज़ पर।
0: बिल्कुल। और मंजुला, शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की इस खूबसूरत से विचार के साथ। कहते हैं कि जीवन में सबसे मजबूत रिश्ता वो नहीं होता जो किसी और जुड़ता है,
1: क्या बात है,
0: बल्कि वो होता है जो इंसान का अपने आप से बनता है। क्योंकि हर बार जब आप अपने आप से किया हुआ एक छोटा सा वादा निभाते हैं तब आपका आत्मविश्वास और भी गहरा हो जाता है।
1: क्या बात है। और इसी खूबसूरत सोच के साथ आज का सवाल, आपका सबसे सच्चा दोस्त कौन है, साथी कौन है, वो जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहता है या फिर वो जो हर सुबह आईने में आपको देखता है। आप अपना जवाब हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का सफर।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे आया सावन झूम के फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।
1: और दोस्तों, 4 जुलाई का दिन इतिहास, समाज, संस्कृति के कई प्रेरणादायक पड़ावों की याद दिलाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की। हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाने वाला ये दिन हमें याद दिलाता है कि साथ मिलकर आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी ताकत है। चाहे किसान हो, महिला स्वयं सहायता समूह, दुग्ध समितियां हो या छोटे व्यापारी, सहकारिता ने लाखों लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
0: इसके अलावा आज एक और खास दिन है मंजुला। आज भारत के पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री और देश के सादगीपूर्ण नेताओं में गिने जाने वाले गुलजारी लाल नंदा जी की जयंती है। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और ईमानदार राजनीति को हमेशा प्राथमिकता दी।
1: और आज ही भारतीय सिनेमा की पहली सुपरस्टार अभिनेत्रियों में शुमार नसीम बानो जी की जयंती भी है। उन्हें अपने दौर की ब्यूटी क्वीन भी कहा जाता था। वे प्रसिद्ध अभिनेत्री सायरा बानो की माता थी। पुकार, चल चल रे नौजवान और अनोखी अदा जैसी फिल्मों में उनके प्रभावशाली अभिनय ने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया।
0: इसके साथ ही 4 जुलाई यानी स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि, उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उन्होंने युवाओं में आत्मविश्वास, राष्ट्र प्रेम और मानव सेवा की भावना जगाई।
1: और आज महान गीतकार भरत व्यास जी की पुण्यतिथि भी है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ज्योति कलश छलके और आधा है चंद्रमा रात आधी जैसी अमर गीतों के रचनाकार भरत व्यास ने अपनी लेखनी से भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और मानवीय मूल्यों को शब्दों में अमर कर दिया। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये गीत, गूंज उठी शहनाई फिल्म से लता और रफी की आवाज में।

0: तो अभी हमने एक सवाल किया था कि आपका सबसे सच्चा साथी कौन है, तो जवाब आने शुरू हो गए हैं कल्पना. तो हम शुरू करते हैं. संदीप राय जी लिखते हैं कि मेरा बड़ा भाई मेरा सबसे अच्छा मित्र है. क्या बात है, वो हमेशा मेरी मदद करता है और सही मार्गदर्शन करता है.
1: और पूरन सिंह जी यादव लिखते हैं कि सब साथ छोड़ दें लेकिन रेडियो हमेशा साथ निभाता, यानी इनका सबसे अच्छा साथी है रेडियो.
0: और नवीन भाटिया जी लिखते हैं कि मेरे फादर साहब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं.
1: और महेश अग्रवाल जी ने भी लिखा है कि भाई एफएम गोल्ड उनका सबसे अच्छा साथी है.
0: और अमिताभ रथ जी ने तो बहुत ही लंबा सा एक मेल भेजा है, लेकिन उसका सारांश ये है कि उनकी वाइफ उनकी सबसे अच्छी मित्र है.
1: बिल्कुल. और देखिए आज हमारे जो श्रोता हैं वो सब यही कह रहे हैं कि भाई आकाशवाणी उनका सबसे अच्छा दोस्त है, एफएम ही. तो ये चरण दास जी भी यही लिख रहे हैं. मंजुला क्या बात है.
0: हाँ, और आदित्य मुद्गल जी लिखते हैं कि मेरी माँ, बस उन्होंने इतना ही लिखा है. और वैसे भी कल्पना कहते भी हैं कि माँ में तो पूरी दुनिया होती है.
1: बिल्कुल. और राधा शुक्ला जी ने हमें ईमेल किया है और उन्होंने लिखा है कि हमारा जो सच्चा साथी है वो अपना स्वास्थ्य होता है. तो हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे और आप भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए.
0: बिल्कुल सही. तो चलो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कि आज की धरती जो होती है, आज की कहानी सिर्फ एक सफल बिजनेस की नहीं होती है बल्कि उस सोच की जो कहती है कि धरती को बचाना है. तो अपनी थाली से शुरुआत कीजिए. तो मिलिए निष्ठा चौहान से, एक ऐसी युवा इंजीनियर जिन्होंने एरोस्पेस जैसी शानदार नौकरी छोड़ दी. लोग समझ रहे थे कि ये करियर का सबसे बड़ा रिस्क है, लेकिन निष्ठा को दिख रहा था भारत का भविष्य.
1: बिल्कुल. और उन्होंने अहमदाबाद में शुरू किया गुजरात का पहला जीरो

0: वेस्ट मिलेट कैफे जिसका नाम कैफे आरम रखा। और यहाँ सिर्फ खाना नहीं परोसा जाता मंजुला, पता है, बल्कि एक सोच परोसी जाती है। यहाँ प्लास्टिक नहीं, स्टील के स्ट्रॉ हैं, टिश्यू पेपर नहीं, रीयूज होने वाले तौलिए हैं
1: बिल्कुल, और डिस्पोजेबल प्लेटें नहीं है, केले और अरेका के पत्तों की प्लेटें हैं। बचा हुआ खाना कूड़ेदान में नहीं, कंपोस्ट बनकर फिर से मिट्टी में लौट जाता। और सबसे खास बात, जिस मिलेट को कभी सिंपल अनाज कहा जाता था, उसी से आज रागी डोसा, मिलेट मोमोज, बाजरे की भेल, रागी बन वाला वड़ा पाव जैसे स्वादिष्ट व्यंजन तैयार हो रहे हैं।
0: क्या बात है, यानी भारत का पारंपरिक खाना आधुनिक अंदाज में। और कैफे को ठंडा रखने के लिए पता है इको फ्रेंडली कूलिंग सिस्टम भी अपनाया गया है। और यही नहीं, आरंभ बच्चों को टिकाऊ खान पान यानी कि शुद्ध भोजन की सीख भी देता है, ताकि पर्यावरण की चिंता बचपन से ही उनकी आदत बन जाए।
1: हाँ, और इन छोटी छोटी पहलों का असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ये कैफे हर साल लगभग 47 जो टन कचरा कम करने में योगदान दे रहा है। निशा मानती है कि हेल्दी बनने के लिए एवोकाडो या इम्पोर्टेड सुपर फूड जरूरी नहीं है, हमारे अपने बाजरा, ज्वार, रागी और कोदो ही सुपर फूड है।
0: और उनका ये कैफे हर महीने लाखों रुपए का कारोबार कर रहा है, लेकिन असली कमाई सिर्फ पैसे नहीं बल्कि हर साल टनों कचरा कम करना, स्थानीय किसानों का समर्थन करना और बच्चों को सिखाना कि भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है।
1: बिल्कुल सही कहा। तो अगली बार जब आप किसी कैफे में जाएं, एक पल रुक कर सोचिए, क्या हम सिर्फ स्वाद चुन रहे हैं या अपने आने वाले कल का भविष्य भी, क्योंकि सच्चा विकास वही है जो धरती को भी संवारे।

0: नाड़ी फिल्म से।
1: बिल्कुल, और मंजुला बात करेंगे महिलाओं की एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि की जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया, क्योंकि अब भारत की बेटियां सेना के उन पदों तक पहुंच गई हैं जहां सिर्फ पुरुष रहा करते हैं, यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जिसे हम एनडीए के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा प्रशिक्षित पहले महिला कैडेट्स के बैच को भारत के सशस्त्र बलों में अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है।
2: और ये इतिहास में पहली बार है जो बदलते भारत की नई तस्वीर इस तरह की बेटियों ने सजाई है। और 25 जून 2026 को एनडीए ने पहली बार सेना, नौसेना और वायुसेना में बेटियों को सीधे अधिकारी के रूप में प्रवेश दिया है। और इस बैच में 17 महिला कैडेट्स थीं, जिनमें से 9 भारतीय सेना में अधिकारी बनी, 5 भारतीय वायुसेना अधिकारी बनी और 3 भारतीय नौसेना के उच्च पदों तक पहुंची हैं।
1: क्या बात है। और ये उपलब्धि हम इसलिए भी साझा कर रहे हैं मंजुला, क्योंकि एनडीए में महिलाओं के लिए समान अवसर का अध्याय शुरू हुआ है। ये सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता और महिला नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा कदम है।
2: और ये भारत के सैन्य इतिहास की बदलती हुई तस्वीर है, जहां अब बेटियों के लिए भी रास्ते खुल गए हैं। अब उनके पास भी उड़ने के लिए बराबर आसमान है।

0: श्रोताओं, एक खूबसूरत से गीत आप सुन रहे थे खामोशी फिल्म से, जिसे गाया कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू ने।
1: और ईमेल हमारे पास आने फिर से शुरू हो गए, और आज का जो सवाल है हमारा कि आपका सच्चा साथी कौन है, इस पे आपको रिप्लाई करना है। हमारा ईमेल आईडी fmgolgie@gmail.com। तो सुदर्शन मुखी जी ने लिखा है, बहुत ही खूबसूरत बात कही इन्होंने, कि हमारा सच्चा और हर पल साथ देने वाला साथी है हमारा अपना आत्मविश्वास।
0: बिल्कुल। और कृष्ण कुमार गुप्ता लिखते हैं कि भाई हमारा जो सच्चा साथी है वो वही है जो मुसीबत के समय हमारे साथ खड़ा रहता है।
1: और निदा बानो लिखती हैं कि मेरा सच्चा साथी उम्मीद है।
0: बिल्कुल। और ऋचा अवस्थी लिखती हैं कि कहते हैं कि सबसे सच्चा साथी वो होता है जो हर सुख दुख में साथ दे, लेकिन मेरी सबसे अच्छी साथी मेरी बहनें हैं, तो हम उनसे सारी बातें करते हैं।
1: और रश्मि गुरुग्राम से लिखती हैं कि जिंदगी में बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन सबसे सच्चा साथी वो होता है जो हर हाल में आपका साथ न छोड़े। मेरे लिए वो ईश्वर है जो हर खुशी हर मुश्किल में मेरा सहारा बनते हैं, और अगर दुनिया की बात करूं तो मेरा अपना विवेक और परिवार ही मेरे सबसे बड़े साथी। बहुत ही खूबसूरत बात कही।
0: बिल्कुल। और ऐसे ही अनिल मेहता जी लिखते हैं, देखो महिलाएं भी बड़ी अच्छी दोस्त होती हैं, तो ये कह रहे हैं कि इनकी वाइफ इनकी सबसे अच्छी दोस्त है मंजुला।
1: क्या बात है, कहीं साथ तो नहीं बैठी हुई है
0: शायद इसीलिए।
1: हाँ, और गौरी शंकर जी लिखते हैं कि आप दोनों बेटियों को राम राम,
0: राम
1: कुछ
0: राम।
1: दोस्त मुसीबत में काम भी आते हैं, सभी नहीं, लेकिन हमें उन दोस्तों को भूलना नहीं चाहिए। मेरी तो बहनें ही लाखों में एक है, क्या बात है, जिन्होंने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया।
0: बिल्कुल। तो हमारे अन्य श्रोता भी हमें ऐसे ही ईमेल करते रहे, और आपके लिए ये प्यारा सा गीत।
2: दूं तुम्हें
3: हाँ,
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है,
3: क्या है,

0: श्रोताओं, ये खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे दीवार फिल्म से, जिसे गाया आशा भोसले और किशोर कुमार ने।
1: और दोस्तों, एक छोटा सा सवाल, आखिरी बार अपने मर्जी से कोई किताब कब पढ़ी थी और आखिरी बार आपने अपने मन की बात कागज पर कब लिखी थी? आज की भाग दौड़ में हम घंटों मोबाइल स्क्रॉल कर लेते हैं लेकिन 5 पन्ने पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते, जबकि सच तो ये है कि अगर आप अपने व्यक्तित्व में ऐसा बदलाव चाहते हैं जिसे लोग महसूस करें तो सिर्फ 2 आदतें अपनाइए, पढ़ना और लिखना।
0: बिल्कुल, देखो मंजुला, पढ़ना हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि ज्ञान देता है। ये हमारी सोच को गहराई देता है, हमारी कल्पना शक्ति को उड़ान देता है और शब्दों का खजाना भी बढ़ाता है। सबसे बड़ी बात, हमें एक अच्छा बातचीत करने वाला इंसान बनाता है, तभी तो हम अपने श्रोताओं से भी बात कर पाते हैं। अलग अलग विषयों की जानकारी होने के कारण हम आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखते हैं, हमारी बातचीत प्रभावशाली बनती है, लोग हमें सुनना पसंद करते हैं और हमारा व्यक्तित्व अपने आप ही आकर्षक बनने लगता है।
1: क्या बात है। अब बात करते हैं लिखने की। लिखना सिर्फ शब्दों को कागज पर उतारना नहीं है दोस्तों, बल्कि अपने विचारों को आकार देना है। जब आप लिखते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, सोच स्पष्ट होती है और खुद को अभिव्यक्त करने की क्षमता कई गुना बेहतर हो जाती है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर एन फ्रैंक की डायरी दुनिया तक ना पहुंची होती तो शायद इतिहास का वो दर्द, वो भावनाएं, उस दौर की सच्चाइयां हम कभी इतनी गहराई से महसूस नहीं कर पाते। एक छोटी सी लड़की की लिखी हुई डायरी आज पूरी दुनिया के लिए इतिहास का जीवंत दस्तावेज है।
0: तो कौन जानता है, आज जो आप अपनी डायरी में लिख रहे हैं, आपके अनुभव, आपके विचार, आपकी सीख, वही आने वाले समय में किसी बच्चे को प्रेरणा दे जाए, किसी शोध का आधार बन जाए या फिर पूरे समाज को नई दिशा दिखा जाए, है ना मंजुला? तो याद रखिए, जो पढ़ता है वो दुनिया को समझता है और जो लिखता है वो दुनिया पर अपनी छाप छोड़ता है।
1: बहुत ही खूबसूरत बात कही। तो आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, रोज सिर्फ 15 मिनट पढ़िए और 10 मिनट लिखिए, चाहे किताब हो, अखबार हो, कविता हो, डायरी हो या अपने दिन का एक छोटा सा अनुभव। यकीन मानिए, कुछ महीने बाद लोग कहेंगे आप में कुछ अलग बात है, क्योंकि अच्छी किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वे व्यक्तित्व गढ़ती हैं और अच्छी लेखनी सिर्फ शब्द नहीं लिखती, वो विरासत छोड़ जाती है।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को, फिल्म थी तीन देवियां।
1: क्या कहने मंजुला जी। और देखो एक मुझे शेर याद आ रहा है कि भीड़ तन्हाइयों का मेला है, आदमी आदमी अकेला है। यानी आज की जो जिंदगी है वो जरूर व्यस्त हो रही है, लेकिन हर इंसान एक अकेलेपन से जूझ रहा है और उसमें भी सबसे आगे है युवा। वो युवा जो हमें हमेशा मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से कनेक्ट नजर आते हैं, वास्तव में वे सबसे ज्यादा अकेले हैं। क्यों?
0: सही कहा। पहले लोगों के पास नेटवर्क भले कम था लेकिन डीप कनेक्शंस थे। आज सोशल मीडिया पर भले ही 2 मिलियन फॉलोवर हैं, लेकिन ऐसे 2 लोग मिलने मुश्किल हो जाते हैं जिन्हें हम मुश्किल की घड़ी में फोन कर सकें।
1: और इससे यही समझ आता है कि आज लोग अकेले इसलिए नहीं है कि उनके पास लोग नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनके पास ऑडियंस तो है पर कनेक्शन नहीं है।
0: तुम्हारा कहने का मतलब दिल से दिल का जुड़ाव।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए जरूरी है कि खुश रहने के लिए इस अकेलेपन से बाहर रहें, इसके लिए रिश्तों को समय दें, कुछ नया सीखें, सोशल मीडिया का समय सीमित करें, मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं, शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहें, योगा करें, ध्यान करें।
1: साथ ही जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनको भी चाहिए कि वे युवा मन को समझें, उन्हें सुनें, तुलना न करें, उपलब्धियों को सराहें, सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल दें। फिर इन अकेले पड़ते अपनों का मन राहत महसूस करेगा और वे खुश रहना सीख जाएंगे बजाय अकेले रहने के।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे कालिया फिल्म से, जिसे गाया आशा भोसले और किशोर कुमार ने। और मंजुला, क्या कह रही थी आप?
1: मैं ये कह रही थी कि जब भी घूमने की बात होती है तो ज्यादातर लोग सीधे बड़े शहरों, मशहूर हिल स्टेशंस या फिर बीच डेस्टिनेशंस का नाम लेते हैं। लेकिन एक सवाल है कि क्या आपने कभी उस भारत को देखा है जहां सुबह पक्षियों की आवाज से होती है, जहां हर घर की रसोई में पीढ़ियों पुराने स्वाद पकते हैं और जहां परंपराएं सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में जी जाती है।
0: मगर नहीं देखा है तो आपकी ट्रेवल लिस्ट में भारत के गांव जरूर होने चाहिए, क्योंकि असली पर्यटन सिर्फ तस्वीरें लेने का नाम नहीं बल्कि किसी जगह की संस्कृति, खान पान, लोक कला, भाषा और लोगों को महसूस करने का नाम है। क्यों मंजुला? गांव आपको वो अनुभव देते हैं जो कोई भी 5 सितारा होटल आपको नहीं दे सकता।
1: हाँ, अगर हिमाचल प्रदेश जाए तो सिर्फ शिमला या मनाली ही नहीं बल्कि किन्नौर का खूबसूरत कल्पा, बर्फीले रेगिस्तान वाला स्पीति भी देखिए। वहाँ के शांत मठ, सेब के बाग और पहाड़ी जीवन आपको प्रकृति से जोड़ देगा।
0: और इसके साथ ही लद्दाख का लामायुरु गांव, जिसे मूनलैंड भी कहा जाता है, यहां का अनोखा चंद्रमा जैसे धरती का नजारा और सदियों पुराना बौद्ध मठ किसी दूसरी ही दुनिया का एहसास कराते हैं।
1: तो मेघालय का मावली नांग, जो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है, नागालैंड का खोनोमा, जो बहुत ही खूबसूरत ग्रीन विलेज है। तो यहां के साधारण से घर, मिट्टी के चूल्हे पे बनी एक रोटी, किसी बुजुर्ग की बनाई लोक कथा आपकी पूरी यात्रा को खूबसूरत बना सकता है।

0: साथ ही इन्होंने एक बहुत ही अनोखा सा मैसेज किया है। इन्होंने लिखा है आशीष गिरी जी कि मेरा सच्चा साथी मेरा मोबाइल है जो मेरे मूड से चलता है, जब चाहे ऑन जब चाहे ऑफ।
1: और राधा पाठक जी लिखती हैं कि हमारा सच्चा साथी हमारा ज्ञान है जो हमें हमेशा सही राह पर ले जाता है।
0: बिल्कुल। और नवीन कुमार लिखते हैं कि पत्नी है जीवन की मधुर मुस्कान, उससे ही महकता है हर अरमान, सुख दुख में जो थामे हर पल हाथ, यही होती है जीवन की सच्ची साथी।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत संगीत आप सुन रहे हो जाला फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और मन्ना डे ने।
1: और इसी के साथ आज की हसीन सफर को देते हैं यहीं विराम। फिर मिलेंगे किसी दिन इसी समय पर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। डीजे मंजुला
0: और कल्पना को अनुमति
1: नमस्कार।

0: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएपीए अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्यागपत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba.

दोस्तों आपका इंतजार खत्म होता है और पेश करते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। जी हाँ, इस वक्त दिन के 1:10 हो रहे हैं और हमारे कार्यक्रम एक ही फिल्म से का वक्त हो चुका है, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे दीवाना फिल्मों के गीतों को और करेंगे फिल्म से जुड़ी ढेर सारी बातें। लेकिन इससे पहले सुनते हैं इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, सन 1992 में रिलीज हुई ये फिल्म एक प्रेम कहानी है जिसमें ऋषि कपूर, दिव्या भारती और शाहरुख खान मुख्य भूमिकाओं में थे। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ये फिल्म एक प्यार, त्याग और फिर से जीने की उम्मीद की कहानी है। यह फिल्म दिव्या भारती, जो कि काजल के रोल में है, इनके इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने पति रवि यानी ऋषि कपूर की मृत्यु के बाद राजा यानी शाहरुख खान से प्रेम करती हैं। हालांकि रवि के जिंदा होने और फिर से काजल की जिंदगी में आने से सब कुछ बदल जाता है।

0: आगे भी करेंगे कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बातें, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: Hey girls, congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओ, आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की हमारी फिल्म है दीवाना। और इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ बनी हुई हूँ, आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा। श्रोताओ, बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि शाहरुख खान की भूमिका के लिए सनी देओल पहली पसंद थे। जब सनी देओल ने इस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया तो फिर शाहरुख खान को कास्ट किया गया। ये शाहरुख खान की पहली फिल्म थी। उन्होंने इस फिल्म से पहले ही दिल आशना है के लिए साइन कर लिया था। ये फिल्म थोड़ी देरी से रिलीज हुई और संयोग से दोनों ही फिल्मों में उनकी जोड़ी दिव्या भारती के साथ ही थी।

श्रोताओं, एक बड़ी ही रोचक बात यह है कि ऋषि कपूर को पहली बार इस फिल्म का एक गीत है ऐसी दीवानगी गाना सुनने पर इस गीत से प्यार हो गया था। वे लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि यह गाना उन पर फिल्माया जाए, लेकिन फाइनली इस गाने को शाहरुख खान के लिए ही फिल्माया गया। ये भी बताना चाहूंगी कि इस गीत की धुन एक फेमस कन्नड़ गाने पर आधारित है। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस फिल्म के इसी गीत को अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाजों में।

दोस्तों, एक बहुत ही गौर करने वाली बात है कि इस फिल्म में बोल राधा बोल से बहुत कुछ मिलता जुलता है जो उसी साल रिलीज हुई थी। दोनों में ऋषि कपूर हैं और दोनों में ही उनकी माँ का किरदार सुषमा सेठ ने निभाया था। दोनों फिल्मों में अन्य कलाकार जो दिखाई दिए हैं उनमें आलोक नाथ और मोहनीश बहल शामिल हैं। दोनों फिल्मों में बहल ने नायक के परिवार के एक भरोसेमंद कर्मचारी के दुष्ट बेटे की भूमिका निभाई है। साथ ही दोनों फिल्मों में जब मोहनीश बहल के बुरे काम पकड़े जाते हैं तो उसका पिता उसे घर से बाहर निकालने का नाटक करता है। साथ ही दोनों फिल्मों में एक किरदार को मरा हुआ मान लिया जाता है, लेकिन अंत में वह जीवित और स्वस्थ दिखाई देते हैं। खैर, ये तो रही दोनों फिल्मों की सिमिलैरिटीज, लेकिन गीतों का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते हैं इस फिल्म का ये अगला गीत।

श्रोताओ, कार्यक्रम के बीच में बहुत सारे संदेश हमें आ रहे हैं। जो संदेश आ रहे हैं वो आ रहे हैं गुजरात अजीत भास्कर का, और जो अगला संदेश है वो है यसीन अनजान का झारखंड से। गुरमीत सिंह हमें लिख के भेज रहे हैं शालीमार बाग से। पूनम गजनेजा जी हमें संदेश भेज रही हैं, साथ ही सुधाकर यादव, और इनके साथ हैं प्रशांत राज कुमार, संचित दयाल कुमार, प्रथमेश देशमुख और इनके अन्य साथी जो हमें लिखकर भेज रहे हैं। साथ ही अगला संदेश है नरेंद्र जी का और राधे श्याम देवगन हमें लिखकर भेज रहे हैं। इंदिरा नगर भंवरपुर से कमल कांत गुप्ता जी हमें लिखकर भेज रहे हैं। सतीश अनेजा जी हमें लिखकर भेज रहे हैं। साथ ही अगला संदेश है वो हरजिंदर शिंदा जी हमें लिखकर भेज रहे हैं। पंजाब से आर कुमार हमें लिखकर भेजा है, और इनके साथ हैं मिंटू थॉमस पंजाब से। धर्मेंद्र चीपा जी हमें लिखकर भेज रहे हैं, कपिल चीपा, और पूजा परिहार जी हैं, फागुराम यादव हैं, मुकेश भट्टा जी हैं, पीएस नावकर भी हमें लिखकर भेज रहे हैं। साथ ही जो अगला संदेश है वो रामचरण विश्वकर्मा जी का है, और बसना से हमें लिखकर भेज रहे हैं राधेश्याम जी। राजकुमार डूडी हमें लिखकर भेज रहे हैं, रोजी डिकस्ट्रा भी हमें लिखकर भेज रहे हैं, और इनके अन्य साथी हैं संजय ढींगिया हमें लिखकर भेज रहे हैं, सुदर्शन मुखी शांति नगर सोनीपत से हमें लिखकर भेज रहे हैं।

सुदर्शन मुखी जी हमें लिखकर भेज रहे हैं कि उन्हें हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है और बहुत ही जानकारियां प्राप्त हो रही है. आपका दिवस और जीवन बहुत शुभ और सुखद हो. बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन मुखी जी. हम भी उम्मीद करते हैं कि आपका और हमारे सभी लिसनर्स की जीवन बहुत ही सुखद हो. फारूक अली खान हमें संदेश भेज रहे हैं. संदीप मक्कर हमें संदेश भेज रहे हैं. साथ ही जो अगला संदेश है वो है दिग्दर्शन गौर जी का. सुरेश जाधव हमें लिखकर भेज रहे हैं. अहमद फूलवाले हमें लिखकर भेजा. इनके साथ हैं इनके अन्य साथी. संदीप मक्कर जी का संदेश आ रहा है. हीरामणि वर्मा जी हमें लिखकर भेज रहे हैं. और जो अगला संदेश है वो है इशक मोहम्मद का.

दोस्तों, ये फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई थी कि उस साल दूसरी सबसे हिट फिल्म बनी। बेटा फिल्म के बाद इस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की। यही नहीं, इस फिल्म का संगीत भी उस साल का सबसे ज्यादा बिकने वाला संगीत था, जिसमें 7 से 8 मिलियन यूनिट बेची गई थी। आपको ये बता दें कि इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को बेस्ट डेब्यू के लिए, दिव्या भारती को वर्ष का लक्स न्यू फेस के लिए, नदीम श्रवण को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए, समीर को सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए, कुमार सानू को गाने सोचेंगे तुम्हें प्यार के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिले। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का ये कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और अब मैं दीक्षा आपसे अनुमति देना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले सुनते हैं, जाते जाते सुनते हैं इस फिल्म का ये अंतिम गीत।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। 1:40 होने वाले हैं अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीबुर रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत के पहले पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और मरबूत ग्रीन फील्ड को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का इफ्तिताह भी किया। वज़ारत दाखिला ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम 23 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। मरकज ने बड़े पैमाने पर नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है, उससे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। भारत और इसराइल के दरमियान बाहिमी सरमायाकारी समझौता आज से अमल में आ गया है। IMD ने कहा है कि अगले 4 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मजीद आगे बढ़ जाएगा। और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में बलोतरा में तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से है, जिनमें रेलवे, सड़कें, पेट्रोकेमिकल्स, बिजली की तरसील और तवानाई वगैरह भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बालोतरा में पचपेदरा के मकाम पर मुल्क का पहला ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स कौम के नाम वक्फ किया, जो मुल्क के तवानाई और पेट्रोकेमिकल के शोबे में एक बड़ी कामयाबी है। जनाब मोदी ने बलोतरा में खिताब करते हुए कहा कि
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है। शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है।
0: इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का संग बुनियाद भी रखा, जिस पर 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आने का अंदाजा लगाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने चूरू सादुलपुर और चूरू रत्नागढ़ की रेल लाइन को दोहरा करने से मुतालिक प्रोजेक्ट और जोधपुर रिंग रोड सेक्शन 2 और नेशनल हाईवे 125A को 4 लेन वाले प्रोजेक्ट को कौम के नाम वक्फ किया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। ये प्रोजेक्ट 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये इमारत 23,000 मुरब्बा मीटर से ज्यादा रकबे पर फैली हुई है और इसमें सालाना 20 लाख मुसाफिरों की आमद और रफ्त की गुंजाइश है। इस इमारत में मुसाफिरों के लिए जदीद तरीन सहूलियात मौजूद हैं, ताकि वो बिला रुकावट और आसानी से सफर कर सकें। इस नई टर्मिनल इमारत से खित्ते में सियाहत, तजारत और रोजगार के मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने जोधपुर में उड़ान स्कीम का भी आगाज किया, जिसे नए सिरे से तश्कील दिया गया है। इस स्कीम के लिए अगले 10 साल के दौरान 28,840 करोड़ रुपए सर्व किए जाने का निशाना रखा गया है। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को तकवीयत देने की गरज से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सनांत के मकाम पर CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट मरकज का इफ्तिताह करेंगे। इसे 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत बनाया गया है। यह मरकज मुल्क की तकनीकी साजो सामान तैयार करने के सफर में एक अहम संगे मील साबित होगा। मरकजी वजारत दाखिला ने पाकिस्तान के 23 अफराद को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत दहशतगर्दों की फेहरिस्त में शामिल किया है। ये दहशतगर्द जैश मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और दीगर तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं। इन अफराद को शोरिश पसंदी, नए लोगों को भर्ती करने, असलहे की सप्लाई और जम्मू कश्मीर में हमलों की मनसूबाबंदी जैसी मुतअद्दिद सरगर्मियों में उनके मुलव्विस होने पर दहशतगर्द करार दिया गया है। ये कदम कौमी तफ्तीशी एजेंसी जैसी एजेंसियों को इस बात की इजाजत देगा कि वो इन अफराद के इक्तसादी असासे को मुंजमद करे,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे।

0: जहां वे सांडंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

0: मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जल स्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और

0: भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज। स्टूडियो की घड़ी में इस समय 2:30 और 16 सेकंड हो चुके हैं। लीजिए पेश है आपका अपना शो एक ही कलाकार।

राहत इंदौरी साहब ने एक शेर बहुत पहले ही कह दिया था कि लफ्ज कम पर जाते हैं जज्बात के आगे, संगीत बोलता है फिर हर हालात के आगे। एक ही कलाकार में आज बात उनकी जिनकी पहचान ही संगीत से है। तो आज की कहानी संगीत जगत के ऐसे ही फनकार की जिन्हें तीन अलग अलग नामों से जानते हैं हम। बॉलीवुड उन्हें M.M. करीम के नाम से जानता है, वहीं तेलुगु सिनेमा में वे M.M. कीरावानी के नाम से मशहूर हैं और तमिल सिनेमा में उन्हें मरगत मनी के नाम से पुकारा जाता है।

जी हाँ, भारत के इकलौते ऐसे दिग्गज संगीतकार और गायक जिन्होंने दक्षिण भारत से लेकर बॉलीवुड तक और फिर पूरी दुनिया तक अपने संगीत की खुशबू फैलाई। और ऑस्कर विजेता संगीतकार M.M. कीरावनी एक ऐसे संगीतकार जिनका संगीत प्रेम, भक्ति, दर्द, वीरता यानी इंसानी जज्बात के हर रंग में ढलना जानता है।

4 जुलाई 1961 आंध्र प्रदेश के कोवूर में जन्मे कोडूरी मरकतमणि कीरवाणी, पिता कोडूरी शिव शक्ति दत्ता, पेंटर और म्यूजिक कंपोजर, जिन्होंने फिल्मों के लिए कई गीत और स्क्रीन प्ले भी लिखे। मुंबई के सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई करने वाले पिता ने बचपन से ही संगीत से कीरवाणी का परिचय कराया और सिर्फ 10 साल की उम्र से ही उन्होंने वायलिन और हारमोनियम से दोस्ती कर ली। 1987 से अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत करने वाले 61 वर्षीय कीरवाणी को एसएस राजामौली की फिल्म आरआर के लिए गीत नाटू नाटू के लिए पहले गोल्डन ग्लोब से नवाजा गया और फिर सबसे बड़े संगीत सम्मान ऑस्कर अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के लिए। आइए सुनते हैं हम उनके एक और बहुत ही प्रसिद्ध गीत को।

जी हाँ साथियों, आपको याद दिला दें, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। और आपके संदेश, आपके मेल, हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, इसके लिए हम प्रतीक्षा में हैं ipradiodelhi@gmail.com पर। हमारे बहुत सारे श्रोता साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें शाहजी बोडके हैं, ये हैं हनुमान बोटके के साथ, उत्तम जमदाड़े जी के साथ हिंगोली महाराष्ट्र से, और हमारे कार्यक्रम को बहुत गौर से सुन रहे हैं। उसी तरह कार्यक्रम एमएम करीम जी पर आधारित आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, उनके गीत इन्हें बहुत पसंद हैं। और ये श्रोता साथी हैं संतोष कुमार सोनार, सन्नी मुन्ना, बंडू दादा, ये हैं रथ चौक बहादुरपुर खानदेश महाराष्ट्र से। जी, महाराष्ट्र के बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप हमसे जुड़ते हैं और हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और हमारे हौसले को बढ़ाते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिरासी, अमीना बेगम, तबस्तुम तरन्नुम और तराना, हिना और सीमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम को बहुत गौर से सुन रहे हैं। इसी तरह पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हैं अनिल, उषा, टिल्लू नायक और मधु नायक, कार्यक्रम सुनने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज प्रसिद्ध बॉलीवुड संगीतकार एमएम करीम जी पर केंद्रित कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और जानकारी अच्छी लग रही है। और ये लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं हीरामणि वर्मा दतरंगी भाटापारा से। उसी तरह हमारे श्रोता साथी हैं, ये हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया आयान और ये हैं धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल और पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संबलपुर कांकेर से फग्गू राम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव हैं। और देखिए, जो हमारे लिसनर्स हैं वो संगीत से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं और इसीलिए रेडियो उनका अपना मनपसंद साथी होता है और हमारे साथ वो जुड़कर हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, हमारे कार्यक्रम के लिए हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। और आप सुन रहे हैं एक ही कलाकार में आज प्रसिद्ध संगीतकार एमएम करीम के बारे में। तो चलिए, हम आपके इसी तरह संदेश साझा करते रहेंगे आपसे भी, लेकिन फिलहाल करते हैं हम उनकी बात जो है आज हमारे कार्यक्रम के केंद्र में। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने वाले कीरावानी जी जो हैं, उनकी यात्रा भी हर सफलता की यात्रा की तरह आसान नहीं रही। दोस्तों, लंबे समय बतौर असिस्टेंट काम करने के बाद जब उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला तो उनकी वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। 1990 से अपने करियर की शुरुआत करने वाले

प्रतिभाशाली कलाकार को 1991 में तेलुगु क्षण क्षणम से बड़ा ब्रेक मिला। ये वो पहली हिट फिल्म थी जिसने केरावनी को बतौर म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया। और 1994 में उनकी एक फिल्म आई क्रिमिनल, जिससे उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक मिला हिंदी सिनेमा में कदम रखने का। क्योंकि क्रिमिनल का तेलुगु संस्करण जो था वो 1994 में आया था और हिंदी संस्करण 1995 में आया, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा कोहराम मचाया फिल्म के संगीत ने। क्रिमिनल फिल्म ने जितना पैसा फिल्म से कमाया था उससे कहीं ज़्यादा उसकी म्यूजिक सीडी की बिक्री से कमाया गया। और इस फिल्म के गीत तू मिले दिल खिले ने रातों रात मशहूर कर दिया संगीतकार M.M. करीम को।

जी हाँ, 1998 में फिर उनकी फिल्म आई जख्म, जिसका गीत गली में आज चांद निकला ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और आज भी वो गीत जब कहीं बजता है, जैसे कुछ देर पहले हमने आपके लिए बजाया, तो एक कदम हर संगीत सुनने वाले साथी का ठिठक कर रह जाता है उस गीत और संगीत में खो जाने के लिए। और उसके बाद एक बहुत ही औसत फिल्म का जादुई गाना आया, जादू है नशा है, जो महीनों तक लोगों के जुबान पर चढ़ा रहा। एक के बाद एक हिट गीत देने वाले M.M. करीम, जिन्होंने कई ऐसे गीत कंपोज किए और उनके हर कंपोज किए गीत को सुनने वाला संगीत का दीवाना मदहोश होकर सुनता रहा।

एम एम कीरावनी कोडूरी मराक थामनी कीरावनी, ऐसे परिवार से आते हैं जहां संगीत और सिनेमा दोनों मिले हैं विरासत में उन्हें। परिवार में कला का माहौल और मेहनत और सफलता उनके कदम चूमने लगी। जानते हैं उन्होंने महान संगीतकार के चक्रवर्ती के सहायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और यहीं से उन्होंने सीखा धुनों को जीना।

साथियों आपको बता दें, एक ही कलाकार में बात हो रही है प्रयोगवादी मौलिक धुनों के रचनाकार M.M. करीम की। 90 के दशक में जब हिंदी फिल्म संगीत में नए दौर में हिंदी फिल्म संगीत प्रवेश कर रहा था, तब निर्देशक महेश भट्ट ने M.M. करीम की प्रतिभा को पहचाना। क्रिमिनल के बाद ही उन्होंने यानी महेश भट्ट निर्देशित फिल्म जख्म में संगीत दिया। इस फिल्म में M.M. कीरावनी ने भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्रों का बहुत ही खूबसूरती से प्रयोग किया। फिल्म की संवेदनशील कहानी के साथ वो गीत बिल्कुल मुफीद रहे। उनकी सरल धुन, भावनाओं की गहराई, इस फिल्म के गीत संगीत ने अपनी अलग पहचान तो बनाई ही। साथ ही आपको बता दें कि एक ही कलाकार में ये जो हमारे साथी हैं आज के M.M. करीम, ये कलाकार, इनके साथ एक किस्सा बहुत ही मशहूर हुआ। वो था तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के पितामह रामोजी राव के लिए, कि उस समय कीरावनी ने कई फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया था उनके लिए, और एक फिल्म पर काम करने के लिए फिल्म के निर्देशक ने से उनका मतभेद हुआ और उन्होंने उस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। रामोजी राव ने जब इसकी वजह उनसे पूछी तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस पूरी की पूरी फिल्म की कहानी में क्रिएटिव डिफरेंस और रचनात्मकता की कमी लग रही है। ऐसे जो शब्द थे वो रामोजी राव के लिए बहुत ही नए थे, अनोखे थे और अनसुने थे। फिर क्या था, रामोजी राव को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने अपने

असिस्टेंट से कहा कि कीरवानी की जगह किसी और को लेकर आए, कोई एमएम करीम है, उनका म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। ऐसा कहा उन्होंने, यानी जिस दौर में लोग उनकी धुनों के दीवाने थे तब वे एमएम करीम का नाम भी नहीं जानते थे। 1994 से लेकर अगले 10 सालों तक एमएम करीम हिंदी सिनेमा के लिए गुमनाम से रहे और लोग सिर्फ उनके गानों के मुरीद थे, वे नहीं जानते थे कि कंपोज किसने किया है।

साथियों, एमएम कीरा वाणी के बारे में ये बताना जरूरी है कि अपने काम को पूजा की तरह करने वाला ये कलाकार, उनका मानना है कि संगीत कहानी का किरदार होती है और बैकग्राउंड की तरह उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। शायद यही कारण है कि उनका हर गीत दिल में चस्पा हो जाया करता था। ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब, पद्मश्री विजेता कीरवानी साहब इंटरनेट के पहले भी पैन इंडिया हो चुके थे, लेकिन अब वे ग्लोबलाइज हो चुके हैं। आज उनके जन्मदिन के मौके पर उनके खुशहाल जीवन की हम कामना करते हैं और उन्हें अपने कार्यक्रम के माध्यम से जन्मदिन की बधाई देते हैं। आशा करते हैं आज का शो, आज के कलाकार में प्रस्तुत जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ इस कार्यक्रम से दीजिए मुझे यानी मनीषा को अनुमति, छोड़े जा रही हूँ इस शो के अंतिम गीत के साथ। आपको नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए पेश है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: नृत्य गोपाल जी
1: जी चंपा जी,
0: देखो आपको और हमारे सब श्रोता भैया बहनान को ना आषाढ़ के महीना की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना।
1: जी हाँ चंपा जी, हमारे सब श्रोतान को बधाई शुभकामना है। और देखो तो सही कैसे धीमे धीमे और बड़े प्यारे प्यारे से उमड़ते घुमड़ते बदरान के बीच में रसीले फलन के संग, और ये आकाश में जब आते जाते बादल हो ना, वहाँ में बाहर बैठ के आषाढ़ मास को आनंद कछु और है जाए है।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, यही मारे तो ये साढ़ को जो महीना है ना बड़ो सुहानो लगे, और हमारे ब्रज में तो ऐसे ही या पावस ऋतु के असाढ़ के काजे कहो गयो है ना। चलो सखी ब्रज कुंजन की ओर।
1: जी हाँ चंपा, ये जो कुंजन की ओर चलवो है ना, कुंज आमंत्रण दे हैं, आप तनिक देखो तो सही कुंजन की सघनता और वनन की जो संपदा है, ये कौन को मन नाय मोवे है। या मैं ऐसे बादल में बूंदन के बीच में ये सघन लता पता कुंज ऐसी हरियाली है गई है कि इन पर पक्षीन को कलरव और इनको देख के नेत्रन को जो आनंद मिले।
0: हाँ।
1: वासो तो बरबस ही हम सब उनकी ओर खिंचे चले आमे हैं।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, ब्रज को वैभव तो है ही ब्रज की वन संपदा में। देखो इन्हीं वृक्ष और वनस्पति को और वृक्षारोपण और पर्यावरण को महत्व देते हुए ना हमारे देश भारत में प्रतिवर्ष यही लिए ना वन सप्ताह 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मनायो जाए। तो आजकल तो हमारे यहाँ वन सप्ताह बड़े ही हर्षोल्लास से मनायो जा रहे हो है।
1: जी हाँ चंपा जी, पूरे भारत वर्ष में या समय वन सप्ताह मनायो जा रहे हो है। और आपको बता दें कि वर्ष 2026 की जो वन सप्ताह की मुख्य थीम है ना
0: जी,
1: वह विषय है वन और अर्थव्यवस्था।

0: बाजी, हमारे जो पर्यावरण शास्त्री हैं उन सबने मिलके तनिक देखो तो सही, कितनों विचार करके ये विषय दियो है। क्योंकि यदि हम देखें तो प्रकृति की संपदा, प्रकृति को अर्थ, प्रकृति को धन तो ये वन और वनस्पति ही हैं।
1: यही लिए तो काऊ ने सांची बात कही है, अगर परिंदों के गीत सुनना चाहते हो तो पिंजरा मत खरीदो, पेड़ लगाओ।
0: और तनिक देखो तो सही, हमारे तो जितने हु ब्रजवासी हैं, हमारे यहाँ संत हैं, वे सब तो अपने वनन में छोटे छोटे तुलसी के पौधा लगाए रहे हैं और लता पतानकू ऐसे सिंचित कर रहे हैं, ऐसे रख रखाव कर रहे हैं, मानो यही इनके प्राण हैं।
1: हाँ नृत्य गोपाल जी, यही लिए तो जो ये वन संपदा है ये प्राणाधार है, संजीवनी है, और इनकी जो सघनता है ना वो मानव जीवन की ऊर्जा है।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये मनभावन लोकगीत सुन रहे हते। तो नृत्य गोपाल जी, देखो हम अपने श्रोता भैया बहनान के संग या वक्त चर्चा कर रहे हैं वन सप्ताह की। तो आपने कितनी बढ़िया बात कही कि जो थीम है वो भी वन संपदा की अर्थव्यवस्था से जोड़ के अब की बार रखी गई है।
1: चंपा जी, देखो ब्रज में 12 वन, 12 उपवन, और ये जो एक लंबी श्रृंखला है ना ब्रज के

0: ये देखो हम अपने श्रोता भैया बहनान के संग यह वक्त चर्चा कर रहे हैं बंद सप्ताह की। तो आपने कितनी बढ़िया बात कही कि जो थीम है वो भी बंद संपदा की अर्थव्यवस्था से जोड़ के अब की बार रखी गई है।
1: चंपा जी देखो, ब्रज में 12 वन 12 उपवन और ये जो एक लंबी श्रृंखला है ना ब्रज के वनन की, ये जो ब्रज के वनन को वैभव है ना, यह ऐसी संपदा है। अगर हमें इमारती लकड़ी लेनी हो
0: हाँ
1: तो हमारे वन हमको दे हैं, तनिक देखो तो सही, पूरे जो हमारा उत्तर भारत को मैदानी इलाकों जासों कहें,
0: हाँ
1: वहां में आम नीम शीशम सागवान मिले हैं, ये सब इमारती लकड़ी हो। तनिक देखो काम आईवे बारी जो लकड़ी हैं, बबूल छोंकर फरास नीम पापड़ी धों रेमंजा हींस, ये सब हमें वनसो ही तो मिले हैं।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, बात आप सही कह रहे हो। देखो कितनी रोचक बात, अषाढ़ के महीना में जैसे ही पावस ऋतु को आगमन होवे तो देखो जो वृक्ष हैं उनकी लता पतन की जो शाखा है बेउ विस्तार पा जाए, जो पत्ता है बेउ सघनता को ग्रहण कर ले में है। तो ये आषाढ़ को महीना है ना, ये अपने आप में बड़ो सुहानो मनोरम और रमणीक महीना है।
1: चंपा जी आपने ये जो बात कही है, हम एक चीज भूल गए, जब पत्तान की बात कर रहे हो तो पत्तान ते पत्तर बनाए गए, जितने भंडारे हो हम तो पत्तरन पे भंडारे करे हैं, और बाकी सी शुद्धता तो कहीं ना मिले कि हमारे यहाँ पे झाऊ की इतनी डलिया बनाई जा रही है, हमारे पशु के ताइन जो टोकरा बनाए जाए ना वे हु तो झाऊ की लकड़िया सो बने, वे ब्रिज में खूब हो है।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, ढाक के पत्तान की पत्तर बना लई तो उन पत्तरन पे परोसवे को सामान है बेऊ तो डलिया बाकी काजे चाहिएगी तो बाकी

0: आगे बढ़ाते हुए एक अपने भैया बहनान को काव्य पाठ की ओर ले चले।
1: जी हाँ चंपा जी, देखो जैसे ही अषाढ़ सावन भादो लगे है ना, तो ब्रज में जो हमारे कवि है ना, वे बैठ के कहूँ बंगला पे कहूँ बैठक पे अपनी कवितान को रस बिखेरे हैं, आनंद ले हैं श्रोता। तो क्यों ना आज हम अपने श्रोतान के ताई ये काव्य पाठ सुनवा में।
0: तो आओ प्यारे भैया बहनाओ, अब हम आपको सुनवाए रहे हैं काव्य पाठ कविवर अशोक अग्गे जीते।
2: ब्रज माधुरी के सभी श्रोतान को अशोक अग्गे की सबको नमस्कार। बारे

देती गूंज सुनाई है। खान पान को ध्यान रखो सब बात बुजुर्ग।

जब दौज की है गई पूरनमासी, मैं अपने घर सो निकसी, वहां नंद को ला लाओ बैठो ओताई, और मैं चितई मुख मोर हसी, पर संग सहेली ने सौ सौ लगाई, पर संग सहेली ने सौ सौ लगाई, सास ने गारी दई रिसिसों, और नंद ने फंद रचे हैं बनाई, बलिहार करो ब्रज को बसिबो, जहां पानी में आग लगावे लुहाई, बलिहार करो ब्रज को बसिबो, जहां पानी में आग लगावे लुहाई। तुम्हारी भजनारी बड़ी चतुर है। एक आज के जमाने में चल रही है बात के मैया बापन को बुजुर्गन को लोग बागे का है पीछे हटा दें, और बागे का जय रस खान जी ने बड़ा बढ़िया सवैया लिखो है, वो जीवन भर याद रहेगो। सुनिए सब की कहिए न कछु, रहिए मिया बब बागर में, सुनिए सब की कहिए न कछु, रहिए मिया बब बागर में, करिए व्रत नीम सचाई लिए, जिन सौतरी

उजागर में ओ रस खान गोविंद यो भजिए जिमिनागर को चित गागर में जिमिनागर को चित गागर में। बहुत सुंदर सवैया है इनको। और मैं जे देखूं कि वृंदावन में ब्रज में हमारे और गिरिराज जी में अलग अलग ठाकुर हैं। हमारे जो ब्रज के ठाकुर हैं वो सबरे टेढ़ी टांग करके खड़े हुए हैं, तो उनकी बात है एक जमुना जी भी टेढ़ी, बाकी बाद में क्या ठाकुर जी भी टेढ़े खड़े हुए हैं। तो जागो रहस्य का है कि टेढ़ी

बारी टेढ़ी ही लाठी को हाथ लिए टेढ़ो खड़ो मेरो बांके बिहारी। और क्या एक छंद में कि ब्रज प्रेम भक्ति को लड़ुआ है चखियों पर चूरा।

के विश्वास अधूरो मत करियो, विश्वास अधूरो मत करियो। और देखिए हमारे ब्रिज में आमे कमे लोग, सबसे बड़ी बात है कि भरपूर जवानी दम ही दम, बस दाम ही दाम याद आयो, मन लग्यो नहीं हरे चरणन में, सब भूल्यो काम याद आयो, मन लग्यो नहीं हरे चरणन में।

आयो सब छोड़ दई दुनियादारी पर तेरी यारी ना छोड़ी। दो चार दिना कहूं घूम लिए ब्रज भूमि प्यारी ना छोड़ी।

छोड़ घर द्वार, धन दौलत मिला तुम्हार, हार मान बैठे श्यामून को सहारो है, तो मान सम्मान कहूं कहूं अपमान मिले, तो मान सम्मान कहूं कहूं अपमान मिले, सबको भल्यो हो ऐसो मन में बिचारो है, काउदना भोजन में माल पुआ खीर मिले, काउदना भूखे पेट फाके में गुजारो है, काउदना भोजन में माल पुआ खीर मिले, काउदना भूखे पेट फाके में गुजारो है, और सबको बचावे वही।

पर दर पे तेरे ताका झांकी, हे बांके बिहारी न छोड़ी, हे बांके बिहारी न छोड़ी, छोड़ घर द्वार

0: नाम को पुकारो है, एक छंद गिरिराज जी का और बोल दे रहा हूँ, तो गिरिराज जी हमारे दोनों करते थके खड़े हुए हुए हैं। सोने को मुकुट मनोहारी, सोने को मुकुट मनोहारी, और पाग बंधी है जरतारी, मुक्ता मणिमाल गरे सो है, नख पे गिरिराज सिला भारी, दूजे कर सोहत रतन जड़ी, चांदी की छड़ी लगे प्यारी, दूजे कर सोहत रतन जड़ी, चांदी की छड़ी लगे प्यारी, यह दिव्य छटा बाकी जाकी, श्रीनाथ प्रभु की बलिहारी। अशोक की सब भजन को राधे राधे राधे राधे।
1: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप काव्य पाठ सुन रहे कविवर अशोक अग्र जी को, और उनने तनिक देखो तो सही बारह मासिन को वर्णन कर दियो, उनने हमारे यहाँ की वन संपदा की चर्चा कर ली, फसलन की चर्चा कर ली, और बाकी बिहारी और गिरिराज जी की तो बात ही कहा कही जाए, उनने उनको हूँ नमन कर लियो।
2: नृत्य गोपाल जी, नमन करवे की बात यो हो वे ना के आषाढ़ को महीना लग गयो, तो आषाढ़ सावन भादो क्वार, तो अब ये चातुर्मास को समय ब्रज में या वक्त उपासना को और आस्था के ये चारों महीना हैं, तो चर्चा तो हमारे चाहे गिरिराज जी हैं, चाहे बिहारी जी हैं, चाहे राधा रानी हैं, इन सब इष्टन को बने ही हैं। तो ऐसा करें कि चलते चलते अब अपन की चर्चा तो चल ही रही है, यही चर्चा के बीच में अपने प्यारे भैया बहनान को एक मन भावन सो लोकगीत सुनवाई दें।
1: आप तो जल्दी करे करो ऐसे कामन के।
2: तो आओ प्यारे भैया बहनाओ, जब नृत्य गोपाल जी ने संकेत कर ही दियो है, आपके संग हम सुने या मन भावन से लोकगीत को।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये सुरीलो सो लोकगीत सुन रहे हते। हाँ प्यारे भैया बहनाओं, बात तो आपके संग करवे को बहुत सारी हैं, पर आप भी जानो हम भी जाने के समय की अपनी सीमा है। कोई बात ना है, अब आए हैं तो जानो पड़ेगो, फिर मिलेंगे। हाँ भैया बहनाओं, इन्हीं प्रेम भरी बातन के संग हमारो आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब यही संपन्न होवे है। मोए अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को
1: और मो नृत्य गोपाल को कार्यक्रम प्रस्तुत करता वी के तोमर के संग जैविकी अनुमति प्रदान करें।
0: नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में 3:30 और 16 सेकंड हो चुके हैं। प्रस्तुत है

0: नाटक फुलमो रांझो कड़ी दो। नाटक के लेखक हैं रमन केसर, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है।
1: आइए सुनते हैं नाटक फुलमो रांझो। लेखक रमन केसर, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। आज आप इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुनेंगे।

0: माई बाप है सरकार।
1: जा सकते हो। हाँ एक बात और, आज रात को सो मत जाना।
0: जी मालिक।
1: ऐसे ही नाटक करना सोए हुए होने का। रात का पहला पहर खत्म होने पर जैसे ही फुलमू उठकर दबे पांव बाहर जाने लगे ना, तो बाजू पकड़कर रोक लेना।
0: ठीक है सरकार।
1: और उसे बता देना कि रांझो नहीं आ पाएगा।
0: जी।
1: बेचारे की मुश्कें कस दी गई हैं। बिना माँ की लड़की ऐसे ही आधी रात को उस अंधेरी वीरान जगह पर प्रतीक्षा करती रहेगी, कहीं को जानवर खा गया या चुड़ैल चिपट गई, और तुम तो काकुराम बिल्कुल अकेले रह जाओगे फिर।
0: नहीं मालिक।
1: जा तू जा। कोई नहीं कोई नहीं, देख तू समझदारी से काम लेगा तो मेरा कोई बैर थोड़ी है तुझसे।
0: जी जी मालिक।
2: बाबू बाबू दरवाजा खोलो बाबू, अब तो खोल दो दरवाजा बाबू।
1: सुन चलो तुझे भी संतुष्टि हो गई ना कि अब फुलमू दर बदर नहीं होगी।
0: बापू ये क्या क्या,
1: अब वो घर से ही नहीं निकल पाएगी। खाना खाकर आराम से सो जाना।
0: खाना खाकर बापू को मेरी बात तो सुनो।
3: हे भगवान अब क्या होगा मेरी फुलमू का।

0: दूसरा दिन होने वाला है।
1: अरे
0: अरे अब तो किवाड़ खोल देते बाबू, अब तो किवाड़ खोल दो।
1: ओ, ओ, खोल दूंगा खोल दूंगा, लेकिन करोगे क्या बाहर आकर?
0: यहाँ क्या है बापू, मुझे भले ही सारा जीवन कोठी में बने कारावास में डाल दो, मगर फुलमू से कभी भी अलग नहीं कर सकते। हाँ बाबू, कभी नहीं कर सकते, भले ही मेरा खाना पानी भी बंद कर दो।
1: अरे इतनी बेचैनी किस बात की, पहले दो कोर तो उतार ले।
0: कोर उतार लो?
1: हाँ।
0: मतलब ही नहीं बाबू।
1: सुन, एक महात्मा जी को बुलाया हुआ है, उनसे जीवन के कुछ सूत्र सीख लेना, फिर खोल दूंगा किवाड़।
0: महात्मा क्या कर लेंगे इसमें बाबू?
1: चुप कर, महात्मा जी आ रहे हैं।

0: कोई बात नहीं जेठा सिंह जी, सहज रहें। यही बच्चा है ना?
1: जी महाराज, यही है। बिल्कुल बिगड़ गया है। मेरा अपना बेटा नहीं होता तो अब तक खाल उतार ली होती इसकी।
0: नहीं जेठा सिंह जी, आप स्वयं ही शांत और संयमित नहीं।
1: अब
0: सबसे पहले तो दरवाजा खोलो और बच्चे को बाहर निकालो। दूसरा ये कि आपके रहते खुलकर बात नहीं हो पाएगी।
1: कोई बात नहीं महाराज, ठीक है।
0: और हाँ, इसके किसी हम उम्र या फिर किसी सेवक को भेज दीजिए, आवश्यकता पड़ सकती है।
1: जी

0: हाँ तो बेटा, मेरा बेटा रांझो तो अच्छा ऊंचा लंबा है। हाँ, रंग थोड़ा गंदमी अवश्य है। हमारी फुलमू बिटिया पक्का गोरी चिट्टी और थोड़ी मध्यम कद की।
1: हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। महात्मा जी, आप तो अंतर्यामी हैं।
0: बता सकते हो ऐसा क्यों? क्यों इतनी सुंदर है वो?
1: अब मैं क्या बोलूं, मुझे क्या पता महात्मा जी।
0: ठीक है, मैं जो भी पूछूं, तुम्हें मालूम हो तो जवाब दो, नहीं तो मैं स्वयं ही जवाब दे दूंगा।
1: ठीक।
0: तुम्हारा परिवार तो खानदानी है, राजसी है, मगर फुलमू का परिवार ऐसा ही होगा।

0: थोड़ा गरीब गुरबा सा।
1: थोड़ा नहीं समझो, बस कुछ है ही नहीं।
0: आकर्षण तो सदा विपरीतों में ही होता है बच्चा।
1: मुझे क्या पता।

0: महात्मा जी, ईश्वर के निकट तो आप ही अधिक हैं।
1: तो सुनो, दुनिया में लालसा तो प्रेम से पहले ही आ चुकी थी, जब मनुष्य का जीवन केवल शिकार के सहारे ही चलता था। तब परिवार की ये व्यवस्था नहीं होती थी। खेती की शुरुआत हुई तो संसाधनों का महत्व समझ आया। जमीन, पानी और मवेशी, ये सारी संपत्तियां अर्जित कर लेने पर इनसे लालसा और मोह का जन्म हुआ।
2: बच्चे, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब प्रकृति का खेल है। मनुष्य समझता है कि मुझे

0: साथी ढूंढते हुए उसी गुण पर मर मिटते हैं जिस गुण की उनके अपने में कमी होती है। अब तुम दोनों बच्चे सोच रहे हो कि तुम दोनों को एक दूसरे से कोई अटूट प्रेम है जो जन्म जन्मांतर तक चलेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है।
1: कुछ भी हो, अगर मैं और फुलमू एक दूसरे को मिल जाएं, तो उसमें बुराई ही क्या है?
0: बुराई ये है कि ऐसा होता ही नहीं है। जीवन चलाने के लिए विपरीतों की नहीं समानताओं की आवश्यकता होती है।
1: तो क्या किया जाए महात्मा जी, आप ही बताएं।
0: बेटा, जुनून आज तो है पर कल समाप्त होना ही होना है। इससे मुक्ति पाने में ही भलाई है। प्रीत लगाई भी जाए तो ऐसी जगह लगाई जाए जहां समानताएं अधिक हो।
2: धन्य हो महाराज, आप धन्य हो।
0: अब मैं चलता हूं रांझो, तुम आजाद हो, जहां चाहो आ जा सकते हो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। दिमाग घुमा कर रख दिया इन महात्मा जी ने।

सौ सौ नखरे चंबे तेरे नावे सौ सौ नखरे चंद्र नीरा भी सौ सौ

0: राम नाम सत्य है,
1: राम नाम सत्य है,
0: राम नाम सत्य है,
1: राम नाम
0: सत्य है।
2: अरे अरे अरे अरे, ठीक है, मौके पर ये क्या सुन

0: Ja, hier kan ik knapper waren.
1: Oh, ये क्या हुआ? बहुत ही अशुभ हो गया भाई.
2: सामने से अर्थी आ रही है. ये नहीं कहीं और खड़े होकर प्रतीक्षा कर लेते. शादी तो समय के अनुसार होती है.
1: हाँ हाँ, बारात को निकल लेने देते.
2: किनारे हटो सामने से. सामने मत दिखना.
0: हटो हटो.
3: क्या बातें कर रहे हो? जो दुनिया से चला गया उसके लिए तो सम्मान होना चाहिए.
1: खानदानी परिवार की बारात है, अशुभ होता है, इनका क्या है?
3: पर मृत्यु केवल एक बार ही होती है.
2: मैं कहता हूं पालकी हटाओ रास्ते से, हटाओ रास्ते से, निकल ले दो इन्हें.
3: राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है,
4: राम नाम
2: सत्य है,
4: राम नाम सत्य है,
5: राम नाम सत्य है,
4: राम नाम सत्य है,
6: राम नाम सत्य है,
7: राम नाम
8: सत्य है, राम नाम सत्य है.
2: अरे ये तो हमारे काकू राम की बेटी की अर्थी है, फुलमू की मौत.
3: क्या कहा? फुलमू? क्या हुआ मेरी फुलमू को? क्या हुआ मेरी फुलमू को? बोलो, बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ मेरी फुलमू को?
9: इसने जहर खा लिया पाले. अब शगुन के डर से हमने ज्यादा किसी को नहीं बताया. नहीं बताया.
2: फुलमू, फुलमू, फुलमू, ये तुमने क्या किया फुलमू?

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक फिल्मो रांझो, लेखक रमन केसर, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे प्रियंका भंडारी, मंगत राम, विशाल कुमार, दक्ष वशिष्ठ, नितिन गुप्ता और प्रवीण शर्मा। आज आप इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक फिल्मो रांझो कड़ी दो। इस नाटक के लेखक थे रमन केसर और निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।
2: ये है मेरी प्यारी पपेट और मैं इसका पपेटियर। कम थोड़ा सा नियर, हाउ आर यू डियर। अरे क्यों बैठी है मुंह लटका कर, खेल का टाइम है। कुछ खो गया है क्या?
3: खो ही जाएगा, आने वाले समय में लोग मैप लगा कर ढूंढेंगे। फोन में रास्ता बताने वाली दीदी का काम बढ़ने वाला है।
2: अरे क्या खो गया है?
3: इस बोतल का पानी जो अब नहीं है, तूने अपनी साइकिल की सीट पर डाल दिया फिजूल में।
2: अरे सीट गर्म हो गई थी।
3: मुझे प्यास लगी है, अब मेरा दिमाग गर्म हो रहा है।
2: अरे तो ला देता हूँ ना पानी।
3: जा ढूंढ, आगे जीपीएस लगेगा तब पानी मिलेगा।
2: जाने कैसी कैसी कहानियाँ बनाती है, कैसी बाणी है तेरी।
3: याद रखियो, पानी बाणी और कहानी बचाकर रखने की चीज है अगली पीढ़ी के लिए।
2: बात तो तेरी काम की लगती है।
3: अच्छा तो फिर एंटर मार दे अपने दिमाग के कंप्यूटर में, फटाफट थोड़ा कंट्रोल।

0: 印度队的广播电台就是普通话节目播送到这里，谢谢大家收听，再会。
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।

0: नमस्कार। खेल की दुनिया की हर हलचल, हर जीत और हर बड़े मुकाबले के साथ आपका स्वागत है खेल खिलाड़ी में। मैं हूं प्रेरणा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी वसीम अहमद। लेकर आए हैं आपके लिए ये कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। आज के कार्यक्रम की शुरुआत होगी फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक मुकाबलों से। इसके अलावा क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे T20 मुकाबले की तैयारियों पर रहेगी खास नजर। साथ ही भारत ए और श्रीलंका ए के बीच जारी मुकाबले का ताजा हाल भी जानेंगे। इसके बाद बात करेंगे विंबलडन 2026 के तीसरे दौर की PSA स्क्वैश टूर, पैरा तीरंदाजी विश्व सीरीज, ISSF शॉटगन विश्व कप की भी बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे U20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप की और रहेंगी खेल जगत से जुड़ी कुछ अन्य अहम खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खेल खिलाड़ी की फीफा वर्ल्ड कप की इस खास रिपोर्ट से।
1: दो टीमें 11-11 खिलाड़ियों की, लक्ष्य सामने वाली टीम के खेमे में घुसकर गोल मारना और अपने खेमे में विरोधी टीम को गोल ना करने देना। पैरों की रफ्तार, दिमागी जुनून, जज्बात, किक्स और हेडर से भरपूर फुटबॉल। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जारी है और साथ ही आज प्रातः खत्म हुए राउंड ऑफ 32 के मैचेस, जिसने प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले तय कर दिए हैं। राउंड ऑफ 32 में कल खेले गए तीन मुकाबले ऑस्ट्रेलिया बनाम इजिप्ट, अर्जेंटीना बनाम काबो वर्दे और कोलंबिया बनाम घाना। पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया बनाम इजिप्ट की। राउंड ऑफ 32 के बेहद रोमांचक मुकाबले में इजिप्ट ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली। मैच के शुरुआत में इजिप्ट ने इमाम अशूर के शानदार हेडर से बढ़त बनाई। दूसरे हाफ में ऑस्ट्रेलिया को मोहम्मद हानी के आत्मघाती गोल की बदौलत बराबरी मिली। इसके बाद दोनों

0: टीमों ने कई मौके बनाए लेकिन कोई भी निर्णायक बढ़त नहीं ले सकी। निर्धारित 90 मिनट तक मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा, जिसके बाद मैच अतिरिक्त समय तक पहुंचा। अतिरिक्त समय में भी कोई गोल ना हुआ और उसके बाद मैच पेनल्टी शूटआउट की ओर बढ़ गया। पेनल्टी शूटआउट में इजिप्ट ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। उसके चारों सफल पेनल्टी प्रयास गोल में बदले, जबकि ऑस्ट्रेलिया के दो शॉट गोलकीपर ने रोक दिए और एक अन्य प्रयास भी चूक गया। इजिप्ट के कप्तान मोहम्मद साला ने बेहद आत्मविश्वास के साथ पनेनका शैली में गोल दागकर टीम का मनोबल बढ़ाया और अंतिम सफल पेनल्टी के साथ इजिप्ट ने 4-2 से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया।
1: Egypt. That's how you do it. That's how you win it. They stay in the World Cup and Australia bow out.
0: यह जीत इजिप्ट के फुटबॉल इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है। पहली बार इजिप्ट ने फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण का कोई मुकाबला जीता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया का पहली विश्व कप नॉकआउट जीत का सपना एक बार फिर अधूरा रह गया। अब सभी की निगाहें अंतिम 16 के मुकाबले पर होंगी, जहां इजिप्ट का सामना मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना से 7 जुलाई को होगा। वहीं राउंड ऑफ 32 के अगले मैच में पहली बार खेल रही काबो वर्दे के सामने थी 4 बार की विश्व चैंपियन अर्जेंटीना। इस बेहद रोमांचक मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंची काबो वर्दे को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। काबो वर्दे ने अपने जुझारू खेल से अर्जेंटीना को अंत तक कड़ी टक्कर दी और मुकाबले को यादगार बना दिया। मैच के 29वें मिनट में लियोनेल मेसी ने लिसांड्रो मार्टिनेज के बेहतरीन पास को शानदार नियंत्रण के साथ गोल में बदलकर अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त दिलाई, लेकिन 59वें मिनट में काबो वर्दे ने शानदार वापसी की। रायन मेंडेस की सटीक तैयारी पर डेरॉय दुआर्ते ने दमदार फिनिश के साथ स्कोर 1-1 कर दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें बराबरी पर रहीं और मुकाबला अतिरिक्त समय में पहुंचा। अतिरिक्त समय के 92 मिनट में एक सेट पीस पर लिसांड्रो मार्टिनेज ने नजदीक से गोल कर अर्जेंटीना को 2-1 से बढ़त दिलाई, लेकिन काबो वर्दे ने हार नहीं मानी और 103वें मिनट में सिडनी लोप्स क्राब्राल ने पेनल्टी क्षेत्र के बाहर से शानदार कर्लिंग शॉट लगाकर स्कोर 2-2 कर दिया। आखिरकार 111वें मिनट में मेसी के कॉर्नर पर क्रिस्टियन रोमेरो के हेडर को रोकने की कोशिश में काबो वर्दे के डाइनी बोर्जेस से गेंद अपने ही गोल में चली गई। यह आत्मघाती गोल अर्जेंटीना की 3-2 की जीत का निर्णायक क्षण साबित हुआ। यह मुकाबला काबो वर्दे के लिए हार के बावजूद ऐतिहासिक रहा। विश्व कप में पदार्पण करने वाली इस टीम ने पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचकर और मौजूदा चैंपियन को अतिरिक्त समय तक संघर्ष करने पर मजबूर कर पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। वहीं अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार विश्व कप खिताब की ओर अपने अभियान को जीवित रखा। अब अर्जेंटीना की अगली चुनौती अंतिम 16 में इजिप्ट होगी। इसी राउंड ऑफ 32 क्रम के आखिरी मैच में आज प्रातः कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मुकाबले का एकमात्र और निर्णायक गोल 14वें मिनट में जॉन एरियास ने किया। डेनियल मुनियोस के शानदार मूव पर लुइस सुआरेस के सटीक क्रॉस को एरियास ने गोल में बदलकर कोलंबिया को शुरुआती बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में कोलंबिया ने बढ़त दुगनी करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ऑफसाइड के कारण एक गोल रद्द हो गया। वहीं घाना ने वापसी का भरसक प्रयास किया, पर कोलंबिया की मजबूत रक्षा पंक्ति के सामने उसे सफलता नहीं मिली।
1: एंड इट विल बी कोलंबिया इन वैंकूवर अगेंस्ट स्विट्जरलैंड। इट्स फिनिश्ड कोलंबिया 1 घाना 0।
0: इस जीत के साथ कोलंबिया अब राउंड ऑफ 16 में स्विट्जरलैंड से भिड़ेगा। फीफा विश्व कप 2026 अब उस मुकाम पर है जहां हर सेकंड धड़कनों को तेज कर देता है और हर मुकाबला सीधा फाइनल जैसी अहमियत रखता है। एक नजर डालते हैं राउंड ऑफ 16 के मुकाबलों पर। पहला मैच ह्यूस्टन में 4 जुलाई को भारतीय समय अनुसार 10:30 बजे खेला जाएगा कनाडा और मोरक्को के बीच में। दूसरा मैच पराग्वे और फ्रांस के बीच होगा 5 जुलाई को भारतीय समय अनुसार सुबह के 2:30 पर फिलाडेल्फिया में। तीसरा मैच ब्राजील और नॉर्वे के बीच में होगा 6 जुलाई सुबह 1:30 पर ईस्ट रदरफोर्ड में। चौथा मैच मेक्सिको और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा 6 जुलाई को सुबह 5:30 बजे मेक्सिको सिटी में। पांचवा मैच पोर्तुगल वर्सेस स्पेन के बीच होगा, जो कि 7 जुलाई को 12:30 बजे खेला जाएगा आर्लिंगटन में। छठा मैच होगा यूएसए वर्सेस बेल्जियम 7

0: जुलाई को सुबह 5:30 बजे सियाटल में। सातवां मैच अर्जेंटीना और इजिप्ट के बीच में होगा 7 जुलाई को रात्रि 9:30 बजे एटलांटा में, और राउंड ऑफ 16 का आखिरी मैच होगा स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच 8 जुलाई को सुबह 1:30 पर वैंकूवर में। अब आज से शुरू होने वाले हैं राउंड ऑफ 16 के 2 हाई वोल्टेज मुकाबले। एक नजर डालते हैं, पहला मैच कनाडा और मोरक्को के बीच जो आज रात भारतीय समय अनुसार 10:30 बजे खेला जाएगा। उभरती हुई उत्तरी अमेरिकी टीम कनाडा और अफ्रीकी फुटबॉल की सबसे संगठित टीमों के बीच मोरक्को के बीच पहला मैच होगा। यह मैच आज रात भारतीय समय अनुसार रात्रि 10:30 बजे से शुरू होगा। कनाडा जो लंबे इंतजार के बाद नॉकआउट चरण में पहुंचा है, इस समय आत्मविश्वास से भरा हुआ है। तेज गति वाले आक्रमण और घरेलू दर्शकों के समर्थन के साथ यह टीम अपने विश्व कप इतिहास का नया अध्याय लिखने की कोशिश कर रही है। विशेष बात यह है कि कनाडा पिछली बार 2022 फीफा विश्व कप के ग्रुप स्टेज तक पहुंचा था, जबकि उससे पहले भी वह लंबे समय तक नॉकआउट दौर में जगह नहीं बना सका था। इस बार उसका लक्ष्य पहली बार बड़ा नॉकआउट प्रभाव छोड़ना है। दूसरी ओर है मोरक्को, जिसने 2022 विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंचकर इतिहास रच दिया था और पहली अफ्रीकी टीम बनी थी जिसने अंतिम 4 में जगह बनाई। अनुशासित रक्षात्मक संरचना, मजबूत मिडफील्ड और तेज काउंटर अटैक इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। कनाडा के लिए यह मुकाबला जीतकर विश्व कप क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश करने और अपने फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय लिखने का सुनहरा अवसर है। वहीं मोरक्को के पास 2022 की ऐतिहासिक सेमीफाइनल यात्रा को दोहराने और एक बार फिर अफ्रीकी फुटबॉल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का मौका है। इसी कड़ी में राउंड ऑफ 16 का दूसरा हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। फुटबॉल के दिग्गज फ्रांस और दक्षिण अमेरिका चुनौती पेश करने वाली पराग्वे के बीच यह मैच 5 जुलाई को प्रातः 2:30 पर शुरू होगा। 2 बार की विश्व चैंपियन फ्रांस, जिसने 1998 में अपने घर में और 2018 में रूस में विश्व कप जीता, इस बात का भी गौरव रखती है कि वह 2 बार उपविजेता भी रही 2006 और 2022 में, जो विश्व फुटबॉल में उसकी निरंतरता को दर्शाता है। कोच दिदिये देशांस के नेतृत्व में ला ब्लू आज भी दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती है। किलियन एम्बापे जैसे विश्व स्तरीय सितारों से सजी यह टीम इस मुकाबले में प्रबल दावेदार के रूप में उतर रही है। वहीं दूसरी ओर है पराग्वे, जो अपनी मजबूत रक्षात्मक रणनीति और तेज काउंटर अटैक के लिए जानी जाती है। यह दक्षिण अमेरिकी टीम इस टूर्नामेंट में जायंट किलर की छवि के साथ आगे बढ़ी है और बड़े देशों को चौंकाने में सफल रही है। फ्रांस के लिए यह मुकाबला जीतकर एक और विश्व कप क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने और अपने तीसरे विश्व खिताब की उम्मीदों को जीवित रखने का यह अवसर है। वहीं पराग्वे के लिए यह मुकाबला इतिहास रचने का मौका है। जीत उन्हें विश्व कप क्वार्टर फाइनल में एक दुर्लभ और ऐतिहासिक प्रवेश दिला सकती है, जो उनके फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी।
1: अब बात एक और भारतीय शानदार प्रदर्शन की। मुंबई में खेले गए HCL स्क्वॉश PSL चैलेंजर टूर 2026 में भारत की तन्वी खन्ना ने शानदार वापसी करते हुए महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया। तीसरी वरीय तन्वी खन्ना ने फाइनल में विश्व रैंकिंग में 64वें स्थान पर काबिस इजिप्ट की दूसरी वरीय फरीदा वालिद को 5 गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराया। शुरुआती 2 गेम 8-11 और 2-11 से गंवाने के बाद तन्वी ने जबरदस्त वापसी करते हुए अगले 3 गेम 12-10, 11-9 और 11-7 से जीतकर खिताब अपने नाम किया। ये फरीदा वालिद के खिलाफ 2 मुकाबलों में तन्वी की पहली जीत रही। खास बात ये रही कि इस साल अहमदाबाद में आयोजित HCL स्क्वॉश इंडियन टूर 5 के फाइनल में फरीदा ने तन्वी को हराकर खिताब जीता था, लेकिन इस बार तन्वी ने उसी खिलाड़ी के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए हिसाब बराबर कर लिया। विश्व रैंकिंग में 74वें स्थान पर काबिज तन्वी का पूरे टूर्नामेंट में प्रदर्शन भी शानदार रहा। पहले दौर में उन्हें बाय मिला, जिसके बाद उन्होंने भारत की पूजा आरती रघु को सीधे गेमों में 11-5, 11-6, 11-6 से हराया। क्वार्टर फाइनल में मलेशिया की जोई फू को 3-1 और सेमीफाइनल में जापान की अकारी को 3-2 से हराकर उन्होंने फाइनल में जगह बनाई, जहां खिताबी मुकाबले में उन्होंने शानदार जुझारूपन का परिचय दिया। वहीं पुरुष एकल के फाइनल में मलेशिया के मोहम्मद सियाफिक कमाल ने इजिप्ट की दूसरी वरीय यासिन शोहेदी को भी 2 गेम से पिछड़ने के बाद 3-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। भारतीय चुनौती पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल में ही समाप्त हो गई थी, जहां शीर्ष वरीय वेलावन सेंथिल कुमार को यासिन चौहिदी ने सीधे गेमों में मात दी। वहीं भारत के शीर्ष वरीय पुरुष खिलाड़ी अभय सिंह

दुनिया के बेहतरीन निशानेबाज, एक ऐतिहासिक शूटिंग रेंज और विश्व कप का सबसे बड़ा मुकाबला। इटली के लोनाटो में एक बार फिर सज चुका है ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप का मंच, जहां आज से शुरू हो रहा है निशानेबाजी का ऐसा महासंग्राम जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। 3 जुलाई से 13 जुलाई तक चलने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में इस बार 80 देशों के 600 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कुल 708 इवेंट स्पोर्ट्स के साथ यह 2026 सीजन का अब तक का सबसे बड़ा शॉटगन वर्ल्ड कप बन गया है। पिछले साल की तुलना में इस बार खिलाड़ियों और भाग लेने वाले देशों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, जो इस प्रतियोगिता के बढ़ते महत्व को और भी दर्शाती है। प्रतियोगिता इटली के प्रसिद्ध ट्रैप कॉन के वर्दे शूटिंग रेंज में आयोजित की जा रही है, जिसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शॉटगन शूटिंग वेन्यू में गिना जाता है। यहाँ ओलंपिक चैंपियन, विश्व चैंपियन और कई उभरते सितारे स्कीट और ट्रैप स्पर्धाओं में विश्व कप पदकों के लिए निशाना साधेंगे। भारत भी इस बार 20

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो शशि भाई को नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, विकासपुरी गाँव बराना जिला।
0: महेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: सुरेश गोला को।
0: जरूर सुनवाएंगे, तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर सुरेश चंद गोला से ये रागनी। किस्सा रहेगा राजा मोर ध्वज का।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो ग्राम संसार, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: शोराम बोल रहे जी, डाणी मिट्टी से, जिला भिवानी हरियाणा से जी।
0: शोराम जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: मनसाराम चौहान और ऋषिपाल चौहान को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: कुछ बच्चे हैं जी, इनके नाम लेता हूँ पोतों के।
0: हाँ बोल दीजिए।
1: मोहित, रक्षित, जतिन, नितिन, दीक्षांत, दीपांशु और अंकित। दो पोते जी, आरती और पूजा।
0: हेलो ग्राम संसार।
2: राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मोहल्ला वाला शिकारपुर बुलंद शहर से बबली कुमार प्रजापति बात कर रहा हूँ जी।
0: बबली भाई, कार्यक्रम में स्वागत है। आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: आज ऋषिपाल चौहान और मनसाराम चौहान जी की आवाज में अच्छी सी राय में सुनवा दो सर।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: और हमारे परिवार का नाम नोट कर लो सर जी।
0: हाँ कराए।
2: पत्नी पुष्पा देवी, लड़की डॉली कुमारी, लड़का मोनू कुमार, लड़कियाँ पूजा रानी, लड़का छोटा भीम, शीशपाल अकेला, अनवर बिहारी जी।
0: हेलो ग्राम संसार
3: जी। भाई राम राम।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: गगन सिंह से बोल रहा हूँ।
0: घनश्याम भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: ऋषिपाल मनसाराम चौहान को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: नाम बोल दूँ?
0: हाँ बोल दीजिए।
3: मेरी बहन ज्ञानपति आनंदी और ज्ञानदा प्रधान जी हैं। सबको राम राम।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो ग्राम संसार, नमस्कार शशि जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: इस हाल से राजेंद्र सैनी बोल रहा हूँ शशि जी।
0: सैनी जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: ऋषिपाल चौहान और मनसाराम चौहान को सुनना चाहूंगा। बनवारी लाल यादव जी गामड़ी वाले, शमशेर जी द्वारका से, विजय लखेरा जी महेंद्रगढ़ से। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
5: नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: पुराना श्रोता हूँ, साधु से निराशी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: आज मनसाराम चौहान और साथी कलाकार उनको सुनना चाहूंगा जी।
0: ऋषिपाल चौहान और मनसाराम चौहान
5: जी। हाँ
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: हाँ जी, कुछ नाम लूंगा जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
5: मेरी बेगम मोहब्बत बेगम, मेरे बच्चे हैं सनाया तखान, चार मोहम्मद तखान, तबस्सुम तरन्नुम तराना हिना सीमा, और मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं नफीस सिंह मुदगल।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर ऋषिपाल चौहान और मनसाराम चौहान।

0: 3332। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
1: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अभी आपने कार्यक्रम ग्राम संसार सुना और अब से कुछ ही क्षण बाद यानी 7 बजे सुनेंगे आप हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग का वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिक विनिर्माण यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह की औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPF के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे।

मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत ने इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे टेक्सास में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में देर रात 2:30 पर पैराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम राम। तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, बहुत बार देखा जाता है कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो अपने फसल की सिंचाई करते हैं, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि जितनी मात्रा में पौधों को, फसल को पानी की जरूरत होती है, उससे ज्यादा पानी हमारे किसान भाई फसलों को दे देते हैं। इससे क्या होता है कि पौधे के जिस हिस्से पर पानी की आवश्यकता नहीं होती, उस पर भी पानी पहुंच जाता है। इससे पौधे खराब होने और कीड़े लगने का डर सताने लगता है। फिर इसी पौधे को बचाने के लिए हमारे किसान भाई क्या करते हैं, कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। अब सवाल ये है कि इन सब से कैसे बचा जा सकता है, तो इन सब का समाधान है टपक सिंचाई।
1: बिल्कुल शशि भाई, हमारे बहुत से किसान भाई इस विधि का उपयोग सफलतापूर्वक कर भी रहे हैं, जिससे पानी की एक बूंद का भी नुकसान नहीं होता। ऐसा करने से वो अपने पौधों को खराब होने से भी बचा लेते हैं, और अधिक पानी से खराब पौधों को बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता। ड्रिप इरिगेशन प्रोसेस या टपक सिंचाई के तहत किसान भाई अपने खेतों में लगी फसलों तक पानी पहुँचा सकते हैं। इसके लिए उन्हें ट्यूबवेल या बोरेवेल से बहुत पानी की जरूरत नहीं पड़ती।
0: बिल्कुल नीलम बहन, इसके साथ ही महंगी बिजली और महंगे डीजल के युग में अगर कम खर्च में सिंचाई का काम हो जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इसके लिए हमारे किसान भाई टपक सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई अगर टपक सिंचाई का फायदा जान जाएं, तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि बहुत कम खर्च में टपक सिंचाई का सिस्टम लगाया जा सकता है। इससे सरकार का सपना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी साकार हो जाएगी।
1: बिल्कुल, टपक विधि का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि एक घंटे के भीतर एक एकड़ के खेत की सिंचाई की जा सकती है और पानी की बर्बादी भी रोकी जा सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा नीलम बहन आपने, तो हमारे किसान भाई जरूर टपक सिंचाई जो विधि है, इसका इस्तेमाल करके अपने खेतों में फसलों की सिंचाई करें, ताकि आपका समय भी बचे, आपका पैसा भी बचे। तो नीलम बहन, ये तो बात रही टपक सिंचाई की, और अब बात करते हैं उन किसान बहन भाइयों की जो अगेती फूलगोभी की रोपाई करने के लिए अपने खेतों की तैयारी कर रहे हैं। तो इस समय पौध को उखाड़ते समय, फिर उसके बाद रोपाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कुछ सावधानियां उनको रखनी है, खेत की तैयारी कैसे करें, और रोपाई के बाद जल प्रबंधन है, खाद का प्रबंधन है, वो कैसे करें, तो इसी क्रम में अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक बातचीत, जिसका विषय है फूलगोभी की रोपाई एवं देखभाल। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर श्रवण सिंह, और इनसे बात कर रहे हैं शिव नंदन लाल। तो आइए सुनते हैं ये बात।

0: जीत किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि फूल गोभी की अगेती खेती के बारे में और इसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर श्रवण सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं शाकी विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: तो डॉक्टर साहब, फूल गोभी एक ऐसी फसल है कि जिसको पहले तो लोग ज़्यादातर सर्दियों में देखते थे, लेकिन अब ये बारहों महीने उगाई जाने लगी है और हम बाज़ार में देखते हैं कि हर समय आती रहती है। तो कहीं न कहीं इसकी बिजाई का, इसकी रुपाई का साल भर कार्यक्रम चलता रहता है, लेकिन जो आगे आने वाले समय में आपके जुलाई अगस्त सितंबर में आएगी, तो उसकी तैयारी हमारे किसान भाई कर रहे होंगे
1: जी।
0: तो इस समय जो अगोयती फूल गोभी है कि उसकी तैयारी के लिए क्या उसकी कुछ अलग किस्में होती हैं?
1: हाँ, देखिए किसान भाइयों, फूल गोभी की जैसे सर ने अभी बताया कि ये अलग अलग महीनों में उपलब्ध होती है और ये सितंबर अक्टूबर से लेकर के पूरा मार्च तक उपलब्ध होती है। इसके लिए अलग अलग किस्में हैं। एक किस्म कोई भी ऐसी नहीं है जो अभी से बोना शुरू करें और उसको आप दिसंबर तक उसको लगा लें, ऐसी कोई किस्म नहीं है। इसलिए अलग अलग समय के लिए अलग अलग किस्में हैं। फूल गोभी की बात करें तो अभी जो समय है अगेती फूलगोभी का, उसकी चार पांच महत्वपूर्ण किस्में हैं, जैसे कि पूसा मेघना जो अभी लगाई जा सकती है और कुछ किसानों ने तो उसकी एक महीने पहले भी बुआई कर चुके हैं, क्योंकि इसका जून से लेकर के जुलाई तक का महीना होता है, ये बुआई का समय होता है।
0: यानी डॉक्टर साहब, जिन्होंने इसकी पौध डाल दी है वो भी इसकी रोपाई कर सकते हैं?
1: हाँ, वो भी उसकी रोपाई कर सकते हैं।
0: और जिन्होंने अभी तक नहीं डाल पाए हैं वो भी, उनके डालने का अभी सही समय
1: अभी समय है। साथ ही साथ दूसरी जो किस्म है, जो पूसा मेघना है, इसकी पैदावार कम रहती है, लगभग 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर रहती है। फूल का आकार थोड़ा छोटा है, लगभग 250-300 ग्राम का रहता है। उसकी बजाय अच्छी किस्में जो उपलब्ध, नई किस्में जो आई हैं संस्थान की तरफ से, उसमें पूसा अश्विनी है जो अभी जुलाई के महीने में बहुत अच्छी मानी जाती है लगाने के लिए, और ये अक्टूबर के अंत में तैयार होती है, मध्य अक्टूबर के बाद में इसकी कटाई शुरू हो जाती है। तो इस किस्म को भी आप ले सकते हैं। इसका आकार है वो 500-600 ग्राम के आसपास आ जाता है। साथ ही एक किस्म और है पूसा कार्तिकी, तो इसकी भी पूसा अश्विनी की तरह ये भी जो अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा है उसमें कटाई के लिए तैयार होती है और ये नवंबर के प्रथम पखवाड़े में भी तैयार रहती है, तो ये एक लंबा अंतराल लेती है। इन दोनों किस्मों को अभी लगा सकते हैं। साथ ही साथ पूसा संस्थान ने नए जो संकर किस्में भी विकसित की हैं, उसमें पूसा फूलगोभी संकर 101 और पूसा फूलगोभी हाइब्रिड 102 हैं। इन किस्मों को भी किसान भाई ले सकते हैं। इनके पैदावार 20 टन प्रति हेक्टेयर से ज्यादा पैदावार इनकी होती है और ये यही अक्टूबर के महीने में और नवंबर के प्रथम पखवाड़े में ये कटने के लिए तैयार हो जाती हैं।
0: जैसे आपने पहले जो किस्में बताई, जैसे पूसा अश्विनी और दूसरी पूसा की किस्में, लेकिन आपने कुछ हाइब्रिड किस्मों का जिक्र किया, इसमें और उसमें अंतर क्या है?
1: हाँ, देखिए जैसे मैंने बताया था कि पूसा मेघना में फूल का आकार छोटा रहता है, ऐसी अश्विनी में थोड़ा ठीक है, 500 ग्राम के आसपास रहता है, और पूसा कार्तिकी में भी वो 550-600 ग्राम का। लेकिन जो संकर किस्में हैं उसमें एक तो आकार जो फूल का है वो ज्यादा है, तो ज्यादा आकार है तो ज्यादा वजन और ज्यादा पैदावार, क्योंकि जो ओपन पोलिनेटेड किस्में होती हैं, जो किस्में होती हैं, उनकी पैदावार लगभग 15-16 टन प्रति हेक्टेयर रहती है। वहीं संकर किस्में यदि किसान लगाते हैं तो उनकी पैदावार 20 टन से ज्यादा चली जाती है। ये एक हाइब्रिड जो वैरायटीज होती है उनकी ज्यादा पैदावार की क्षमता होती है। दूसरी, उनमें एक साथ परिपक्वता आती है, ऐसे नहीं कि खेत में कुछ पौधे अब कट रहे हैं, कुछ थोड़े दिन बाद में कट रहे हैं, कुछ और थोड़े दिन बाद में। ये समस्या ओपन पोलिनेटेड जो किस्में होती है उसमें ज्यादा रहती है और ये हाइब्रिड में कम रहती है। हाइब्रिड में एक साथ कटाई होती है, एक या दो कटाई में पूरा खेत खाली हो जाता है, जो किसान के लिए ज्यादा लाभकारी है। तो ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं, ज्यादा पैदावार और एक साथ कटाई के लिए तैयार होना।
0: तो डॉक्टर साहब, ये तो रही किस्मों की बात, लेकिन अगर कोई हमारे किसान भाई इसके पौधे डालना चाहते हैं तो पौधे डालते समय क्या सावधानी रखें?
1: क्योंकि फूलगोभी एक शीतकालीन फसल है और हमने ऐसी किस्मों का विकास किया जो गर्मी में भी आ सकती हैं, उसके साथ साथ ऐसी तकनीकी का भी ध्यान रखने की जरूरत है जो गर्मी में फूलगोभी को सही वातावरण दे। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया होती है वो नर्सरी उत्पादन होती है। किसान भाइयों, आजकल जो गर्मी है उसमें पौध तैयार करना एक बड़ा चैलेंज है। आप इसके लिए उठी हुई क्यारियां बनाएं जो लगभग 1-1.5 फीट चौड़ी हों और 3 से 5 मीटर लंबी आप ले सकते हैं, जो लगभग 1 फीट के आसपास उठी हुई क्यारी होनी चाहिए, क्योंकि जलमग्नता कभी कभी खेतों में कहीं हो जाती है तो उसमें ये उठी हुई क्यारी नर्सरी तक पानी नहीं जाने देती ऊपर पौधों तक,

0: और आपकी पोत बचाव होती है, उसके ऊपर आप अच्छे से भुरभुरी बना लें उनको हाथों से, और फिर उसके अंदर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि लाइन सोविंग करें, छिटक कर बीज बेड पर नहीं बोएं। उसके लिए सीधी सी बात ये कहते हैं हम किसान भाइयों को कि लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर लगभग 1-1.5 इंची जो गहरी नालियां बनाते हैं उसमें बीज डालें और बीज का उपचार अवश्य करें, चाहे आप बावेस्टीन से करें 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से, या जो भाई जैविक खेती करते हैं वो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर 1 किलो बीज के लिए इस उपचारित करके और उन नालियों में बीज की बुआई करें और उसके बाद उनको ढक दें मिट्टी से, या जो आप कोई भी ऐसे जो मिट्टी आपके पास रहती है बालू मिट्टी रहती है उसे ढक दें और उसके ऊपर सूखे घास जरूर रखें, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे पानी डालते रहें 2-3 दिन तक, आप देखिए 3रे या 4थे दिन तक जमाव आ जाता है, उस समय आप उस सूखी घास को हटाइए और बावेस्टीन का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एक छिड़काव जरूर कर दीजिए, जिनसे आपकी पौध में कोई बीमारी नहीं आएगी। और साथ ही साथ ये देखिए कि कहीं ज्यादा गर्मी तो नहीं है, ज्यादा गर्मी है तो जो ग्रीन कलर का जो हरे रंग का शेड नेट आता है उसको 50% या 75% से ढकने की कृपा करें, उससे क्या होगा कि जो तेज दिन की धूप होती है उसमें आपकी नर्सरी को नुकसान नहीं होता। साथ ही साथ ये भी देखिए आजकल मौसम बारिश का है तो जो किसान भाई अभी बुआई कर रहे हैं वो प्लास्टिक की सीट से नर्सरी को जब आपको लगे कि मौसम विभाग का अनुमान आया है कि बारिश होगी उसको ढकने की जरूर व्यवस्था करें, ताकि जो सीधा तेज पानी गिरता है नर्सरी पे उससे आपके पौधों को नुकसान न हो जाए। हाँ, यदि ऐसी कोई संभावना नहीं है तो प्लास्टिक से ढकने की कोई जरूरत नहीं है, और शेड नेट है वो आप रात के टाइम में हटा सकते हैं, लेकिन दिन में अवश्य शेड नेट रखें, इस 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखें। और जैसे आपकी पौध 15-10 दिन की हो जाती है एक गुड़ाई अवश्य करें, जो नालियां बनाई आपने जिसमें बुआई की है उसके बीच बीच में गुड़ाई करें और उसके बाद में हल्की हल्की सी मिट्टी बैठी करें, और जब रोपाई का समय आता है उसमें कई किसान भाई गलती करते हैं कि वो 30 दिन की पौध लगाते हैं उसकी हार्डनिंग नहीं करते हैं, वहां भी उस बात का ध्यान देने की जरूरत है। उसमें मैं किसान भाइयों से कहूंगा कि जैसे आप रोपाई के लगभग 35 दिन के आसपास की पौध लें और रोपाई से 7-8 दिन पहले आप 1-1 दिन के अंतराल पर पानी दें, तो उससे क्या होगा जो पौधों में थोड़ी सख्ती आती है और वो फिर आप शाम के समय रोपाई के लिए लेके जाएं, वो ज्यादा अच्छा आपके खेत में पौधे स्थापित होंगे।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो पौधशाला जो हमारे किसान भाई खेतों में या दूसरी जगह तैयार करते हैं वहाँ की बात कही, बहुत से ऐसे किसान भाई हैं कि इसको संरक्षित दशा में भी पौध उत्पादन करते हैं, तो वहां पे हार्डनिंग कैसे कर सकते हैं?
0: हाँ, देखिए कुछ किसान भाइयों के पास ऐसी संरक्षित संरचनाएं होती हैं जिसमें पौध तैयारी करते हैं, उनके लिए ये सलाह दी जाती है कि जैसे पानी का मैंने बताया कि जैसे 25 दिन की पौध के लगातार पानी उसको देते रहें सुबह शाम जब जरूरत पड़े, उसके बाद में आप एक समय दें और दूसरे समय नहीं दें, तो ये जो सूखापन महसूस करेगी पौध वो भी एक तरीके का हार्डनिंग का प्रोसेस होता है, उससे पौधों में जान रहती है। साथ ही साथ अंत के दिनों में थोड़ा सा शेड नेट भी कम कर दें, जो हरी छाया आपने ऊपर रखी है उसको कम कर दीजिए ताकि धूप पौधों पे गिरेगी और पानी का कम रहेगा, ये दोनों चीजें पौधे को सख्ती देती हैं, तो इसका जरूर विशेषतः ध्यान रखना चाहिए।
1: और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि जमीन लाइनों में उस तरीके से उसकी बिजाई करें, लेकिन जो संरक्षित वातावरण में करते हैं तो उस किस तरीके से पौध तैयार करते हैं?
0: इसमें ये रहता है कि ज्यादातर प्रो ट्रेज या प्लग ट्रेज का भी किसान भाई इस्तेमाल करते हैं। हाँ, छोटी छोटी जो प्लग ट्रेज होती हैं जिसमें 96 सेल 96 जो सेल्स होती हैं ऐसी भी होती हैं और किसी में ज्यादा भी रहती हैं, उसमें जो मीडिया रहता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा साथ में यदि आप कोकोपिट और वर्मी कम्पोस्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आप लेते हैं उससे भी आप पौध तैयार कर सकते हैं, उसमें 1 वर्मी कम्पोस्ट हो सकती है और 2 कोकोपिट, ये कॉम्बिनेशन आप बना करके उनमें सांचों में भर दें और उसमें एक एक बीज आप लगाएं और तो उससे भी पौध अच्छी तैयार होती है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं किसान भाई, बेड पे भी कर सकते हैं और जो प्लग ट्रेज होती हैं उनमें भी कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, ये कोकोपेट और वर्मिकुलाइट और परलाइट जो बताया इसकी मात्रा कितनी बराबर रखते हैं?
0: जो कोकोपेट, वर्मिकुलाइट और परलाइट ये तीनों को हम देखें तो इनमें 3:1:1 का रेशो रखना ठीक रहता है, लेकिन मैंने जो हमारे यहाँ देखा है कि फूल गोभी के लिए ये जो कॉम्बिनेशन चलता है वर्मिकुलाइट परलाइट और कोकोपीट वाला ये ज्यादा कारगर नहीं हो पाता जब हम खेत में इन पौधों को लगाते हैं, तो थोड़ी मेरे किसान भाइयों को सलाह ये है कि आप कोकोपीट और वर्मी कम्पोस्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव हमें देखने को मिला है, खासकर अगेती फूल गोभी में, और या जो किसान भाई मिट्टी में पौध तैयार करते हैं उनमें ज्यादा सख्ती मिलती है और वो ज्यादा अच्छे से पौध खेत में सक्सेस हो पाते हैं।
1: मिट्टी और गोबर की खाद मिला के प्रयोग करें?
0: हाँ, ये भी कारगर है क्योंकि उसमें जो जड़ें फूलगोभी को बहुत सॉफ्ट मीडिया रहता है उसकी जरूरत नहीं होती है, उसको थोड़ा सख्त मीडिया चाहिए ताकि उसकी पौध अच्छे से जमीन को पकड़े और जब वो खेत में जाएं तो वहां वो चल सकें, और जब उनको ज्यादा

0: मीडिया मिलता है हमारे यहाँ जो गर्मी में जो अगेती में है उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो किसान भाई मिट्टी में जो पौध तैयार करते हैं या मिट्टी का जो मीडिया है वो या कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मीडिया है, इन तीनों को ज्यादा ट्राई करने की कोशिश करें, जिससे आपके खेत में जब पौधे जाएं तो वो ज्यादा सक्सेस उनको मिले, ज्यादा जिंदा रहें खेत में।
1: तो डॉक्टर साहब, बहुत से किसान भाइयों की शिकायत रहती है कि हमारी जो पौधशाला है उसमें पौध गलन की समस्या हो जाती है।
0: देखिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर ये दो तीन चीजों में देखी गई है। जो किसान भाई छिटक कर पौध बोते हैं वहाँ कहीं कहीं ज्यादा गहरा बीज गिरता है तो वहाँ बिल्कुल पौधशाला खाली हो जाती है। दूसरी बात ये कि जहाँ डैम्पनेस ज्यादा है, नमी ज्यादा रहती है ऐसी नर्सरी में, जहाँ पानी भरा रहता है या ऐसी कोई समस्या है उसमें ये ज्यादा आती है, क्योंकि ये कवक से आती है, फंगस से। ये दो तीन फंगस अलग अलग होते हैं। जैसे एक हमने बताया था शुरू में चर्चा की कि बीज उपचार करना शुरुआत में जरूरी है, हमने बीज उपचार किया और उसके बाद में यदि लाइनों में सोविंग की और जैसे मैंने बताया था कि 10 से 12 दिन बाद में हल्की हल्की गुड़ाई करें, मिट्टी की गुड़ाई करें, उससे जो हवा निकलती है तो ये बीमारी कम हो जाती है। ये समस्या वहीं ज्यादा आती है जहां सघनता है नर्सरी में और साथ में पानी की अधिकता है। तो इसका उपचार ये है कि समय समय पे एक तो गुड़ाई करें, साथ ही साथ बावेस्टीन 2 ग्राम प्रति लीटर के घोल से जरूर आप अपनी जो नर्सरी है उसकी ड्रेंचिंग कर दें, वो 10वें दिन कर दें और लगभग 17-18 दिन बाद में फिर कर दें, तो उससे ये समस्या कम आ जाती है। और ये देखें कि पानी की ज्यादा आवक हो रही है, बरसात की संभावनाएं हैं, तो नर्सरी को ढक के रखिए, ज्यादा कीचड़ नहीं होने दीजिए, उससे ये समस्या बिल्कुल कम हो जाएगी।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि बरसात का सीजन है और बरसात के सीजन में अगर हमारे किसान भाई गोभी की रोपाई करते हैं तो क्या सावधानी रखें जिससे उनकी फसल खराब ना हो।
0: जो अगेती फूलगोभी होती है वो पूरी बरसात के सीजन में ही होती है, क्योंकि ये अभी हम जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर में इसकी कटाई करते हैं, तो पूरा बरसाती सीजन है। और फूलगोभी की एक खासियत है कि इसको जड़ में ज्यादा पानी पसंद नहीं है, ये जैसे ही पानी खड़ा होगा खेत में फूलगोभी मर जाती है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जल निकास की उत्तम व्यवस्था करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप हमेशा जो अगेती फूलगोभी है उसको मेड़ी पे लगाएं, और मेड़ी जैसे आप ट्रैक्टर से बनवा सकते हैं या आप मजदूर जो हाथों से बनवा सकते हैं,
1: फावड़े से
0: बना सकते हैं, और ये लगभग आधा फीट या एक फीट की ऊंची, जितनी ऊंची रहेगी उतनी अच्छी है। इसमें पानी भी कम लगता है क्योंकि आपने सिर्फ पंक्तियों में, लाइनों में पानी देना है, नालियों में पानी देना है, तो बाकी आधा खेत आपका वैसे बच जाता है। और साथ ही साथ इसमें पौधे की जड़ तक पानी नहीं जाता, तने तक उतना पानी नहीं जाता है, तो ये पौधे मरते नहीं है। ये विशेषता इस बात का ध्यान रखें कि मेड़ी पे लगाएं, बिना मेड़ी पे कहीं पर भी फूलगोभी अगेती फसल को ना लगाएं।
1: तो बरसात के सीजन में ज़्यादातर जो कीट होते हैं उनका भी प्रकोप देखा गया है, क्योंकि गर्मी भी होती है और कीटों के लिए दूसरी फसलें कम होती हैं और गोभी ऐसी है कि मुलायम होती है, तो इस पे ज्यादा कीट प्रभावित होते हैं, तो उसको किस तरीके से नियंत्रण करें?
0: देखिए, अगेती फूलगोभी है उसमें एक तंबाकू की सुंडी है वो ज्यादा उभर के आती है। ये किसान भाई जब अपने खेत में जाते हैं, जैसे थोड़ी फसल दिखने लग जाती है तो दूर से भी पत्ते को देख सकते हैं कि उसमें खुरचा हुआ सा दिखता है, जब उसके नीचे की तरफ देखते हैं तो छोटी छोटी इल्लियों के झुंड मिलते हैं। तो किसान भाइयों को एक सलाह दी जाती है कि ऐसे पत्तों को तोड़ करके किसी बाल्टी में डालें और गड्ढे में दबा दें। दूसरी सलाह ये दी जाती है कि जो तंबाकू की सुंडी है उसके ट्रैप्स आते हैं, फेरोमोन ट्रैप्स जो फास बोलते हैं, वो आप लगभग 10 से 15 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने खेत में लगाएं, उससे जो नर कीड़े हैं वो सारे उसमें उस पॉलिथीन की थैली में चले जाते हैं, तो आगे ज्यादा कीड़े नहीं बनेंगे। और यदि फिर भी ये समस्या का निस्तारण नहीं हो पाता किसी किसान भाई के है, तो उसके लिए जैसे इंडोक्सिकार्ब 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका छिड़काव कर सकते हैं, और उसी के साथ यदि वो उपलब्ध नहीं है तो स्पाइनोसाइड का 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल के साथ उसका छिड़काव कर सकते हैं। ये दोनों दवाई हैं वो फूल बनने की अवस्था से पहले पहले करें, क्योंकि फूल बनने के बाद में इनका प्रभाव करने से ये फूल के अंदर इसकी जो दवाई का है उसका असर कहीं कहीं जा सकता है। हम कहते हैं जो वेटिंग पीरियड है उसका विशिष्ट ध्यान रखना है, और उसके बाद स्प्रे से कोई ज्यादा फायदा भी नहीं होता है, क्योंकि पत्तों को जो नुकसान करते हैं उनको पत्तों को बचाना है ताकि फूल बड़ा बने, इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। इन दो कीड़े ज्यादा आते हैं। और यदि बीमारियों की बात करें तो अगेती फूलगोभी में एक काला सड़न आती है जिसमें पत्तों के ऊपर कोणी आकार के धब्बे बनते हैं, पीले बड़े बड़े धब्बे बनते हैं, और ये खासकर उन्हीं खेतों में ज्यादा आता है जहां पे समतल भूमि में लगाया है या पत्ते जमीन को टच करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेड़ी पे लगाते हैं तो पत्ते जमीन पे ज्यादा टच नहीं करते हैं, गीलेपन पे टच नहीं करते हैं, तो ये बीमारी कम आती है। दूसरी बात, जब हमने बताया कि बीज उपचार करेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान करें कि आपने यदि बीज उपचार किया है तो ये समस्या थोड़ी कम हो जाती है। साथ ही साथ यदि फिर भी ऐसी कोई समस्या आती है तो उन पत्तों को तोड़ करके अपने खेत से

0: किसी गड्ढे में दबा दीजिए, तो उससे ये ज्यादा बीमारी फैलती नहीं है। तो ये 2-3 उपाय आप लेते हैं तो ये बीमारी नहीं आएगी। इससे मैं एक बात तो कहना चाह रहा था कि जो फूल गोभी की आप खेत की तैयारी करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फूल गोभी का जो पौधा है वो तभी उठता है, तभी अच्छी पैदावार देता है जब उसको भोजन अच्छा मिलता है। उसके लिए आप ये कोशिश करें कि लगभग 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद जरूर खेत में डालें। यदि वो उपलब्ध नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट 3-5 टन प्रति हेक्टेयर डालने की कोशिश करें, और वो उपलब्ध नहीं है तो आप जैसे खेत में सड़ी हुई जो आप कंपोस्ट बनाते हो पत्तों से वो डालने की कोशिश कीजिए, और साथ ही साथ 120 किलो नत्रजन और लगभग 50-60 किलो पोटास और 50-60 किलो फॉस्फोरस जरूर अवश्य डालें। साथ ही साथ अगेती फूलगोभी में देखा गया है कि बोरोन की कमी कई खेतों में देखी गई है, इसके लिए 10 किलो बोरेक्स जब आप खेत में जो अंतिम जुताई करते हैं मेड़ी बनाने से पहले उस समय अवश्य मिला दें। इन 2-3 चीजों का विशेष ध्यान रखें ताकि आपकी फसल को अच्छी पैदावार तो हो ही साथ ही अच्छी गुणवत्ता भी बनी रहे।
1: जी डॉक्टर साहब बिल्कुल, अगर सही तरीके से अगर आप देखभाल करते हैं और बरसात के मौसम में खरपतवारों का भी विशेष आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर श्रवण सिंह जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान बहन भाई सुन रहे थे ये बातचीत फूल गोभी की रोपाई और देखभाल, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर श्रवण सिंह और इनसे बात कर रहे थे शिव नंदन लाल।
3: और अब किसान बहन भाइयों आपका करवाते हैं मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी, कलाकार हैं योगेंद्र निमचाना।

0: कलाकार थे योगेंद्र निमचाना।
1: और देखिए अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने किसान बहन भाइयों से कहना चाहेंगे कि आपको आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति, सभी किसान बहन भाइयों को राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं गजल।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग और पीतमपुरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। दिल्ली सरकार ने वित्त और लेखा विभाग में व्यापक फेरबदल किया। पश्चिम एशिया में स्थिति सामान्य होने के कारण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था समाप्त की। कड़कड़डूमा अदालत ने दिल्ली दंगा षड्यंत्र मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज की और सोनिया विहार जल संयंत्र तथा तैमूर नगर ड्रेन के पास नई पाइपलाइन के कार्य के कारण कल दिल्ली के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग और पीतमपुरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और कई सार्वजनिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने पार्कों के सौंदर्यीकरण, आधुनिक जल निकासी व्यवस्था, सीवरेज प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं, मुनक नहर और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। साथ ही अधिकारियों को सभी परियोजनाएं तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए।
3: श्रीमती गुप्ता ने पीतमपुरा के BDFD पार्क में सौंदर्यीकरण कार्यों और इसमें नई प्रकाश व्यवस्था के लिए 93 नए इलेक्ट्रिक पोल का उद्घाटन किया। इसके अलावा शालीमार बाग में जल भराव और सीवरेज समस्या के स्थायी समाधान के लिए आधुनिक जल निकास प्रणाली और अतिरिक्त सीवेज पंपिंग स्टेशन का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार नागरिकों को जल भराव और सीवरेज संबंधी समस्याओं से स्थायी राहत दिलाने के लिए आधुनिक तथा दीर्घकालिक संरचना विकसित कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने पीतमपुरा परिसर स्थित दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर संस्थान में उपलब्ध शैक्षणिक तथा तकनीकी सुविधाओं, प्रशिक्षण अवसंरचना और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार युवाओं को रोजगारोन्मुख और आधुनिक तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार निवेश कर रही है, जिससे उन्हें उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
2: दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता को मजबूत करने के उद्देश्य से वित्त और लेखा विभाग में व्यापक फेरबदल किया है। स्थानांतरण और पद स्थापन नीति के अंतर्गत 5 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत 52 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: तबादला किए गए अधिकारियों में 23 उप लेखा नियंत्रक और 29 वरिष्ठ लेखाधिकारी शामिल हैं। साथ ही 19 वरिष्ठ लेख अधिकारियों को पदोन्नत कर उप लेखा नियंत्रक बनाया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य पारदर्शी, जवाबदेह और परिणाम केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से वित्तीय प्रबंधन और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए पद स्थापन स्थलों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
2: पश्चिम एशिया में स्थिति सामान्य होने के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार और शनिवार को वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म करने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के अनुसार अब से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए अलग अलग समय को बदलकर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक कर दिया गया है। वहीं दिल्ली नगर निगम के लिए समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल

0: कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बहुत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक खिलौना उद्योग का मूल्य लगभग 120 अरब डॉलर है, जबकि भारत की हिस्सेदारी केवल 0.2 से 0.3% है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
1: मैं मानता हूं कि यहां जो सभी भारतीय स्वदेशी खिलौने बनाने वाली कंपनियां हैं, ये एक प्रकार से भारत के भविष्य को तैयार कर रही हैं और ये विदेश से आने वाले सब खिलौने बच्चों के लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं, ये इनोसेंट पेरेंट्स को कभी ध्यान ही नहीं आता। 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में इस बात का उजागर किया था कि भारत के पास इतना टैलेंट है कि हमें ग्लोबल टॉय हब बन सके, पूरी दुनिया में भारत के खिलौने जाने चाहिए।
0: आज से शुरू हुआ 4 दिवसीय एक्सपो इस महीने की 7 तारीख तक चलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और सरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कड़कड़डूमा न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज की। आरोपियों ने ट्रायल शुरू किए बिना लगातार जेल में रखने पर व्यक्तिगत आजादी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने के आधार पर जमानत मांगी थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों में एक स्थानीय और 2 अफ्रीकी निवासी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है। इसके अलावा अपराध में इस्तेमाल होने वाले 3 दोपहिया वाहन और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों अफ्रीकी नागरिक वैध पासपोर्ट और वीजा प्रस्तुत करने में असफल रहे। वहीं एक अन्य मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को सीलमपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 350 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है। दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने आज जय सिंह रोड स्थित NDCC कन्वेंशन सेंटर में सुविधा शिविर का आयोजन किया। शिविर में नागरिकों से सीधे संवाद के माध्यम से 60 जन शिकायतें प्राप्त हुई, जिन पर संबंधित विभागों ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान परिषद के 30 विभागों के 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लेकर एक ही स्थान पर शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की। दक्षिण दिल्ली में प्रधानमंत्री उदय योजना के अंतर्गत लोगों को उनके घरों के पास ही मालिकाना अधिकार से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष शिविरों की शुरुआत की गई है। दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी ने आज तेखंड गांव स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA बारात घर में पहले शिविर का उद्घाटन किया। ये 2 दिवसीय शिविर तेखंड एक्सटेंशन और तेखंड गांव के निवासियों के लिए आयोजित किया गया है। श्री बिधोड़ी ने बताया कि ऐसे शिविर दक्षिण दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी लगाए जाएंगे। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज नगर निगम के जन स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर जन स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निगम के नियमों का उल्लंघन करने वाले स्पा सेंटरों, होटलों और मोटलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही श्री वाही ने भारी मात्रा में कचरा उत्पादकों जैसे रेस्तरां, होटल और बैंक्वेट हॉल आदि को अपने परिसरों तथा आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छता निरीक्षकों के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व विकास किया है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले जहां देश के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता था, वहीं आज सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र से जुड़े दक्षिणी दिल्ली

0: के मुख्य पाइपलाइन पर काम के कारण कल दक्षिण और पूर्वी दिल्ली के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी।
1: जलापूर्ति प्रभावित होने के कारण कल सवेरे 10 बजे से करीब 8 घंटे तक इन इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित हो सकती है। जल बोर्ड के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में कैलाश नगर, गांधीनगर, पटपड़गंज, ओखला, जाकिर नगर, बटला हाउस, खान मार्केट, निजामुद्दीन, साउथ एक्सटेंशन, लाजपत नगर, सराय काले खां, बदरपुर, सरिता विहार, श्रीनिवासपुरी, छतरपुर और इसके आसपास के इलाके शामिल हैं। वहीं तैमूर नगर ड्रेन के पास नई जल पाइपलाइन को मौजूदा पाइपलाइन से जोड़ने के कार्य के कारण कल सवेरे 10 बजे से सोमवार शाम 4 बजे तक जलापूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पहले से पर्याप्त मात्रा में पानी संग्रह करने और आवश्यकता पड़ने पर जल बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क करने की सलाह दी है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: दिल्ली के सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्रनाथ सिंह ने द्वारका में सहकार से समृद्धि सहकारिता सप्ताह 2026 के अंतर्गत आज वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का अभियान नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। एक रिपोर्ट।
2: श्री रविन्द्र इंद्रनाथ सिंह ने बताया कि सहकारिता सप्ताह के दौरान द्वारका, नरेला, रोहिणी सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत ऐसे पौधों का रोपण किया जा रहा है जो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पक्षियों और जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही श्री सिंह ने विशेष रूप से अधिक फलदार पौधे लगाने पर बल देते हुए कहा कि फलदार वृक्ष न केवल हरित आवरण बढ़ाने में सहायक होते हैं बल्कि पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं के लिए प्राकृतिक भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत भी बनते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस वर्ष 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आज सभी सहकारी संस्थाओं और उनके सदस्यों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सहकार से समृद्धि के संकल्प के साथ सहकारिता जनभागीदारी, आत्मनिर्भरता और सामूहिक विकास का सशक्त आधार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के संकल्प पर बल देते हुए कहा है कि इसे अब जन भागीदारी से पूरा करने का समय आ गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने बताया कि ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर शुरू कर दिया गया है जहां नागरिक पौधारोपण के लिए स्लॉट बुक कर निःशुल्क पौधे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सामुदायिक पौधारोपण अभियान के लिए वृक्ष रथ बुला सकते हैं तथा दिल्ली ग्रीन वॉरियर के रूप में पंजीकरण भी करा सकते हैं।
3: दिल्ली में 70 लाख पेड़ पौधे लगाएंगे, साथ मिलके लगाएंगे। 7 तारीख को आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इनॉग्रेशन करेंगे इस पूरी मेगा प्लांटेशन ड्राइव का। मिलकर के पेड़ लगाएंगे और आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं दिल्ली ग्रीन वॉरियर के नाते भी, कि सरकार जब भी प्लांटेशन करेगी आपको इनवाइट कर सकती है। ईवी पॉलिसी आ चुकी है, कूड़े के पहाड़ लगातार कम हो रहे हैं। आइए मिलकर के दिल्ली को हरा भरा करें।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप के निर्माता और स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने महान आध्यात्मिक चिंतक और भारतीय संस्कृति के वैश्विक संवाहक स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में आयोजित 35वें आम महोत्सव 2026 का आज दूसरा दिन है। दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित ये 3 दिवसीय उत्सव दिल्ली हाट और जनकपुरी में कल तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
4: महोत्सव में आम की 400 से अधिक किस्में प्रदर्शित की गई हैं, जिनमें हुसनारा, केसर, मल्लिका, आम्रपाली, फजली सहित अनेक प्रसिद्ध किस्में शामिल हैं। महोत्सव में आम उत्पादकों, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और किसान संगठनों ने भी भाग लिया। साथ ही आगंतुकों के लिए आम खाने की प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों के लिए विशेष गतिविधियां भी आयोजित की गई हैं। वहीं इस महोत्सव में आम और आम से बने उत्पाद तथा पौधों की खरीदारी की सुविधा भी उपलब्ध है। ये उत्सव कल भी दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने के बावजूद लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग और पीतमपुरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया।

0: दिल्ली सरकार ने वित्त और लेखा विभाग में व्यापक फेरबदल किया। पश्चिम एशिया में स्थिति सामान्य होने के कारण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था समाप्त की। कड़कड़डूमा अदालत ने दिल्ली दंगा षड्यंत्र मामले में उमर खालिद और सरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज की और सोनिया विहार जल संयंत्र और तैमूर नगर ड्रेन के पास नई पाइपलाइन के कार्य के कारण कल दिल्ली के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है मुशायरा।
2: तमाम सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सामईन, शायरी कोई इकतसाबी चीज नहीं है, बल्कि शायरी किसी के मिजाज या तबीयत के मुताबिक इंसान के अंदर पैदा होती है, जो कुदरत की तरफ से एक अतिया है। कुदरत की अता करदा इस नेमत की अफादियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब सामईन या नाजरीन के रूबरू कोई शेर पढ़ा जाता है तो अक्सर उन पर एक खुशी या अफसुर्दगी की कैफियत तारी हो जाती है। कभी कभी एक जोश सा देखने को भी मिलता है। इसीलिए अक्सर मुशायरों में लोग किसी एक शेर को दोबारा सुनने की फरमाइश करते हैं। आइए सामईन सुनते हैं मुशायरा। निजामत कर रहे हैं जनाब खालिद अखलाक।
3: आज के इस मुशायरे में जो शोरा हजरात शिरकत फरमा रहे हैं उनके असमाई ग्रामी इस तरह हैं। जनाब शाकिर दहलवी साहब, मैं खालिद अखलाक, मोहतरमा इफ़त ज़रीन साहिबा और जनाब मुनीर हमदम साहब। इसकी शुरुआत हम करते हैं बहुत प्यारे और बहुत तये लहजे के शायर जनाब शाकिर दहलवी साहब के साथ, जिन्होंने हालिया वक्त में बहुत तेज़ी के साथ अपना मकाम बनाया है। जनाब शाकिर दहलवी।
4: बहुत शुक्रिया खालिद साहब। एक गज़ल से मैं शुरुआत करता हूँ।
3: अच्छा।
4: मतलब ये है कि यकीन कर कि तेरे गम शनास हम भी हैं।
5: यकीन कर के
4: तेरे गम शनास हम भी हैं, उदास देख के तुझको उदास हम भी हैं। उदास देख के तुझको उदास हम भी हैं, ये हम जो हंसते थे मजनू की दास्तां सुनकर। ये हम जो हंसते थे मजनू की दास्तां सुनकर, किसी के इश्क में अब देवदास हम भी हैं।
3: बहुत उम्दा।
5: अच्छा,
4: किसी के इश्क में अब देवदास हम भी हैं, निशानियां हैं यहाँ सब तेरी बताई हुई। निशानियां हैं यहाँ सब तेरी बताई हुई, जहाँ पे तू है वहीं आसपास हम भी हैं।
3: बहुत उम्दा।
4: जहाँ पे तू है वहीं आसपास।
5: बहुत अच्छा शेर।
4: बहुत शुक्रिया। जहाँ पे तू है वहीं आसपास हम भी हैं। और शेर देखिए कि किसी ने हमको दिखाया जब आईना तो खुला। किसी ने हमको दिखाया जब आईना तो खुला, लिबास होते हुए बेलिबास हम भी हैं।
3: बहुत उम्दा शेर है। वाह वाह वाह।
5: बहुत अच्छा शेर।
4: बहुत शुक्रिया। लिबास होते हुए बेलिबास हम भी हैं, बिछड़ के हमसे अकेले तुम ही उदास नहीं। बिछड़ के हमसे अकेले तुम ही उदास नहीं, तुम्हें गवाह के मुसलसल उदास हम भी हैं।
3: अच्छा है।
4: बहुत शुक्रिया सर। एक गज़ल और देखिए, ये तज़मीन है कि वाकिफ हैं दौरे हाल तेरी नाजुकी से हम।
5: वाकिफ हैं दौरे हाल
4: तेरी नाजुकी से हम, हर जुल्म सह रहे हैं बड़ी खामोशी से। हर जुल्म सह रहे हैं बड़ी खामोशी से हम।
3: बहुत उम्दा शाकिर साहब।
4: बचपन से ही अंधेरे की आदत सी है हमें।
3: बहुत
4: बचपन से ही अंधेरे की आदत सी है हमें, फिरते हैं मुंह छुपाए हुए रोशनी से हम।
3: क्या बात।
5: बहुत अच्छा। फिरते हैं मुंह छुपाए हुए रोशनी से।
4: बचपन से ही अंधेरे की आदत सी है हमें, फिरते हैं मुंह छुपाए हुए रोशनी से हम। और ये ग्रह का शेर है कि है इसलिए भी अपना फरिश्तों में एहतराम। है इसलिए भी अपना फरिश्तों में एहतराम, मिलते हैं आदमी की तरह आदमी से हम।
3: अच्छा है।
4: हम झांक लें जो अपने गरीबा में भूल कर। हम झांक लें जो अपने गरीबा में भूल कर, मुमकिन है मर ही जाएंगे।

0: शर्मिंदगी से हम,
1: क्या बात है,
2: वाह,
0: बहुत शुक्रिया। मुमकिन है मर ही जाएंगे शर्मिंदगी से हम, और मेहनत यकीन हौसला किस्मत भी है मगर,
1: क्या बात,
2: वाह,
0: मेहनत यकीन हौसला किस्मत भी है मगर, पहुंचे हैं इस मकाम पे दीवानगी से हम,
1: क्या बात,
0: बहुत शुक्रिया। मेहनत यकीन हौसला किस्मत भी है मगर,
1: वाह,
2: क्या बात है,
0: पहुंचे हैं इस मकाम पे दीवानगी से हम, बहुत शुक्रिया सर। और ये गज़ल अभी मिर्ज़ा गालिब की ज़मीन में कुछ अशार कहे थे, वो देखिएगा, मतलब यूँ हुआ कि जो शख्स कभी खुल के ना बोला मेरे आगे,
2: जो शख्स कभी खुल के ना बोला मेरे
0: जो शख्स कभी खुल के ना बोला मेरे आगे, रोया तो बहुत टूट के रोया मेरे आगे,
1: क्या बात, वाह,
0: रोया तो बहुत टूट के रोया मेरे आगे। और शेर देखिए कि खुद तो नहीं बदला वो बदलता है मगर रोज, खुद तो नहीं बदला वो बदलता है मगर रोज, बातें कभी लहजा कभी हुलिया मेरे आगे,
1: वाह वाह,
2: क्या बात है, वाह, बातें कभी लहजा कभी हुलिया मेरे,
0: खुद तो नहीं बदला वो बदलता है मगर रोज, बातें कभी लहजा कभी हुलिया मेरे आगे, बारात गमों की है मुसलसल मेरे पीछे,
1: क्या बात है,
2: क्या बात है,
0: बारात गमों की है मुसलसल मेरे पीछे, चलता है मसर्रत का जनाजा मेरे आगे,
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: चलता है मसर्रत का जनाजा मेरे आगे। और ये शेर देखिए बतौर खास कि मंसूब जो तुझसे है वो लम्हा नहीं दूंगा,
1: क्या बात,
2: वाह, मंसूब जो
0: मंसूब जो तुझसे है वो लम्हा नहीं दूंगा, रख दे कोई दुनिया का खजाना मेरे आगे,
1: क्या बात है, वाह,
0: बहुत शुक्रिया। मंसूब जो तुझसे है वो लम्हा नहीं दूंगा, रख दे कोई दुनिया का खजाना मेरे आगे। और एक शरीफ देखिए सर के, जिस दिन से समाया है मेरे दिल में तेरा नूर,
2: क्या बात है,
0: जिस दिन से समाया है मेरे दिल में तेरा नूर, अब नाक रगड़ता है उजाला मेरे आगे,
1: वाह वाह,
0: जिस दिन से समाया है मेरे दिल में तेरा नूर, अब नाक रगड़ता है उजाला मेरे आगे, ऐसा न हो आंखों से छलक जाए लहू फिर, ऐसा न हो आंखों से छलक जाए लहू फिर, अब नाम ना लो उसका खुदारा मेरे आगे। आखिर में गजल के चंद अशार देख लीजिए, छोटी बहन में गजल है कि वैसे तो हम अक्सर बातें करते हैं,
2: वैसे तो हम अक्सर बातें करते हैं
0: लेकिन सबसे छुपकर बातें करते हैं, लेकिन सबसे छुपकर बातें करते हैं, आंखों से सुननी होंगी इनकी बातें,
2: आंखों से सुननी होंगी इनकी बातें,
0: दीवाने चुप रहकर बातें करते हैं,
1: क्या बात है,
0: दीवाने चुप रहकर बातें करते हैं। और इसे देखिए कि जब वो मुझसे रूठ के बात नहीं करती,
1: क्या बात,
2: जब वो मुझसे रूठ के बात नहीं करती,
0: जब वो मुझसे रूठ के बात नहीं करती, उसके सारे जेवर बातें करते हैं,
1: क्या बात,
0: उसके सारे जेवर बातें करते हैं। और ये शेर भी देखिए कि काश हमारा भी एक घर हो छोटा सा,
2: काश हमारा भी एक घर हो छोटा सा,
0: वो देखो दो बेघर बातें करते हैं,
1: बहुत उम्दा है भाई,
2: बहुत अच्छा शेर,
0: काश हमारा भी एक घर हो छोटा सा, वो देखो दो बेघर बातें करते हैं, इंसानों की प्यास बुझाना मुश्किल है,
1: क्या बात,
0: इंसानों की प्यास बुझाना मुश्किल है, दरिया झीलें सागर बातें करते हैं,
1: क्या बात है भाई,
0: बहुत शुक्रिया। इंसानों की प्यास बुझाना मुश्किल है, दरिया झीलें सागर बातें करते हैं, खामोशी का शोर बहुत है कमरे में,
2: खामोशी का शोर बहुत है कमरे में,
0: आओ चलकर बाहर बातें करते हैं,
1: क्या बात,
0: खामोशी का शोर बहुत है कमरे में,
1: आओ,
0: खामोशी का शोर बहुत है कमरे में, आओ चलकर बाहर बातें करते हैं, बहुत शुक्रिया,
2: क्या बात।
1: समय अभी आप शागिर दहलवी साहब से उनका कलाम समाप्त कर रहे थे, अब शागिर दहलवी साहब के बाद मैं खालिद अखलाक आपके सामने हाजिर हूँ अपने कलाम के साथ। ताज़ा गज़ल का मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं, अर्ज करता हूँ कि तब जाके हल किया है एक मसले को मैंने,
2: तब जाके हल किया है एक मसले को मैंने,
1: तब जाके हल किया है एक मसले को मैंने, हर जाविये से देखा हर जाविये को मैंने,
2: हर जाविये को देखा हर जाविये से मैंने,
1: क्या बात, तब जाके हल किया है एक मसले को मैंने, ہر زاویے سے دیکھ

0: देखा हर जाविये को मैंने,
1: वाह
0: और शेर यूं है कि नजरें भटक रही हैं, मंजर बहक रहे हैं,
1: नजरे भटक रही हैं, नजरे
0: नजरें
1: भटक रही हैं, मंजर बहक रहे हैं।
0: नजरें भटक रही हैं, मंजर बहक रहे हैं, आंखों में भर लिया था एक मैकदे को मैंने,
1: वाह क्या
0: आंखों में भर लिया था
1: एक मैं कदे को
0: एक
1: मैंने,
0: मैकदे को मैंने, और
1: वाह
0: जाने सितमगरी की ये कौन सी है मंजिल,
1: क्या बात है,
0: जाने सितमगरी की ये
1: ये
0: कौन
1: कौन
0: सी
1: सी
0: है
1: है
0: मंजिल,
1: मंजिल,
0: संजीदा कर दिया है एक मसखरे को मैंने,
1: हाँ क्या कहने, वाह
0: और मुद्दत हुई है लेकिन हैरान कर रखा है, मुद्दत
1: रखा
0: हुई है लेकिन हैरान कर रखा है एक हादसे ने मुझको, उस हादसे को मैंने,
1: वाह
0: एक हादसे ने मुझको, उस हादसे को मैंने, बतौर खास शेर मैंने कैसा
1: जी।
0: कि अब यूं है दास्तां का मफहूम ढूंढता हूं,
1: अब यूं है दास्तां का मफहूम ढूंढता हूं,
0: अब यूं है दास्तां का मफहूम
1: मफहूम
0: ढूंढता
1: ढूंढता
0: हूं,
1: हूं,
0: मरकज समझ लिया था एक हाशिए को मैंने,
1: क्या बात
0: वाह
1: है क्या
0: अब
1: बात
0: यूं
1: है,
0: है दास्तां का मफहूम ढूंढता हूं,
1: वाह
0: मरकज समझ लिया था एक हाशिए
1: हाशिए,
0: को मैंने,
1: वाह
0: ए काश आज अपना मैं अक्स देख पाऊं, और मकता भी आप मुलाहिजा फरमाए, अर्ज करता
1: निशा
0: हूं
1: जी
0: कि पहले तो रास्ते को तय कर लिया है खालिद,
1: पहले तो
0: पहले तो
1: रास्ते को
0: रास्ते
1: तय कर
0: कर
1: लिया
0: लिया
1: है
0: है, पहले
1: खालिद,
0: तो रास्ते को तय कर लिया है खालिद, देखा है पीछे मुड़ के फिर फासले को मैंने,
1: अच्छा है
0: वाह
1: वाह बहुत अच्छा
0: देखा
1: है,
0: है पीछे मुड़ के फिर
1: फिर फासले
0: फासले
1: को
0: को
1: मैंने,
0: मैंने, बहुत इनायत, एक
1: वाह
0: और
1: वाह वाह
0: ताजा गजल ही है ये,
1: जी अच्छा
0: इसका
1: जी
0: मतलब मुलाहिजा फरमाइए, अर्ज करता हूं कि अपने चेहरे को कभी यूं भी नुमाया रखा,
1: अपने चेहरे को कभी यूं भी नुमाया
0: यूं भी अपने
1: नुमाया
0: चेहरे
1: रखा,
0: को कभी यूं भी
1: भी
0: नुमाया
1: नुमाया रखा,
0: रखा,
1: वाह
0: आईना तोड़ दिया अक्स परेशान रखा,
1: क्या बात है, वाह वाह
0: अपने
1: अच्छा शेर है
0: अपने
1: अच्छा शेर है, आई
0: चेहरे को कभी यूं भी नुमाया
1: क्या
0: रखा,
1: खूबसूरत
0: आईना
1: मतलब
0: तोड़
1: है,
0: दिया,
1: वाह परेशान
0: आईना तोड़ दिया अक्स परेशान
1: रखा,
0: रखा,
1: वाह
0: और बतौर खास ये शेर देखें
1: अच्छा
0: कि पारसाई का नया दौर नया तर्ज अमल,
1: पारसाई का नया दौर नया
0: पारसाई
1: तर्ज
0: का नया
1: अमल,
0: दौर नया तर्ज अमल, का नया दौर नया तर्ज अमल, आंख पर्दे में रखी जहन को उरियां रखा,
1: अच्छा है
0: आंख
1: वाह
0: पर्दे में रखी
1: जहन को उरिया
0: जहन
1: रख,
0: को उरियां रखा,
1: वाह वाह वाह
0: और ख्वाब ताबीर से इस तरह बचाया हमने, ख्वाब ताबीर से इस तरह बचाया
1: बचाया
0: हमने,
1: हमने,
0: जैसे एक जिस्म को साए से गुरेजां रखा,
1: वाह
0: जैसे एक जिस्म
1: को
0: को
1: साए से
0: साए से
1: गुरेजा
0: गुरेजां
1: गुरेजा
0: रखा,
1: रखा,
0: और ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमाए, अर्ज करता हूं कि काश उनवान बदल देने से बदले तासीर,
1: काश उनवान बदल देने से
0: काश
1: बदले तासीर,
0: उनवान बदल देने से
1: से
0: बदले
1: बदले तासीर,
0: तासीर, नाम मुश्किल का यही सोच के आसान रखा,
1: वाह
0: काश उनवान बदल देने से बदले तासीर, नाम मुश्किल का यही
1: सोच
0: सोच के
1: के आसान
0: आसान रखा,
1: रखा,
0: और
1: वाह
0: उसने एक बार पुकारा था मुझे नाम के साथ,
1: क्या बात है,
0: सर उसने एक बार पुकारा था मुझे
1: मुझे
0: नाम
1: नाम
0: के
1: के साथ,
0: साथ, मुद्दतों खुद को इसी बात पे नाजा रखा,
1: हाँ हाँ वाह
0: मुद्दतों
1: वाह
0: खुद को इसी बात पे नाजा
1: नाजा रखा,
0: रखा, और आज हर शख्स खुदा होने लगा है खालिद, आज हर शख्स खुदा होने लगा
1: लगा
0: है
1: है
0: खालिद,
1: खालिद,
0: हमने हर हाल में खुद को मगर इंसान रखा,
1: वाह वाह वाह
0: हमने हर
1: क्या
0: हाल में खुद
1: कहने,
0: को मगर इंसान रखा,
1: वाह वाह जी
0: एक और गजल से कुछ शेर
1: जी
0: मुलाहिज़ा और करें,
1: इरशाद इरशाद,
0: अर्ज करता हूं कि गम भी शर्मिंदगी में डूब गए,
1: गम भी शर्मिंदगी में डूब
0: गम
1: गए,
0: भी शर्मिंदगी में डूब गए जब भी हम मैकशी में डूब गए,
1: जब
0: गम भी शर्मिंदगी में डूब गए
1: भी हम मैकशी में
0: जब भी
1: डूब
0: हम
1: गए,
0: मैकशी में डूब गए, मौत ने ये कहा करीब आकर आप तो जिंदगी में डूब गए,
1: वाह आप
0: मौत ने ये कहा करीब आकर
1: तो
0: आप
1: जिंदगी
0: तो
1: में डूब गए,
0: जिंदगी में डूब गए, ना खुदा कितने ही सफीने तो तेरी मौजूदगी में डूब गए,
1: हाँ
0: ना खुदा कितने
1: कितने
0: ही
1: तो
0: सफीने
1: सफीने तो
0: तो
1: तेरी
0: तेरी
1: मौजूदगी
0: मौजूदगी
1: में
0: में डूब
1: डूब गए,
0: गए,
1: वाह वाह
0: तेरी
1: अच्छा है, वाह
0: मौजूदगी में डूब गए, और चांद का दाग देखते कैसे हम तो बस चांदनी में डूब गए, चांद का दाग देखते कैसे हम तो बस चांदनी में डूब गए, मैंने

0: देखे हैं ऐसे मंजर भी, क्या देखें कि मैंने
1: मैंने
0: देखे
1: देखे हैं
0: हैं
1: ऐसे
0: ऐसे
1: मंजर
0: मंजर, ऐसे
1: भी।
0: मंजर भी, खुद शनावर नदी में डूब गए,
1: वाह अच्छा
0: खुद शनावर नदी में डूब गए।
1: वाह
0: शागर भाई अपने सौ गम भुला के खालिद,
2: हाँ
0: अपने सौ गम भुला के खालिद,
2: वाह
0: हम तेरी ये खुशी में डूब गए,
1: वाह
2: वाह वाह
0: हम
2: बहुत
0: तेरी
2: अच्छे,
0: एक खुशी में डूब गए।
1: हम तेरी ये खुशी में डूब गए।
3: खुशी
1: वाह
3: का जवाब नहीं है।
2: वाह
0: और समाइन, अब मैं एक ऐसी शायरा को दावा देने जा रहा हूँ जिनकी सरपरस्ती हम जैसे नौजवान शायरों को हासिल है। गौना मश्क शायरा मोहतरमा इफ़त ज़रीन साहिबा आपके हुजूर।
3: बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों की खिदमत में एक नज़्म पेश करूं।
1: जी
3: समाअत फरमाए। नज़्म का उन्वान है फ़नकारी ज़िंदगी।
1: वाह।
3: मैं एक फ़नकारी ज़िंदगी हूँ, मेरे ख्यालों में कितनी ख्वाबीदा आरज़ूएं मचल रही हैं। मैं एक फ़नकारी ज़िंदगी हूँ, मेरे ख्यालों में कितनी ख्वाबीदा आरज़ूएं मचल रही हैं। मैं सोचती हूँ इन्हें जगाकर हकीकतों का नगर बसा दूँ। मैं सोचती हूँ इन्हें बचाकर हकीकतों का नगर बसा दूँ। तुलुए खुर्शीदे आरजू से शबे अलम का फसू मिटा दूँ। तुलुए खुर्शीदे आरजू से शबे अलम का फसू मिटा दूँ। मैं सोचती हूँ अगर इसारे तजस्सुसो तशनगी से बाहर जरा भी मैंने कदम निकाला। मैं सोचती हूँ अगर हिसारे तजस्सुसो तशनगी से बाहर जरा भी मैंने कदम निकाला, कोई धमाका जरूर होगा, कोई धमाका जरूर होगा जो मेरे सपनों के कसरे जर्री को दफतन सरनगु बनाकर मुझे रुलाकर गमे जहाँ के मुहीब गारों में फेंक देगा। गमे जहाँ के मुहीब गारों में फेंक देगा। मैं सोचती हूँ कि मुझसे फनकारे जिंदगी पर किसी ने संगे मलाल फेंका तो टूट कर चूर चूर होगा वो शीशे रब्ते शौक जिसमें जमाले खुर्शीद देखती हूँ, सहर की तमहीद देखती हूँ। यही तसलसुल तो मेरा गम है, यही तसलसुल तो मेरा गम है, यही शौक तशनगी है, यही तसलसुल तो मेरा गम है, यही मेरा शौक तशनगी है। मैं सोचती हूँ अगर कोई मेरे ताबा खुलूस दिल से यकीन दिला दे। मैं सोचती हूँ अगर कोई मेरे ताबा खुलूस दिल से यकीन दिला दे। कभी न तोड़ेगा नूरे पैहम के सिलसिलों को, कभी न तोड़ेगा नूरे पैहम के सिलसिलों को। तो मैं भी ठुकरा के जुल्मतों को, हिकारतों को, सऊबतों को। तो मैं भी ठुकरा के जुल्मतों को, हिकारतों को, सऊबतों को। समेट कर अपने जिस्म जा की तमाम पाकी जतर अमानत, उभरते सूरज को सौंप दूंगी।
1: क्या
2: क्या
3: शुक्रिया।
1: वाह।
3: अब एक गजल तरन्नुम से समात फरमा लीजिए।
1: जी जी जी
3: समाते मतला पेश खिदमत है।

0: एहसास की चादर निकले,
1: क्या बात,
0: जिनको इंसान समझते थे वो पत्थर,
2: वाह क्या कहने, वाह,
0: जिनको इन समझते थे वो पत्थर निकले। और शेर समाज फरमाए,
2: जी अच्छा,

0: क्या बात है,
1: तो कई
0: कई
1: घर निकले और
0: घर
1: मकसद मत फरमा ले,
0: जी। अच्छा,
1: उनके

0: हाँ
1: वाह वाह वाह।
0: उनके चेहरे भी नजर आए हैं,
1: धुंधले जरी,
0: धुंधले जरी
1: क्या बात।
0: आईना खानों से जो लोग संवर कर
1: वाह
0: निकले।
1: वाह वाह वाह।

0: सब खाया है।
1: क्या बात है, वाह
0: वाह। और गजल का मतलब समझ फरमाए, आसमानों के पार है कोई,
1: आसमानों के पार है कोई,
0: आसमानों के पार है कोई, यानी परवरदिगार है कोई।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: आसमानों के पार है कोई
1: यानी परवरदिगार है कोई,
0: यानी परवरदिगार है कोई। और शेर समाज फरमाए, वो तुम्हें क्यों नजर नहीं आता,
2: वो तुम्हें क्यों नजर नहीं आता,
0: वो तुम्हें क्यों नजर नहीं आता, मेरे सर पर सवार है कोई।
1: वाह वाह,
0: वो तुम्हें क्यों नजर नहीं आता,
2: मेरे सर पर सवार है कोई,
0: मेरे सर पर सवार है कोई। और शेर समाज फरमाए, एक चादर मिली है यादों की,
1: एक चादर मिली है यादों
0: की, एक चादर मिली है यादों की, दिल में देखें मजार है कोई।
1: वाह वाह,
0: एक चादर मिली है यादों की,
1: क्या बात है सर, वाह वाह,
0: दिल में देखें मजार है कोई। और ढूंढता हूँ कहाँ कहाँ उसको,
2: ढूंढता हूँ कहाँ कहाँ,
0: ढूंढता हूँ कहाँ कहाँ उसको, मेरे अंदर फरार है कोई।
1: क्या बात,
0: मेरे अंदर फरार है कोई। और देखें कि मीरो गालिब की बात करते हो,
2: मीरो गालिब की बात,
0: मीरो गालिब की बात करते हो, शायरी है के बार है कोई।
1: क्या बात है, वाह वाह,
0: शायरी है
1: के
0: बार है कोई, आसमानों के पार है कोई, यानी परवरदिगार है।
1: बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा कलाम। और
0: भाई गजल के और कुछ सुनाते
1: हैं।
0: देखिये गजल के इस्तियारे हो गए हैं,
1: गजल के इस्तियारे हो गए,
2: गजल के इस्तियारे हो गए हैं,
0: बहुत रोशन सितारे हो गए।
1: वाह वाह वाह, बहुत उम्दा है सर, वाह,
0: बहुत रोशन सितारे हो गए हैं, इधर तुम हो उधर दुनिया है सारी,
1: इधर तुम हो उधर दुनिया है सारी,
0: इधर तुम हो उधर दुनिया है सारी, समंदर दो किनारे हो गए।
1: क्या बात है, क्या बात,
0: समंदर दो किनारे हो गए हैं। और शेर समाज फरमाए, चरागों की यहाँ बाजी लगी है,
1: चरागों की यहाँ बाजी लगी,
0: चरागों की यहाँ बाजी लगी है, वहाँ जुगनू भी तारे हो गए। वहाँ जुगनू भी तारे हो गए,
1: क्या कमाल के अशआर है सर।
0: और शेर देखें कि मोहब्बत का यही दस्तूर है तो,
1: मोहब्बत का
0: यही दस्तूर है तो, चलो हम भी तुम्हारे हो गए हैं।
1: क्या बात है, क्या,
0: चलो हम भी तुम्हारे हो गए हैं। और चलो कुछ देर उसको याद कर लें,
2: चलो कुछ देर उसको याद कर लें,
0: गुनाह वैसे तो सारे हो गए।
1: क्या बात है,
0: गुनाह वैसे तो सारे हो गए। लेकिन भाई के आंखों से कई सूरज वो रोज उगाता है, वो रोज उगाता है, एक शख्स उजालों की तस्वीर बनाता है।
1: क्या बात है, क्या,
0: आंखों से कई सूरज वो रोज उगाता है, एक शख्स उजालों की तस्वीर बनाता है। और इन झील से आंखों में एक और समंदर है, इन झील से आंखों में एक और समंदर है, ठहरी हुई कश्ती को जो पार लगाता है।
1: क्या बात,
0: ठहरी हुई कश्ती को
1: जो पार लगाता है।
0: मुझे समाज फरमाया कि खुलता है कहाँ सब पर असरार मोहब्बत का।
1: क्या बात,
0: खुलता है कहाँ सब पर असरार मोहब्बत का, आईना कहाँ सबको वो रोज दिखाता है।
1: क्या बात है, वाह वाह,
0: आईना कहाँ सबको
1: वो
0: रोज दिखाता है। और देखें कि कोई भी नहीं होता,
1: कोई भी नहीं होता
0: रातों की स्याही में, कोई भी नहीं होता
3: रातों की स्याही
0: में, इन भीगे चरागों को फिर कौन जलाता है।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह,
0: इन भीगे चरागों को
2: फिर कौन जलाता है।
0: आंखों से कई सूरज वो रोज उगाता है, एक शख्स उजालों की तस्वीर बनाता है।
1: क्या बात है,
3: वाह वाह।
1: सामईन, अभी आप समाप्त कर रहे थे जनाबे मुनीर हमदम साहब से उनकी बेहतरीन शायरी। आज के आकाशवाणी के इस मुशायरा प्रोग्राम में जो शोरा हज़रात जिन्होंने शिरकत की, उनके अस्माए ग्रामी एक बार फिर मैं आप तक पहुंचा दूं। जनाब शाकिर दहलवी साहब, मैं खालिद अखलाक, मोहतरमा इफ़त ज़र्री साहिबा और जनाब मुनीर हमदम साहब ने अपने कलाम पेश किया। इसी के साथ एक मुशायरा इख्तिताम पज़ीर होता है।
4: सामीन अभी आप

0: مشاعرے سے لطف لے رہے تھے، نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے، جناب خالد اخلاق۔ اب اپنے میزبان محمد علی کمال کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे मुशायरा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज। रात्रि के 8:30 होने को हैं। समय हो गया है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत कार्यक्रम में अपने सभी श्रोताओं का मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे आवाज दी है अभिजीत ने।

0: अभिजीत की आवाज में अभी आपने बहुत ही खूबसूरत गीत सुना। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम और अब सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म आ अब लौट चले से, और इस गीत को आवाज दी है कुमार सानू, सोनू निगम, अभिजीत, शब्बीर कुमार और साथियों ने। तो लीजिए सुनते हैं अगला गीत।
1: ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया

बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना फिल्म आ अब लौट चले से, और इस गीत को आवाज दी थी कुमार सानू, सोनू निगम, अभिजीत, शब्बीर कुमार और साथियों ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांसद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटर

0: और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण दो की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रूपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज

ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट का इफ्तिताह किया ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मोहतात बंदोबस्त के जरिए मगरबी एशिया बहरान पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से लेकर 13 अगस्त तक होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के दिफाई सामान की बरामदात 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सतह पर पहुंच गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हुई है, कई दरिया तोगयानी पर हैं। और मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर में भारत ने दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड के सामने 191 रन का निशाना रखा है। वैभव सूर्यवंशी बैन-उल-अक़वामी क्रिकेट में कदम रखने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के जदीद तर्ज के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट ओसेट प्लांट का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के साथ साथ आलमी टेक कंपनियों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वहां बड़ी तादाद में मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि यह कदम भारत के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इनकलाब में अगला मरहला है, जिसकी बदौलत भारत को मोबाइल फोन तैयार करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क का रुतबा पहले ही हासिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सानंद में सीजी सेमी ओसेट मरकज से न सिर्फ अंदरूनी मुल्क चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे आलमी सतह पर सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन निज़ाम में भारत की पोजीशन में इजाफा होगा और तकनीकी खुद किफालत को भी फरोग हासिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस एतमाद का इजहार किया कि इस तारीखी प्रोजेक्ट से सानंद सेमी कंडक्टर के एक दरख्शा आलमी मरकज के तौर पर उभरेगा। जनाब मोदी ने इसे विकसित भारत का नक्शराह और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम करार दिया। मस्कूरा प्लांट में मुतनव्वा अफरादी कुव्वत की सताइश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कॉम्प्लेक्स को एक मिनी इंडिया से ताबीर किया, जहां मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर्स और पेशावर अफराद आलमी डिजिटल मईशत को तकवीत पहुंचाने की खातिर एक छत के नीचे काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि इस उभरते हुए इको निज़ाम से मसनूई जहानत और नए सिलसिले की टेक्नोलॉजियों के शोबे में भारत के नौजवानों को मजीद आगे बढ़ने के वसी मौके हासिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सानंद का प्लांट सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार कर सकेगा। जनाब मोदी ने पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तैयार करने का मुस्तकबिल का बड़ा निशाना तय करने पर सीजी सेमी को मुबारकबाद दी।
1: सीजी सेमी का ये प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते 2.25 सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। आज हम इसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी।
0: इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि मुल्क में इस साल के आखिर तक 5 सेमीकंडक्टर प्लांट्स काम करने लगेंगे। मस्कूरा शोबे की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सानंद मरकज में भूमि पूजन की तकरीब से लेकर कमर्शियल पैदावार का सिलसिला शुरू होने तक सिर्फ 27 महीने लगे।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन

0: चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: जनाब अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि सानंद प्लांट में तैयार होने वाले चिप्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ सनअती शोबों में किया जाएगा और उन्हें अमेरिका, जापान और यूरोप समेत आलमी मार्केट्स में भी बरामद किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में 1,05,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिससे रियासत में बुनियादी ढांचे, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और रोजगार के मौके पैदा करने को बड़ी तकवीयत मिलेगी। दिनभर के अपने दौरे में वजीर आजम ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। इसके बाद जनाब मोदी ने बालोतरा जिले में पचपदरा के मकाम पर मुल्क का सबसे जदीद तर्ज का ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स मुल्क के नाम वक्फ किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या मादनियात के लिए एक ऐसा सनअती प्रोसेसिंग प्लांट है जिसे साफ सुथरी कच्ची जमीन पर नए सिरे से बनाया जाता है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मगरबी एशिया की महाजराई से 21वीं सदी का तवानाई का सबसे बड़ा बहरान पैदा हो गया था, लेकिन भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसायल के मुहतात बंदोबस्त के जरिए इस चैलेंज पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: जनाब मोदी ने कहा कि बुहरान के दौरान दुनिया के मुल्कों के साथ भारत के दोस्ताना ताल्लुकात का अहम रोल रहा। वजीर आजम ने कहा कि सरकार ने आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद खाना पकाने की गैस की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होने दिया।
2: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया, औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
1: जनाब मोदी ने इस मौके पर तकरीबन 54,000 नौजवानों को तकर्रुरनामे भी सौंपे, जिन्हें राजस्थान सरकार के मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किया गया है।

0: एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
1: जनाब मोदी ने इस मौके पर तकरीबन 54,000 नौजवानों को तकरीरनामे भी सौंपे, जिन्हें राजस्थान सरकार के मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख को शुरू होगा और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास तलब करने की सरकार की तजवीज को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल मामलात पर बामकसद बहस मुबासे और फैसलों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वज़ीर-ए-दिफा राजनाथ सिंह ने आज मैन्युफैक्चर

0: 686 करोड़ रुपए से जबरदस्त इजाफा तकरीबन 57 गुना है और इससे मेक इन इंडिया दिफाई प्लेटफॉर्म में बढ़ते आलमी एतमाद की अक्कासी होती है।
1: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है और मैं आपको

0: आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। इस सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के पहले 5 दिनों में 1,45,00,000 वोटरों में से 32% से ज्यादा लोगों को गणन प्रपत्र बांटे गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भरे गए प्रपत्रों में से सिर्फ 1% से ज्यादा को ही डिजिटाइज किया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार शनिवार तक कुल 46,54,989 गणना प्रपत्र बांटे गए और 1,46,438 प्रपत्र डिजिटाइज किए गए। SIR प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 191 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए थे। जैकब बैथल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: Bharat ne har star par sahi faisle liye, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: The monsoon session of the parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. India's long-standing contribution to global peacekeeping mission received a significant recognition as 650

ये आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 1:10 और पूरे 10 सेकेंड हो चुके हैं। ये वक्त होता है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीत सुनहरे का, जिसमें आप सुनते हैं गोल्डन एरा के वो गाने जिनकी छाप आज भी हमारे दिलों पर ताजा है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए AIR लाइव न्यूज 24/7।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुनहरे और ये है आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म CID का ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें आपने सुना गोल्डन एरा के वो गाने जो हमारी, आपकी और हम सबकी पसंद है। रात के 2 बजने को हैं, अब समाचार होंगे। पहले हिंदी में, उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग की कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के उपयोग को रोकना है। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के पहले 5 दिनों में 1,45,00,000 मतदाताओं में से 32% से ज्यादा लोगों को गणना पत्र बांटे गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भरे गए प्रपत्रों में से सिर्फ 1% से ज्यादा को ही डिजिटाइज किया गया है। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 191 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Mehwash Fatima. Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat yesterday. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy, and prudent management of national resources.
1: Bharat ne har star par sahi faisle liye, sankat ka samay rehte satik aakalan kiya, prabhavi ranniti banayi, Bharat ke sansadhanon ka santulit prayog kiya, Bharat ki diplomatic power ka sakaratmak istemal kiya, aur tab jaakar Bharat sankat se ubar paya hai.
2: The monsoon session of the parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. External Affairs Minister Dr. J.S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. Defence Minister Rajnath Singh highlighted India's significant progress in manufacturing and technology. The minister said countries' defence exports have reached a record of over 38,000 crore rupees. Addressing an event organised by a private media organisation in New Delhi, Mr. Singh said the sharp rise from 686 crore rupees in the financial year 2013-14 reflects an almost 57-fold increase and underlines growing global confidence in Make in India defence platforms. India's long-standing contribution to global peacekeeping mission received a significant recognition

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 2:10 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं। श्रोताओं, ये वक्त होता है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीत बहार का। आइए सुनते हैं गीत बहार कार्यक्रम। नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ। लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम की आवाज में फिल्म हम आपके हैं कौन का ये गीत। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए AIR लाइव न्यूज 24/7।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर। रात के 3 बजने को है, ये वक्त होता है समाचारों का। पहले आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम

0: जागरूकता पैदा करना क्षमता निर्माण उपचार पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के पहले 5 दिनों में 1,45,00,000 मतदाताओं में से 32% से ज्यादा लोगों को गणना प्रपत्र बांटे गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भरे गए प्रपत्रों में से सिर्फ 1% से ज्यादा को ही डिजिटाइज किया गया है। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 191 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात हरियाणा पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने मध्य प्रदेश तटीय कर्नाटक और विदर्भ में आज मूसलाधार वर्षा का भी अनुमान लगाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat yesterday. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: The monsoon session of the parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. Defence Minister Rajnath Singh highlighted India's significant progress in manufacturing and technology. The minister said, country's defence exports have reached a record of over 38,000 crore rupees. Addressing an event organised by a private media organisation in New Delhi, Mr. Singh said, the sharp rise from 686 crore rupees in the financial year 2013-14 reflects an almost 57-fold increase and underlines growing global confidence in Make in India defence platforms. India's long-standing contribution to global peacekeeping mission received a significant recognition as 651 Indian Army personnel serving under the United Nations have been awarded the prestigious United Nations Medal during a ceremonial medal parade held at the Permanent Operating Base Sake in the Democratic Republic of the Congo. The medals were presented during a ceremony honoring the Indian contingent for its professionalism, operational excellence and dedicated service under the United Nations peacekeeping mission. In the Maharashtra Teacher Eligibility Test TET paper leak case, police has arrested 3 more accused from a printing press in Agra, Uttar Pradesh, taking the total number of

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 3:10 मैं हूं आपके साथ कीर्ति। कार्यक्रम गीत व गजलों का लेकर हाजिर हूं और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने वाले हैं गजलें और आप सुनेंगे जगजीत सिंह की गाई हुई गजलें। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पहली गजल के साथ।

सुनवा रहे हैं आपको जगजीत सिंह की आवाज में ये बेहद खूबसूरत गजलें। आइए अगली गजल सुनते हैं, होठों से छू लो तुम।

ये गजल हमें बताती है कि जो बीता हुआ वक्त है वो वापस नहीं आ सकता। खैर, आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत गजलें, और अब कार्यक्रम को लेकर चलते हैं समाप्ति की ओर और सुनवाते हैं

0: इसी गजल के साथ गजलों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। फिलहाल सुबह के 4 बज चुके हैं, अब हमारा सुनिए अगले कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

प्रस्तुत है भगवान मुर्गन को समर्पित कुछ भक्ति रचनाएं। स्वर TM सौंदरराजन का है। अर्चना कार्यक्रम में पहले प्रस्तुत है NS चिदम्बरम की रचना

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
2: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

सुबह के 4:20 होने को हैं। अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म में पोनकुंडम रामाचंद्रन का गायन राग मध्यमावती में।

अभी आपने सुना कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत पोनकुन्नम रामचंद्रन का गायन राग मध्यमावती में।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई 2024। सुबह के 4:53 हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आइए आपको आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बता दें। कुछ ही देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें। 5:20 पर देशभक्ति संगीत आप सुन सकेंगे। स्वरंजनी का कार्यक्रम होगा 5:30 पर। सुबह के 6:10 पर आप आनंद लेंगे कार्यक्रम वंदना का।

6:40 पर चिंतन होगा, 6:45 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम रामचरितमानस, 7:10 पर संगीतिका रहेगा, साहित्यिकी कार्यक्रम होगा सुबह 8:45 पर, हमारे अतिथि का समय रहेगा सुबह 9:15 पर। सुबह 9:30 पर सुनेगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक, आपकी पसंद कार्यक्रम होगा सुबह 10:10 पर। 11:10 पर कार्यक्रम सबरस होगा, सुर मंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 11:30 पर। दिन में 12:10 पर महिला कार्यक्रम होगा, एक ही फिल्म से आप सुन सकेंगे दिन में 1:10 पर, एक ही कलाकार कार्यक्रम रहेगा 2:30 पर, 3 बजे होगा कार्यक्रम ब्रज माधुरी। दिन में 3:30 पर सुनेगा रेडियो किड्स, शाम 4 बजे आप सुनेंगे स्वांग के अंतर्गत किस्सा शाही लक्कड़हारा, लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी आप सुन सकेंगे शाम 5:10 पर, दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी सुनिएगा शाम 5:30 पर, कार्यक्रम ग्राम संसार का समय होगा शाम 6:30 पर।

कृषि जगत का समय रहेगा शाम 7:05, 7:30 पर आप सुनेंगे बाइफकेट एआर लाइव न्यूज 24x7 और इंद्रप्रस्थ चैनल पर ये इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया

0: ये थे हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। फिलहाल सुबह के 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मृगनयनी पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि साणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रावोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित खरीद मूल्य से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। देवघर में राज्य स्तरीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर राज्यीय समन्वय बैठक हुई। इसमें झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक कंट्रोल और आपदा प्रबंधन के लिए एक संयुक्त रणनीति को अंतिम रूप दिया। पहली बार कांवड़ियों के मार्ग पर रियल टाइम निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 24 घंटे व्हाट्सएप आधारित मॉनिटरिंग नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5:10 हो चुके हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस। आज आप जानेंगे भद्रासन और अश्वथासन के बारे में।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ लें। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आएं। जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारे कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए।

हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य

0: 印度的李光普电台，从印度时间5:15到6:45和16:17:30向亚洲播送普通话节目。早间广播频率为15280和晚间广播频率为15410和。听众朋友们，你们正在收听全印度电台应用程序和全印电视台免费的微信盘上播放的全印度电台的世界广播。听众朋友们，今天首先我们播送印度古典音乐。今天的节目是吉祥马哈拉日坦的沙朗仪琴，请收听。
1: इसमें एक छोटा सा रहस्य और है। साहित्य कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे ध्रुपद गावें तो अति विचित्र गणनाथ आज मेरे रंग बजावें और धट धरात धर धरक धान दिन दिन दिन नागे नागे तो विचित्र मृदंग गणेश ने क्या बजाया। जो सब तबला वादक मृदंग वादक बजाते हैं धट धरात धर धरक धान वही गणेश ने भी बजाया तो कहते हैं नहीं। भारतीय भाषा में धट धरा जिसने रास्ते को धरा धट धरा और धर धरक ध्यान उस मालिक का ध्यान बराबर धरता गया धट धरा और धर धरक ध्यान और दिन दिन दी न नागे नागे नागे जो दिन दिन नागा नहीं दिया उसकी याद में दिन दिन दी न नागे नागे नागे धन धन तिन किसको धन्य है धन धन तिन और तिन ताके नाना जो उधर को नहीं ताका तिन ताके नाना तादृगन धृग धृग जो उधर को नहीं देखा उसके आंखों को धिक्कार है तिन ताके नाना तादृगन धृग धृग दिन दिन दिनागे दिनागे दिन दिन नागा देता जला गया तो कहे फल क्या मिला कहे कीर्तक धारा न तारा न धा कीर्तक धारा न तारा न धा न उसके कीर्ति को धारा न ये भवसागर से तरा कीर्तक धारा न तारा न धा कीर्तक धारा न इसको इसको हाथ से सुना दें और उसके बाद आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग।

स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि ये सब चीजें जो है ये डालडा और रिफाइंड तेल खाने से नहीं बचता, बड़ा शुद्ध घी और बनारस का दूध मलाई खाने से बचता है। तो स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो फिर आके आप लोगों